मैं हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण। मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

0: प्राथमिक विद्यालयों का संवरता स्वरूप, यूपी में शिक्षा का निखरता रूप।
1: ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर।
0: पीएम पोषण से पौष्टिक भोजन, तो स्मार्ट क्लास से मिल रही है आधुनिक शिक्षा की नई रोशनी।
1: शारदा कार्यक्रम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों विद्यालय से जुड़े। समर्थ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के द्वार खुले।
0: अब यूपी में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का आगे बढ़ने का सपना पूरा होता है।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
1: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
0: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

बोलो प्रेम से बोलो जोर से बोलो मैंने सुनिया दिल से बोलो आवाज नहीं आई मिलके बोलो जय माता दी।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIGG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIGG करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।

0: तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
1: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
1: हमें यह तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का सातवां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: चार दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। यह बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
6: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनम थिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनम थिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
8: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है बढ़ता दायरा, बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है, लोकसत्य लिखता है प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा, फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर, दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा, कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। 18th BRICS summit to begin at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. Russian President Vladimir Putin arrives in New Delhi to attend the summit. IMF describes India a key engine of global growth after the country's economy expanded 7.8% in first quarter of current fiscal. Trump administration proposes scrapping 60-day grace period for laid-off H-1B workers in US. National Testing Agency releases provisional answer keys for retest of English, Commerce and Sociology papers of UGC NET June 2026. And in cricket, India beat Bangladesh by 40 runs in first semi-final of Women's Asia Cup 2026 in Dubai. And the news in detail. The 18th BRICS summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. The theme of India's chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will participate in the summit. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Saudi Arabia's Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, will also participate in the summit. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Vietnamese Prime Minister Le Minh Hung are the other heads of state who will attend the summit. United Nations Secretary General Antonio Guterres, Director General of WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, and President of New Development Bank Dilma Rousseff are among the heads of international organizations who will participate in the event. Prime Minister Narendra Modi is likely to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin today. The President of Russia and Foreign Minister of Brazil arrived in the national capital last night to participate in the summit. The President of South Africa is set to arrive this morning.

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
0: मुरादाबाद, तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
2: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली। छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में। मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
0: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर FM मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
5: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
6: कहा मेरी कसम?
5: मिस कर दिया तो रीलोड।
7: चाय चाय चाय
8: बिंदास मॉर्निंग।
5: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

लाइफ में ना हर चीज को पाने के लिए जीत जरूरी नहीं है, हर चीज को पाने के लिए जिद जरूरी है। अगर आपके अंदर जिद है किसी चीज को पाने की, तो यकीन रखिए वो चीज आप डेफिनेटली पा लेंगे। हर बार जीतना जरूरी नहीं होता यार, कभी कभी ना उसके लिए जो कंसिस्टेंसी है, जो उसके लिए कभी कभी अंदर की एक जिद है, जो डेडिकेशन है, वो बहुत जरूरी होता है। जब तक आपके अंदर वो डेडिकेशन ही नहीं होगा, तब तक वो जीत आपको कैसे मिलेगी। तो अगर आपको कहीं पर भी पहुंचना है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे जरूरी है आपके अंदर का डेडिकेशन, आपके अंदर का 100% एफर्ट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी जिद। जब हम जिद पे आते हैं ना, कहते हैं जब जिद पे आता हूं तो मैं कुछ भी कर जाता हूं या कर जाती हूं, है ना। तो उस जिद को अपने अंदर जो है जरा जिंदा रखिए, उसको कायम रखिए मेरे भाई या दीदी जी, आपसे ही बात कर रहा हूं। आज की सुबह कुछ बड़ा करना चाहती हूं, तो उसके लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। छोटे छोटे स्टेप बनाकर उन पर काम करो, छोटे छोटे गोल बना के उनको अचीव करना शुरू करो। जो खुशी मिलेगी ना, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। Hi, welcome back. You are listening to FM Moradabad 89.6 Anand with you, ladies and gentlemen. Friday की सुबह, शुक्र है कि आज शुक्रवार है, बहुत ही खूबसूरत दिन है। आज शुक्राना करना है उन सभी दोस्तों का, उन सभी लोगों का जो हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का शुक्राना करना जरूरी है, जिनकी वजह से हम इस खूबसूरत दुनिया को देख पा रहे हैं। और उससे भी जरूरी है अपने परमपिता परमात्मा का शुक्राना करना, है ना। दोस्तों वक्त मिलाइए, 8:24 हो गए हैं, 10 तक आपके साथ इस कंपनी को हम चलाने वाले हैं। बहुत सारी बातें, तमाम सारे गाने और बहुत सारी इंटरटेनिंग बातें लेकर आ गया हूं मैं, यानी आपका दोस्त आनंद। आप जुड़ चुके हैं शहर के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। आप सुनते हैं आनंद को मंडे टू सैटरडे, एंड फाइनली वीकडेज यहाँ पर होता हूँ आपके साथ। एंड कैसे फ्राइडे आ गया है, आई कांट बिलीव दिस यार, कितनी जल्दी वीक जा रहा है। मतलब एकदम से हफ्ते जाते हैं, तारीख जाती है, महीना जाता है, और ऐसे ही साल कैसे खत्म हो जाएगा भी पता नहीं चलेगा। 11 सितंबर हो गया है आज। चलिए आप जहाँ भी जा रहे हैं, गुड लक, ऑल द वे बेस्ट। फटाफट से मुझे सबसे पहले तो मैसेज करके ये बताओ आज की सुबह की स्कूल की टाइमिंग क्या हो रही है बच्चों की, कितने बजे आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जरा मैसेज करके बताना मुझे। 9837896896 क्यों कर रहा हूँ मैं ये सवाल, डेफिनेटली बताऊंगा आपको। उससे पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक निकाल दिया मैंने आपके रेडियो सेट पे, चलिए इसको एंजॉय करते हैं। उदित नारायण साहब की आवाज, बहुत ही वंडरफुल सॉन्ग है, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लौट कर आएंगे तो आपसे करेंगे ढेर सारी बात। सो डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक। ये फ्राइडे मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग।

0: दिद करो।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

में यार बहुत प्यारा गाना था, सुन के आनंद आ गया मुझे। सच में मौसम थोड़ा आशिकाना है, और जैसे जैसे ये मौसम सर्दियों की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, जैसे जैसे धीरे धीरे आप देख रहे हैं मौसम में चेंजेस आ रहे हैं। अब आज का सूरज आप देखो, जैसे आप उठ रहे होंगे ना, आपको हल्की हल्की वाइब आ रही होगी कि यार सच में ऐसे सर्दियों वाली फील आ रही है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, जनरली मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो आपको आई या नहीं, बट मुझे सच में आई है। आज सुबह जब मैं उठा, मैं कल भी उठा, तो सुबह की जो वाइब है बिल्कुल सर्दियों जैसी लग रही है। वेलकम बैक। ही एक बार फिर से 8:37 का समय हो गया है। आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राना करने का दिन है, और ढेर सारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़े हैं। आज की सुबह मेरे पास बहुत सारे मैसेज पहुंचे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हो यार। सुबह सुबह आपकी बातें सुन के मन प्रसन्न हो जाता है, थैंक यू सो मच यार, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। आपने अपना नाम नहीं लिखा, आपने मेरा दिन बना दिया यार, ये बात बोल के बहुत बहुत शुक्रिया। एक संदेश मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग, हाय माय नेम इज पिंकी, गुड मॉर्निंग पिंकी। ये लिखती है, गाने सुन के बड़ा अच्छा लगता है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आप, आ जाइएगा। एक मैसेज आया, बच्चों के स्कूल टाइम चेंज नहीं हुई है, आनंद जी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, मैं आपको टाइम बता देती हूँ। ऑल राइट, प्लीज बता दीजिएगा। हाँ, मैं डिस्कस कर रहा था आज की सुबह, भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एंड मुझे थोड़ा सा जानना है कि सुबह सुबह का स्कूल टाइम क्या है, अभी बच्चों का करंटली क्या टाइम चल रहा है, मैं ज़रा पूछना चाह रहा था। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो स्कूल छोड़ के या तो बच्चों को आ रहे होंगे या डेफिनेटली स्कूल छोड़ने जा रहे होंगे, तो आप अभी जा रहे हैं या आ रहे हैं ये भी आप मुझे बता सकते हैं। एंड अभी आगे मैं आपके मैसेज फटाफट पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आज के दिन के बारे में बात करेंगे, क्या स्पेशल है और क्या चल रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस बार का गणपति बहुत स्पेशल होने वाला है, स्पेशली मुरादाबाद की अगर मैं बात करूँ तो मुरादाबाद में भी गणपति उत्सव को लेकर बहुत उत्साह है लोगों में, बहुत एक्साइटमेंट है, उस पर डेफिनेटली बात होगी जरा सी देर में जब मैं लौट कर आऊंगा। तो लेकिन अभी फिलहाल आपके मैसेज की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। हाय मॉर्निंग जी, कैसे हैं, मैं बढ़िया। ये मैसेज आया है, कल करे सो आज करे सो अब। हाय, मेरा नाम प्रदीप है। आनंद जी, हमें किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आप डेली अपने काम को करने आ जाते हैं। क्या बात है प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। ये मैसेज आया है मेरे पास, कहाँ से किया है इन्होंने भाई, मानसरोवर कॉलोनी, ऑल राइट, गोकुल डेयरी के पास से है। ओके, बहुत बढ़िया। एक संदेश और पहुंचा है मेरे पास, नमस्ते जी कैसे हालचाल है, रामपुर दोराहा से मैसेज कर रहा हूँ। हाय माय नेम इज शेखर आनंद, मैं इस वक्त निकल रहा हूँ अपनी डेस्टिनी पे, तुम्हें सुनते हुए जा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है मेरे भाई, थैंक यू सो मच यार। एक और मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग सर, स्टेशन पे जाम लग जाता है सुबह सुबह, बहुत भसल मचती है, कभी कभी तो सर दर्द हो जाता है, लेकिन आपके गाने सुन के बहुत मजा आता है। अरे क्या बात है। हाय माय नेम इज अविनाश, गुड मॉर्निंग अविनाश जी, कोशिश होती है हमारी सुबह सुबह आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट वाला डोज दिया जाए। इसी बीच हमारे पास एक और मैसेज आया है, नमस्ते जी कैसे हालचाल है, नमस्ते, ये पहाड़ों की वादियों से मैसेज पहुंचा है मेरे पास, इन्होंने लिखा है, कैसे हालचाल है आनंद जी। हाय माय नेम इज तन्विका, गुड मॉर्निंग तन्विका जी, थैंक यू सो मच। आपने बस पहाड़ों की वादियां लिखी, लेकिन कहां से है ये भी तो बताना था ना आपने। गुड मॉर्निंग, हाय हेलो, रामपुर से शमा मेरे साथ जुड़ी है आज की सुबह जी, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। और ऐसे प्यारे प्यारे संदेश आपके जब हम तक पहुंचते हैं तो मन बहुत खुश हो जाता है, और सच बताएं श्रोताओं, सुबह सुबह जब इतनी अच्छी ताजगी और पॉजिटिविटी मिलती है तो यकीन मानिए दिन अपने आप खूबसूरत हो जाता है ना। और क्या ही चाहिए सुबह सुबह, बस हमारा मन खुश होना चाहिए और सुबह की शुरुआत इतनी पॉजिटिव हो जाए तो और क्या ही चाहिए। वो इतने प्यारे, ये तो फिर बनता है यार, इतना ब्यूटीफुल ट्रैक भी आपके लिए मैंने लाइंड अप करके रखा हुआ था बड़ी देर से, और आज तो मैंने सोचा था ये गाना मैं डेफिनेटली प्ले करूंगा। अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में बहुत ही प्यारा और बेहतरीन गाना आपके रेडियो सेट में निकलने वाला है अभी जरा सी देर में, आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ। और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं यार 8:41 हो गए स्टेशन क्लॉक में, आज का दिन बहुत स्पेशल है बताता हूँ अभी, और अभी आपको गुड मॉर्निंग करना भी बनता है ना, तो मैं इनसे बोलूंगा जरा बताओ यार अपना स्टाइल में बोलो, गुड मॉर्निंग विश करो।

0: ऑन द बेल।
1: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र ₹100 में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412500।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक DM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
1: अरे आनंद इज बैक।
2: तब पहाड़ों की कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
7: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: हाँ जी बिल्कुल, गुनगुनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप आनंद के साथ हैं। और एग्जैक्टली अगर स्टेशन क्लॉक की बात करूँ तो मैं टाइम की बात करूँ तो स्टेशन की घड़ी में कितना टाइम हो रहा है आपको पता है? यस, स्टेशन क्लॉक में इस वक्त वक्त हो गया भैया 9:04। यस ऑफकोर्स आप आनंद के साथ हैं तो टाइम बताना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मेरा राइट है। और बहुत सारे दोस्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच इतने प्यारे एंड वंडरफुल मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं भैया। मैंने आपसे कही थी स्कूल टाइमिंग बता दो भाई, और मैसेज तो बहुत सारे आए हैं मेरे पास, थैंक यू सो मच इन मैसेजेस के लिए। और कभी कभी तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है भाई किसका मैसेज पहले पढ़ना चाहिए, मतलब सारे मैसेज एकदम से वन टाइम ही आप लोग पहुंचा देते हो। चलो ये तो आपकी

मोहब्बत है यार, इसमें तो कोई यति श्रुक्ति है ही नहीं, है ना। लेकिन अभी फिलहाल मुझे एक बात आपसे जाननी है। हमारी लाइफ में ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम थैंक यू कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम सॉरी बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते, है ना। लेकिन आज की सुबह अगर मुझे आपको एक मौका देना हो कि आप किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं तो क्यों किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं, और अगर आपको आज किसी को थैंक यू कहना हो तो आप किसको थैंक यू बोलना चाहोगे? वो आपके टीचर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी, आपके मदर, सिस्टर, ब्रदर, फादर, कोई भी हो सकता है जिसको आज आप थैंक यू बोलना चाहते हैं। एक मौका है आज की मॉर्निंग, आप लिख के बताइए उसको थैंक यू क्यों बोलना चाहते हैं। आज की सुबह रेडियो पर पूरी जनता के सामने बोल दो किसी को थैंक यू बोलना है तो। मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ भाई, इतनी प्यार से और इतनी शिद्दत से आप मुझे सुनते हैं, आपको दिल से शुक्रिया। जो लोग मुझे मैसेज करते हैं उनके लिए बिग शाउट आउट, एंड बाकी जो लोग सुनते हैं सिर्फ मैसेज वैसेज नहीं करते हैं, यार अपन को ना मैसेज नहीं करने आने, बस अपन को लिसनिंग करते हुए जाना है तेरा शो, तो उनको भी यार बिग थैंक यू। बाकी ढेर सारे मैसेज आके आप सुन रहे हैं रेडियो वाले आनंद को, गुड मॉर्निंग है जी। और जो लोग मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं आज की मॉर्निंग, उसके लिए आप सभी का दिल से थैंक यू। और मैं देखिए बार बार थैंक यू बोलता रहूंगा आपको, लेकिन आप किसको थैंक यू बोलना चाहते हैं ये आप मुझे मैसेज करके जरूर बताना 9837896896 पर। बाकी टू को एक बेहतरीन ट्रैक आपके रेडियो सेट में निकल गया है, ओ साथ ही इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे आज की सुबह। कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज क्या स्पेशल है बताता हूँ अभी आपको, लौट कर आता हूँ इस गाने के उस पार, करेंगे आपसे ढेर सारी बात। डोंट गो एनीवेयर, आनंद विद यू, गुड मॉर्निंग।

0: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
1: लेकिन सोनिया
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
4: अरे आनंद इज

0: आज की रात भाई इस गाने ने कमाल कर दिया, मतलब धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। आज की सुबह आनंद के साथ सुन रहे हैं आप एफएम मुरादाबाद, वंस अगेन वेलकम बैक। यार सच में कुछ गाने ना बड़े मजेदार होते हैं। हाय कैसे हाल चाल है, बंदे के नाम आनंद है, बंदा हाजिर है एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना अमेजिंग रेडियो। 9:14 हो गए हैं, टाइम का पता नहीं चलता है बॉस। आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट। ढेर सारे मैसेज मेरे पास पहुंच रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू करना चाहता हूं यार। सबसे पहले तो आप सच में बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, क्या ट्रेन में फ्री में मिलता है पानी का जो बॉटल है, क्या वो सच में एक तो फ्री में मिलना चाहिए, सच में फ्री में मिलता है, ये मैं आपको जरा क्लियर कर दूं फटाफट। यस, तो अभी मैं बात कर लेता हूं। जब हम वंदे भारत राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन में बैठकर सफर करते हैं तो हमें कई बार कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे हमारी सीट पर पानी की बॉटल, खाना और अन्य बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हमें दी जाती हैं। लेकिन क्या ये सुविधा रेलवे की तरफ से हर यात्री को मिलती है, मतलब या फिर ऐसा मन में एक सवाल उठता है कि क्या सच में ट्रेन में पानी की बॉटल फ्री में मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। तो भैया मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल के लिए जो प्रीमियम ट्रेन है, आपको बताते चलें एक ये जो अपडेट आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है आपको बता देनी चाहिए। तो हर ट्रेन में पानी की बोतल बिल्कुल फ्री में नहीं मिलती है, लेकिन हालांकि जो रेलवे की तरफ से बताया जा रहा है कि इस चीज़ को यात्रियों को उपलब्ध कराया जाता है। सिर्फ प्रीमियम ट्रेन जैसे वंदे भारत राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में ये सुविधा जो है वो फ्री में उपलब्ध है, बाकी ट्रेन्स में तो नहीं है भाई। लेकिन जो जो थोड़ी सी अलग ट्रेन है, जैसे मैं एक्सप्रेस की बात करूँ, अभी वंदे भारत राजधानी शताब्दी ट्रेन, इसमें जो है फ्री में ये पानी की बॉटल्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। और ये भी कहा जा रहा है भैया, हालांकि फ्री कहना उतना सही नहीं है क्योंकि टिकट के साथ ही अन्य चार्जेस भी ये काउंट कर लिए जाते हैं, ये सुविधाओं के साथ उसमें ऐड हो जाते हैं। मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जब आप एसी टिकट लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं आपकी उसी में, है ना, तो उसमें पानी की बॉटल भी ऐड हो जाती है। तो ये कहना कि फ्री है, खाना फ्री है, तो ये मुझे नहीं लगता कि फ्री है भाई। जब आपकी टिकट इतने एक्सपेंसिव है तो ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं। जब आप फ्लाइट की टिकट कराते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं, वो आपकी मतलब आपके हिस्से में है, आप उसको ऐड करना चाहते हो या नहीं। उसके बाद मैं आप बोलूं फ्री में मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो फ्री है यार, उस ऑलरेडी आपने उसका पे कर दिया है, करेक्ट। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, IRCTC ने जो है फूड का ऑप्शन चुनने के लिए एक वेबसाइट पर उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप इनकी वेबसाइट या ऐप पर जाकर भी जो है इसमें ढेर सारी चीज़ें देख सकते हैं। और स्टेशन पे अगर आप जाएंगे तो आपको एक नई मशीन मिलेगी, बॉटल मशीन जो है, जैसे प्लास्टिक की बॉटल आप यूज़ करते हैं उसको इधर उधर फेंक देते हैं, तो आप उसको मशीन में जो है वहाँ पर डाल सकते हैं एंड वो सही जगह पर सेफ रहेगी, प्लास्टिक इधर उधर भी नहीं होगा। तो मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर जब आप जाएंगे ना, आपको बड़े बड़े डब्बे दिखाई देंगे, उनके अंदर स्क्रीन भी चल रही होगी जिस पर आपको भारत रेल ऐप के बारे में बताया जाएगा, मतलब कि कैसे आप ट्रेन ऐप को यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे आप ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सारी डिटेल्स आपको बाहर दिखेंगी। बाहर जब आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे मुरादाबाद के, तो सारे प्लेटफॉर्म पे कुछ बड़ी बड़ी मशीनें रखी गई हैं और मशीनों के स्क्रीन पे एक आपको पिक्चर दिखाई देगी जिसमें आपको पूरी जानकारी है ट्रेन के बारे में बताई जा रही है, स्क्रीन पर चल रहा है ना। बेसिकली वो एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, अंदर उसके जो है साइड में लिखा होगा कि यहाँ पर आप कैसे बॉटल को डाल सकते हैं, प्लास्टिक की बॉटल जब आपके पास होती है तो आप उसको उस मशीन में डाल सकते हैं ताकि उधर उधर वेस्ट ना हो और उसका एक सही इस्तेमाल भी हो सके बाद में। ये मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे आप जब भी जाएं आपको ये बॉक्स देखने को मिलेंगे, आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने देख भी लिए होंगे, डेफिनेटली मुझे पता है आप लोग बहुत एक्टिव हो इस मामले में, नो डाउट, क्योंकि मेरा तो स्टेशन आना जाना काफी हो रहा है आजकल, तो मैं जब भी जाता हूं तो कुछ ना कुछ नया देखता हूं। ये बहुत ही अच्छी चीज हुई है यार, बहुत ही शानदार। इसी बात के साथ अभी मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ झाकड़ गाने प्ले करने वाला हूँ, जैसे कि ये गाना यार मेरा बहुत ही फेवरेट है एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम इस गाने को मैं सुनने वाला हूँ। और अभी आजकल तो कुछ गाने बहुत ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऑफ कोर्स आपने सुने होंगे, आजकल एक गाना है जो बहुत वायरल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैश बैक में लेके जाना चाहता हूँ, आपका स्कूल टाइम वाला गाना जो शायद आपको थोड़ा सा फ्लैश बैक में ले जाए। राहत फतेह अली खान साहब की आवाज।
1: मैं तो बस तेरी गुर्बत में जाऊं रहना सदा।
0: हाय हाय हाय, आशिकों के दिल को कुरेद देने वाला ट्रैक आज की सुबह।
1: होने ना दूं जुदा, मैंने तय कर।
0: ये गाना अभी आप तक पहुंचेगा जरा सी देर में इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए। और काश कोई मुझे भी ऐसा बोल देती यार,
2: अब जीना है संग
0: तेरे। ये दम ख्यालों में सोच सकते हैं,
1: संग तेरे ही मुझे अब जीना है, संग तेरे ही मुझे।
0: ये गाना जरा सी देर में आप तक पहुंचेगा। बहुत ही वंडरफुल सॉन्ग है, ऑफकोर्स आपने बहुत बारी सुना होगा, लेकिन अभी काफी टाइम के बाद इस गाने को मैं प्ले कर रहा हूँ एंड ऑफकोर्स आपको मजा आ जाएगा ये गाना सुन के भी। आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारियां हैं जो मुझे आप तक पहुंचानी है अभी इस स्टेशन पे। मैंने कहा था आप किसको थैंक यू बोलना चाहते हो, आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हो आज की सुबह, एंड इसी बात पे ढेर सारे मैसेज आ गए हैं। थैंक यू सो मच, मेरे पास रोहन का मैसेज आया है। रोहन ने लिखा है, गुड मॉर्निंग आनंद, थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं अपने टीचर को जिनकी वजह से आज मेरी मैथ बहुत अच्छी हो गई है। मैं मैथ से बहुत डरता था एंड जेन्युइनली एक बार ऐसा हुआ, मैं आपको सीरियसली सच्ची बता रहा हूँ, अच्छा भाई ये लिखने की नीड नहीं थी, इन्होंने लिखा सच में ऐसा हुआ कि मेरे टीचर ने मेरी आंखें खोल दी और आज तक जो है मैं मैथ नहीं कभी फेल नहीं हुआ। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपने मैथ के टीचर को। ओ माई गॉड, बहुत ही बढ़िया यार रोहन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास श्रुति का मैसेज पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग, थैंक यू करना चाहती हूँ उस हर एक इंसान को जिसने मेरी जिंदगी में मुझे ये सिखाया कि किसी पे भरोसा मत करना। ओ माय गॉड यार, बड़ा भारी भरकम वाला शब्द, मतलब मेरे को सुन के ऐसा लग रहा है कि मैं काफी रिलेट कर पा रहा हूँ इस शब्द से, इसके लिए तो थैंक यू मैं भी बोलूंगा यार। थैंक यू सो मच, एक और मैसेज पहुंचा है मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है आनंद भाई, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये मेरे पास प्रतीक का मैसेज आ रहा है, ये मुझे लिखते हैं कार्ड रोड से रामगंगा बिहार से, लिखते हैं यार थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं एक उस इंसान को जिसने मेरी जिंदगी में मुझे जीना सिखा दिया। ओए होए कौन है भाई, हमें बता दो। 9:20 हो गए स्टेशन क्लॉक में, कुछ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ये गाना आपके रेडियो पे पहुंचेगा। बहुत ही अच्छा रिक्रिएशन है इस गाने का बिजुरिया, सुनोगे तो आप मजा आ जाएगा।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार्क मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
6: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें, इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट, रजिस्ट्रेशन मात्र ₹100 में। दर्द से राहत की सही शुरुआत अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
7: बसंती इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: भाई वाह, क्या गाना है सच में यार। ये गाना सुन के ना मतलब मेरे को मजा आ जाता है, और इतना बढ़िया गाना है। मुझे इसका पुराना वाला गाना याद आ जाता है सोनू निगम साहब का। क्या मतलब क्या गाना वाकई में गाया है सोनू निगम साहब, और ये गाना भी कुछ कम नहीं है यार, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक था। हाय वेलकम बैक, 9:26 हो गए फ्राइडे की सुबह। आनंद के साथ सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग आनंद विद यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग बॉस की शुरुआत हो गई है। ऑफ कोर्स यार, आप बिग बॉस में इस बार ऐसे ऐसे चेहरे देख रहे हैं ना जो कभी शायद आपको आपने कभी मतलब इमेजिन भी नहीं किया होगा। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था भाई बिग बॉस में ये फेस भी आने वाले हैं। ऐसे बहुत टाइम से मैं रिंकिया के पापा को सोच रहा था, ये रिंकी कौन है रिंकिया। अब जब बिग बॉस में मनोज तिवारी की बेटी ने एंट्री ली है तो पता लगा, ओहो ये है रिंकिया जिनके भैया बहुत चर्चे हो रहे थे, रिंकिया के पापा। फाइनली समझ में आ गया है कि ये है वो रिंकी जी जिनके पापा के ऊपर बड़े गाने हुए हैं। तो मनोज तिवारी जी की बेटी देखने को मिल रही है इस बार बिग बॉस के घर में, साथ में मैरी कॉम। ओ माई गॉड, वन ऑफ माई फेवरेट यार। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड बिग बॉस का सीजन 20 स्टार्ट जो है हो ही गया ऑलमोस्ट। तो आपको बिग बॉस के बारे में क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है, आपको कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है इस बार बिग बॉस में या नहीं, आप किसकी वजह से बिग बॉस देख रहे हो। मतलब सीरियसली कभी कभी तो दिमाग में दही जम जाता, समझ नहीं आता कि बिग बॉस में एंट्री किस किसकी हो गई यार। लेकिन बिग बॉस के घर में हमेशा कुछ ना कुछ तो नया होता है यार। आई कैसे हाल चाल, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास मगन का मैसेज पहुंचा है। ये लिखते हैं, भाई गाने सुन के मजा आ रहा है तेरे। ओ क्या बात है यार मगन भाई, बस ऐसे मस्त मगन रहो यार आप। अच्छा मैं कुछ काम की अपडेट बताने वाला था अभी आपको, लेकिन फिर एकदम से समझ में आया कि यार अभी फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। उसके बाद में फटाक से आता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैं एक्चुअली बताने क्या आया था आपको। बस मैं यूं गया और यूं लौट कर आया। उससे पहले जरा ये सुन लो भाई, कल क्या होने वाला शहर में।
1: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
2: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
1: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद, 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

थैंक यू किसको बोलना चाहते हो भाई? परजाई जी तुसी किसको थैंक यू बोलना चाहते हो? बताओ मेरे को जरा मैसेज करो की कर रहे हो पासी तुसी दसो ना यार साडे मैसेज कर दो साडे नंबर विच। वो यार पंजाबी बड़ी खराब हो जाती है कभी-कभी। एक तो सुबह-सुबह बिना खाए पिए दिमाग चलता नहीं है मेरा यार। अभी 10 बजे करूंगा ना ब्रेकफास्ट जाके, बट आप ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप मत करो। डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट, ओके? ब्रेकफास्ट करके निकलो यार, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी अपने बैग में रख के चला करो, बहुत जरूरी है। फिलहाल राहत फतेह अली खान साहब की आवाज, बहुत प्यारा सॉन्ग है यार, आफ्टर लॉन्ग टाइम। ओह माय गॉड, तेरे वक्त पे बस हक है मेरा, सच में यार सुबह सुबह तेरी रूह पे तेरे जिस्म पे इतना हक, बस हक है एक मेरा नहीं हो सकता यार। फिलहाल चलो ये सुनते हैं और अभी मैं लौट के आता हूँ इमीडिएटली। उसके बाद आपके मैसेज पढ़ूंगा, आप किसको थैंक यू बोलना चाह रहे हो बढ़ाओ ना फटाफट से, मुझे मैसेज कर दो।

0: मैंने भी तय कर लिया कि भैया मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ स्टेशन छोड़ के और ना ही आपको छोड़ के। ढेर सारे मैसेज जो आपके आ रहे हैं उसके लिए बस थैंक यू कहना चाहता हूँ आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी फिलहाल कुछ एड ब्रेक का टाइम हो रहा है, उसके बाद मैं जल्दी से वापस आऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि मैं थैंक यू क्यों बोल रहा था और मैंने थैंक यू के लिए आज क्यों पूछा था आपसे। बहुत प्यारे मैसेज किए हैं। 9:34 हो गए, छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद जल्दी से वापस आ रहा हूँ, आप कहीं मत जाओ यार।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहाँ बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: करो।
1: बिल्कुल जी, ये छोटे छोटे एड ब्रेक काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है इनके थ्रू। अभी वेलकम करते हैं आप सभी का एक बार फिर से वार्म वेलकम। 9:34 हो गए आनंद के साथ। और अभी यार देखो मेरे पास ढेर सारे मैसेज पहुंच रहे हैं आपके, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेरे पास मैसेज आया नेहा का, इन्होंने मुझे लिखा है थैंक यू सो मच आनंद, मैं थैंक यू अपने अलार्म को बोलना चाहती हूँ बिकॉज उसकी वजह से रोज मुझे टाइम से जगने को मिल जाता है एंड कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन थैंक यू मेरे अलार्म जिसकी वजह से मैं जल्दी उठती हूँ और जल्दी समय पर अपने काम निपटा के ऑफिस पहुँचती हूँ। सच अमेजिंग यार। रोहित मुझे मैसेज करते हैं खुशालपुर रोड से, लिखते हैं हाय गुड मॉर्निंग आनंद, मैं अपनी मम्मी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये लिखते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी मम्मी है जो मुझे सारी जानकारी देती है, गूगल बाबा से भी ज़्यादा एडवांस है मेरी माँ, इसलिए थैंक यू मम्मी मुझे सही जानकारी देने के लिए। ओ माय गॉड, सच में यार। गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हालचाल है। सुमन जी मेरे साथ जुड़ी हैं पीली खोटी रोड से, लिखती हैं मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलना चाहती हूं आनंद जी क्योंकि मेरी हर छोटी बड़ी बात को वो बड़े प्यार से सुनते हैं और कभी मुझे जवाब भी नहीं देते हैं। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस यार सुमन जी, ये क्या कहना चाह रहे हो आप। थैंक यू आनंद, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है। मैं बढ़िया हूँ जी। मेरे पास मैसेज आया है रोहन जी का, ये लिखते हैं आनंद मैं अभी अपने ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ एंड ये दिल्ली रोड पे हैं। मुझे लिखते हैं मैं अभी फिलहाल दिल्ली रोड से निकल रहा हूँ और अपने ऑफिस पहुँच रहा हूँ आनंद, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले तो थैंक यू तेरे को इतना अच्छा माहौल बनाने के लिए। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच रोहन जी। रोहन लिखते हैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपनी बीवी को, मेरी बीवी का नाम भी इन्होंने लिख दिया, क्या बात है श्वेता। एंड साथ में रोहन लिखते हैं श्वेता जी को थैंक यू बोलूंगा मेरी वाइफ को बिकॉज उनकी वजह से ना मैं हमेशा मुझे ध्यान में रहता है कि आज मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे रहती है और कभी कभी जब मैं घर पर लौटता हूं तो मुझे कॉल कर देती है क्या नहीं लेकर आना है और क्या लेकर आना है, तो उसके लिए थैंक यू मुझे बताने के लिए। ओ माय गॉड यार, जल्दी से शादी का प्लान बनाना पड़ेगा मुझे भी। आगे बढ़ते एक मैसेज आया मेरे पास अमित जी का, सिविल लाइन से, लिखते हैं ये मैं अपने आप को बहुत स्पेशल मानता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए मैं थैंक यू करना चाहता हूँ उन सभी दोस्तों का जो मुझे समय समय पर मुझे मेरी चीजों को याद दिलाते हैं। ओ माय गॉड यार, ऐसे दोस्त होने चाहिए सच में यार। कभी कभी ऐसे होता है ना कि एक थैंक यू हमारी लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे लोगों का मानना है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। और जिंदगी में यार एक थैंक यू बोलने से ना कुछ छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, मुझे लगता है थैंक यू चेहरे पे एक स्माइल और लेके आ जाता है। तो अगर आप थैंक यू बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोल रहे हो तो मेरे को लगता है कि आपको बोलना चाहिए, बहुत जरूरी है। थैंक यू एक छोटा सा शब्द है लेकिन आपके बड़े बड़े काम को बहुत ईजी कर सकते हैं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। और फिलहाल अभी भाभी जी आपके लिए गाना लगा रहा हूँ, ये प्यारा सा सॉन्ग सिर्फ आपके लिए प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ी देर में आपके रेडियो पे आपको सुनने को मिलेगा सच में। ये देखो भाई साहब इतना बढ़िया गाना है कि लेकिन इन्होंने स्पीड बढ़ गई थी यार। तेरी मजा आ गया था, लेकिन फिलहाल थोड़ी देर में गाना सुनेंगे आप और अभी मैं कुछ काम की बातें आपको बता देता हूँ फटाफट से, लेकिन अभी नहीं लौट कर आता हूँ तो बताता हूँ। फिलहाल आप ये गाना सुनो और मेरे साथ ऐसे ही ट्यून इन रहो, कुछ कहना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो 9837896896 पर। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद, मैं हूँ आपके साथ आरजे आनंद। और अभी एक लेटेस्ट जानकारी, अगर आपने ये नहीं सुनी तो बहुत कुछ मिस कर दोगे, आप बता रहा हूँ। आई लव दिस सॉन्ग, धुरंधर से निकल गया है गहरा हुआ, मेरा और आपका प्यार भी गहरा है यार। तेरी तो अगर मेरी, बहुत सारे दोस्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, थैंक यू सो मच, बिग शाउट आउट, लौट कर आता हूँ आपके नाम के साथ।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक TM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले, श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
4: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: प्राथमिक विद्यालयों का संवरता स्वरूप, यूपी में शिक्षा का निखरता रूप।
1: ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर।
0: पीएम पोषण से पौष्टिक भोजन, तो स्मार्ट क्लास से मिल रही है आधुनिक शिक्षा की नई रोशनी।
1: शारदा कार्यक्रम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों विद्यालय से जुड़े। समर्थ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के द्वार खुले।
0: अब यूपी में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का आगे बढ़ने का सपना पूरा होता है।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी। पच्चीस से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
0: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
1: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: हो गए हैं, वंस अगेन वेलकम बैक है जी। हाय, कैसे हालचाल? बंदे के नाम आनंद, और अभी काम की बात ये बताने आया हूँ। आज मुरादाबाद में 2 घंटे एक इलाके में बिजली गुल रहने वाली है, तो भैया कौन सा इलाका है जहाँ पर बिजली नहीं होगी, 2 घंटे गायब रहेगी मुरादाबाद में, ये मैं फटाफट आपको बताऊंगा। और क्या चल रहा है मुरादाबाद में, ये बड़ी बड़ी 3 बातें अभी फटाफट आपको बताता हूँ। वेदर अपडेट भी बता दूंगा जाते जाते, है ना। लेकिन सबसे पहले जरूरी है आज का मेरा सवाल, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे बहुत सारे लिसनर्स वेट करते हैं मेरे क्वेश्चंस का, एंड तमाम सारे श्रोताओं ने मुझे मैसेज भी किए हैं थैंक यू के लिए। यार आपका दिल से शुक्रिया भाई। टाइम हो गया है कड़क क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। आज की सुबह बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, एंड दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग सॉन्ग। एक सेलिब्रिटी है, एक एक्टर है बहुत प्यारी, और ऐसे भारी भरकम ज्वेलरी के साथ इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी इस गाने में, और इतनी हैवी हैवी ज्वेलरी पहन के इन्होंने परफॉर्मेंस किया। यार सच में व्हाट अ सॉन्ग, बताओ कौन सा गाना है ये। मैसेज करना है आपने मेरे को 9837896896 पे। व्हाट्सएप करने के लिए क्या करना है, अपने मैसेज बॉक्स में जाना है, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम, और अपना राइट आंसर कौन सा गाना है, व्हाट इज द सॉन्ग। जरा बताओ मुझे व्हाट्सएप करके, 9837896 पे व्हाट्सएप कर सकते हो आप। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आज का सवाल बहुत प्यारा गाना है, बहुत ही कमाल की फिल्म है ये। चलो व्हाट्सएप करने का मेरे को, ठीक है जी। अब इतने पैसा में इतना ही मिलेगा भाई, 9837896896 दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है जी। कहाँ कहाँ पर आज बिजली गुल रहने वाली है अगले 2 घंटे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड इसके अलावा वेदर की बात करूंगा फटाफट से, कि भैया आज का मौसम कैसा रहने वाला है, बिकॉज मौसम के हाल चाल जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई। आज की सुबह नुसरत भारूचा, क्या एक्टिंग कर दिया लड़की,
3: तू तो साड़ी केयर नहीं,
2: बहुत जरूरी है केयर करनी भाई।
3: पैर नहीं करदा
2: मैं ही तेरे
3: पीछे पीछे आनी, मैं ही तेनु फोन मलोनी,
2: मैं भी मिला लूंगा,
3: मैं ही तेरे पीछे पीछे।
2: आगे बढ़ते हैं तो भी बता देते हैं, 34 डिग्री सेल्सियस जो है वो जाने वाला है, और जो अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान की बात करूँ तो 26 डिग्री सेल्सियस जो है रहने वाला है। और सूर्य देवता तो प्रकट हो ही गए हैं, आपको बता दें आकांक्षिक रूप से जो है बादल छाए रहेंगे, और साथ ही साथ बारिश होने की भी संभावना है, यानी कि बारिश और धूप दोनों का कॉम्बिनेशन आप एंजॉय कर पाएंगे आज की।

RJ Anand is back. You are listening

0: पीछे।
1: Hi guys, this is Aditya. Hope you like the song Chand Baliyan.
2: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
3: ओ थैंक यू पाजी, तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार, इतनी उम्दा तारीफ आपने कर दी, मजा आ गया यार। गणपति उत्सव को लेकर बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, ऑफ कोर्स आपकी गली मोहल्ले में भी गणपति की बहुत सारी प्रिपरेशन हो रही होंगी। 14 तारीख से गणपति उत्सव जो है शुरू होने वाले, यानी कि गणेश चतुर्थी, और इसकी तैयारियां सिर्फ मुरादाबाद में नहीं, बॉलीवुड से लेके हर जगह पर इसकी तैयारियां चल रही है। पूरे देश में जो है धूमधाम से गणपति उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, एंड स्पेशली महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ऑफकोर्स आपको पता है गणपति का फेस्टिवल कितनी जोरों शोरों से मनाया जाता है मुंबई के अंदर, एंड इनफैक्ट मुंबई में क्यों अपनी चंदौसी में भी बहुत स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। आप इसे कई लोग जानते हैं चंदौसी के अंदर एक बहुत ही बड़ा और भव्य मेला भी लगाया जाता है गणेश उत्सव पर, इसकी तैयारियां भी चल रही हैं चंदौसी के अंदर भी। अगर आप उस मेले में जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने सिर्फ सुना है, मैं कभी गया नहीं हूं, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि बहुत ही यू नो स्पेशल यात्राएं होती है वहां पर भी, बहुत भव्य तरीके से होता है। और इस बार अपने मुरादाबाद में बहुत स्पेशल तरीके से गणेश उत्सव की तैयारियां चल रही है। अगर आपके घर पर भी पप्पा आने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे जरूर बुलाना यार, हो सकता है मेरे विघ्नों को भी हर लें गणपति पप्पा। आजकल वैसे भी झोलियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स डाली हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन ना भाई ढूंढने से तो मिल ही जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ में, चाहे कोई भी फेस आ जाए। हालांकि कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आपके ऊपर कोई भी आफत आती है ना, कोई भी मुश्किल आती है, जब उसको फेस कर रहे होते हो तो एक्चुअली आपको फील होता है, आपको पता होता है कि कैसे आप सफर कर रहे हो, कैसे आप सफरिंग कर रहे हो उस समय में। एनीवेज बैक टू पॉइंट, आगे बढ़ते हैं भैया। आज इन इलाकों में, मतलब इन दो इलाकों में 2 घंटे के लिए बिजली गुल रहने वाली है। तो आपको बता दें भैया, अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ जो है एरिया में लाइट अवेलेबल नहीं होगी। तो आपको बता दें कुछ मरम्मत के चलते, कुछ कार्यों के चलते आज शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, जैसे बुद्ध बाजार, मालवीय नगर, उसके अलावा कोठीवाल नगर, आर्य समाज एंड इन सब, प्रिंस रोड, ये हरपाल नगर, शिवपुरी में जो है आज बिजली अभी पूरी तरीके से गायब है, यानी कि 10 बजे तक गायब रहने वाली है। तो ऑलरेडी 10 बजने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइट, जैसे मैं यहाँ से निकलूंगा लाइट आ जाएगी। शायद अभी लाइट ना हो आपके एरिया में, जिसका नाम मैंने लिया इन एरियो का, इन एरिया में अभी लाइट फिलहाल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, 10 बजती आ जाएगी, और थोड़ी देर अगर आगे पीछे हुआ तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, एक और चीज आपको बताते चले, 16 सितंबर से होंगे अपने मुरादाबाद के अंदर कुश्ती। हाँ जी, 16 को होगी कुश्ती, एंजिला स्तरीय पर जो है इसके ट्रायल्स, बहुत ही मजेदार चीज होने वाली है यार। चलो फिलहाल ये थी कुछ काम की बात, अभी मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ जिसका जवाब आपने मेरे को देना है भाई, मैसेज करके 9837896896 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप अपनी जिम से आ रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी योगा क्लास से आ रहे हो बहुत अच्छी बात है, या आप अपने ऑफिस जा रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल अभी मेरे जरा काम की बात सुन लो गुरु, अगर सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आज की सुबह, एंड अगर आपने इसका जवाब दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया एग्जैक्टली सही बात है गजेंद्र भाई, ज्यादा प्यार हो जाता, अच्छा तो मैं सह नहीं पाता, ये नहीं पता था यार, अभी हुआ नहीं ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, चलो मैं मजे मजाक करता रहता हूँ, आप मेरे को मैसेज करके बताओ ये जो गाना है वो कौन सा गाना है। बहुत सारे लोग गलत जवाब दे रहे हैं यार, ऐसे मत करो भाई, बहुत प्यारा सॉन्ग है। मैसेज करने का आपने मेरे को 9837896896 पे, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, अपने मैसेज बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए अपना नाम, स्पेस देखिए, लिखिए अपने शहर का नाम, विच सिटी, कहाँ से हो आप, ये जानना आज की सुबह मेरे लिए बहुत जरूरी है। एंड इसके अलावा फिर आपने लिखना है राइट आंसर, ये जो गाना चल रहा है वो कौन सा गाना है। व्हाट्सएप कर देना आप मुझे 9837896896 पे, इतनी बार तो मैंने बता दिया है, अभी तक आपको ये नंबर याद हो जाना चाहिए। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो गजेंद्र भाई जरा बोलो एग्जैक्टली सच्ची यार, ज्यादा प्यार हो जाता, वो मेरे को नहीं पता भाई, तो मैं सह नहीं पाता, ऐसी बात इसमें तेरा घाटा। चलो भाई घाट घूटा नहीं कराएंगे आपका, फिलहाल आप मुझे मैसेज करेंगे अभी के अभी, राइट नाउ मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके सही जवाबों का, और जो लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं बस अभी लौट कर आता हूँ, आपके मैसेज को शामिल करूंगा, डोंट गो एनीवेयर, क्यों नहीं आनंद के साथ, सोनिया गांधी, नकाश अजीज की आवाज, ड्रीम गर्ल का ट्रैक सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, 10 बज चुके हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
3: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली। छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में। मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
2: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
4: यू आर लिसनिंग टू द बिगेस्ट हिट्स, द बिगेस्ट हिट्स नॉन स्टॉप।

0: सच में यार मजा आ गया ये गाना सुन के। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ गाने इतने बढ़िया होते हैं ना जिनको सुन के सच में अंदर से फुल ऑन वाइब आ जाती है। ये तालियां बॉलीवुड के लिए इतने अच्छे गाने देने के लिए। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम बैक है। वंस अगेन यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 के साथ सुन रहे हैं। 10:08 हो गए। इमीडिएटली एक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ भाई साहब। देखो अगर आप क्यूआर कोड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भैया अब क्यूआर स्कैन करने की टेंशन खत्म हो गई है। एक टैप पर जो है आपका होगा यूपीआई पेमेंट। एग्जैक्टली कैसे होगा भाई? देखिए भैया आपको बताते हैं। देखिए क्यूआर स्कैन करने की टेंशन अब खत्म हो गई है। बिना इंटरनेट के एक बार ही आपका टैप करने पे पेमेंट हो जाएगा एंड दिस इज वेरी वेरी इजी यार। ये कैसे होगा? हाँ जी, तो मैं चलिए आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है भैया। देखिए बस आपको अपना फोन अनलॉक करना है एंड POS मशीन के पास ले जाना है एंड अब जितना मतलब आप उस मशीन में मतलब जो है यू नो अमाउंट डाला गया होगा उतना ही अब आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 5,000 रुपये तक आप जो है भुगतान कर सकते हैं एंड उसके लिए बस आपको पिन डालने की जरूरत, इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि पिन की भी नीड नहीं होगी भाई, बस आपको उस मशीन के पास जाना है और बिना स्कैन के ही आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा मेरे को यूनिक सा लग रहा है। चलो ठीक है भाई, लेकिन भैया मैं आपको कह रहा हूँ कि जो चीज़ चलती आ रही जिस चीज़ पर आपका भरोसा है उस चीज़ को कायम रखें, ठीक है? ऐसे मतलब नई नई चीज़ें तो आती रहती हैं, आविष्कार होते रहते हैं, लेकिन आपको जो सही लगे भैया वो चीज़ आप डेफिनेटली करें ना। QR कोड से अगर आप पेमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा भी रहता है, बिकॉज जब आप दूसरे बंदे को पेमेंट ट्रांसफर करते हो तो एक बार उसका वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नाम भी आ जाता है, फिर सामने वाले को हम दिखा भी देते हैं तो सेटिस्फैक्शन भी हो जाती है। 5 दिन वर्किंग को लेके बैंक जो है आज हड़ताल कर रहा है। काफ़ी सारे बैंक आज ऑफ हैं भैया। वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 5 डेज वर्किंग चाहिए, नॉट वीक डेज, हमें 5 दिन ही वर्क दो। इसको लेके हड़ताल जो है बताई जा रही है और आज बताया जा रहा है कि दिल्ली के कई इलाके आज बंद रहने वाले हैं। एंड फाइनली यार देश दुनिया में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। खैर अभी मुरादाबाद में क्या हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया है, अगर आपने मिस कर दिया तो हो उसके लिए फिर आपको कल ट्यून इन करना होगा ना दोबारा से। कुछ नई नई बातें कल भी लेकर आऊँगा। और आज की सुबह मैंने आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था ये गाना आइडेंटिफाई करो कौन सा गाना है, और अभी बताता हूँ कौन है आज की शो का विनर। लौट कर आता हूँ उसके बाद बताऊँगा। बहुत प्यारा सॉन्ग था, यही आपसे मैंने पूछा था आज की मॉर्निंग। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं। अभी मैं एकदम से लौट कर आ रहा हूँ, बस आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, मैं एकदम आता हूँ वापस।
1: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक TM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
3: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: बेटा
1: यार मेरा नहीं है कुछ नहीं, आप जहाँ भी जा रहे हैं पहुँच जाओ ज्यादा अच्छे गानों के लिए ऐसी कीप लॉकिंग ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। ज्यादा तेरा घाटा मेरा नहीं है बॉस, आपने जवाब नहीं दिया तो आपका हो सकता है लेकिन किसी का घाटा खुटा नहीं कराना। एनीवेज अभी बैक टू पॉइंट, कोई बात नहीं यार। हेलो जी, कैसे हालचाल? वीकेंड है, फ्राइडे है, ऑफ कोर्स अच्छे गाने होना तो बनता है आज की सुबह। और आज की मॉर्निंग मैंने आपसे पूछा था बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये कौन सा गाना है, आइडेंटिफाई आपने करना था। बहुत सारे मैसेज आए भाई, बहुत प्यारा सॉन्ग था यार ये। ऑफ कोर्स मैंने कहा भी था भारी भरकम ज्वेलरी पहनी है कैरेक्टर ने, बहुत अच्छा डांस किया इस गाने को। यही बताने के लिए विभोर जी मेरे साथ फोन लाइन पे है आज की सुबह, आइए जरा बात कर लेते हैं सर से। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप?
2: गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया सर।
1: और बताइए अपने बारे में सर, नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं?
2: मैं एक्सपोर्ट का काम है मेरा, लाकड़ी में मेरी फैक्ट्री है और मैं एमडीए में रहता हूँ।
1: ऑलराइट, तो मतलब अभी आप ऑन द वे हैं आई थिंक, राइट?
2: यस यस यस, ऑन द वे।
1: ऑलराइट, मतलब चलते फिरते रेडियो ट्यून इन कर लेते हैं, अच्छा लगता है सर?
2: बिल्कुल सर, मॉर्निंग मून फ्रेश हो जाता है।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया, चलो इटलीज रेडियो से कुछ तो अच्छा कर पा रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कभी कभी।
2: बिल्कुल सर,
1: क्योंकि सुबह सुबह सब इतना भागदौड़ में रहते हैं और हमारी भी कोशिश होती है अच्छी जानकारी और अच्छा म्यूजिक से लोगों का दिन बनाया जाए।
2: डेफिनेटली सर।
1: ऑलराइट, बहुत बढ़िया, तो आपको रेडियो पे क्या इंटरेस्टिंग लगता है विभोर जी?
2: सर बस आपका जो आप क्वेश्चन पुट अप करते हो, जो नई नई चीजें सुनने पता चलती है कि क्या चल रहा है।
1: जी जी,
2: तो बिल्कुल वही
1: अपडेटेड हो जाते हैं, राइट?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मॉर्निंग में आधा घंटा मिलता है ऑन द वे में तो सारी चीजें अपडेटेड हो जाती हैं।
1: वेरी नाइस सर, हमारी भी यही कोशिश होती है, मुझे लगता है कि चलो अपनी मेहनत सफल हो गई यार, अब प्रपोजल जो है मांग लेना चाहिए अपने बॉस से, राइट?
2: बिल्कुल, आपसे बात करके और पॉजिटिव होता है आपका रेडियो सुन।
1: बहुत बढ़िया यार, मतलब होना भी चाहिए, सुबह सुबह ये पॉजिटिविटी मिलती है तो पूरे दिन काम करने में की जो प्रोडक्टिविटी वो और बढ़ जाती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अच्छा सर, जो मैंने म्यूजिक प्ले किया था वो कौन से गाने का था जरा आप मुझे ये बताओ विभोर जी?
2: ये उर्मिला मंडल का छम्मा छम्मा सॉन्ग है।
1: अरे वाह, आपने देखी है पिक्चर?
2: यस।
1: बिल्कुल, तो आपका जवाब लॉक कर दिया जाए, सही जवाब है पक्का?
2: बिल्कुल, कॉन्फिडेंस।
1: वेरी नाइस सर, विभोर जी कांग्रेचुलेशन, जोरदार तालियां आपके लिए, ढेर सारी तालियां मेरी तरफ से आज की सुबह। और बहुत सारे लोग आपको ऑन एयर सुन रहे हैं, क्या कहना चाहोगे चलते चलते उन्हें, तमाम सारे लोगों को?
2: बस आप एफएम सुनिए, फ्रेश मूड रखिए, कूल, बस थैंक यू सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभोर जी, मुझे भी अच्छा लगा, लवली टॉकिंग टू यू। और आप जैसे लोग टाइम निकालते हैं, रेडियो सुनते हैं, हमें भी अच्छा लगता है यार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बढ़िया गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ सर, और आनंद के लिए क्या कहोगे चलते चलते?
2: You are best.
1: अरे थैंक यू यार, मतलब कम शब्दों में एक ही बार दिल जीत लिया आपने।
2: थैंक यू
1: सर, ओके, हैव अ गुड डे सर, पहुंचिए ऑफिस, ओके बाय सर,
2: ओके
1: थैंक यू विभोर जी। विभोर जी आज की सुबह जुड़े थे हमारे साथ, इन्होंने दिया सबसे पहले राइट आंसर, कंग्रेचुलेशन विभोर जी, भर भर के आपके लिए ताली और बाकी लोगों के लिए गाना।

0: खुशी एंटर होगी स्टूडियो में, ढेर सारा प्यार उसको भी देना और मुझे बिल्कुल ताने मत मारो, मैं आपका नाम पढ़ रहा हूँ। देखिए मेरे साथ दुर्गेश सैनी जुड़े थे कल्याणपुर से सही जवाब के साथ। आए हाय कश्मीर से मेराजुद्दीन लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आई लव दिस योर प्रोग्राम, थैंक यू मेरे भाई। रेडियो वाले आनंद को गुड मॉर्निंग। विक्की सागर मेरे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं ये गाने के बोल हैं मैं मेरा ठुमका भाई कहना क्या चाह रहे हो। संजय कपूर भाई थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। नहीं, संजय कपूर इन्होंने एक्चुअली आंसर गलत कर दिया है, दर्पण जी आंसर गलत हो गया है। कोई बात नहीं, हो जाते हैं, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है? सुबह की चमकदार धूप निकल रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी, अब थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया हो गया है रामपुर का मौसम। ओके, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है? ये सना तुर्क, नाजिया तुर्क मेरे साथ सही जवाब के साथ जुड़ रहे हैं आज की सुबह। प्रिंस मेरे साथ जुड़े हैं राइट आंसर के साथ, थैंक यू प्रिंस फॉर पार्टिसिपेटिंग। अमित वर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, लिखते हैं आनंद भाई थैंक यू बोलने के लिए, तो बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल जी, और ये लिखते हैं भाई वैसे थैंक यू बोलने के लिए तो काफी लोग हैं, पर कुछ ही लोग हैं जिनको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं, उनमें से मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे गुरु हैं और मेरी जीवन साथी हैं। और सही जवाब भी दे रहे हैं, यार आपने मुझे नहीं इंक्लूड किया, वेरी बैड यार। अरे मजाक करो मेरे भाई। डीके अरोड़ा चंदन नगर से जुड़ रहे हैं मेरे साथ सही जवाब के साथ, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं एंड एक वॉइस नोट मेरे पास पहुंचा है, इमीडिएटली सुनते हैं। यार टाइम बहुत ज्यादा निकल रहा है ना, मेरे को लग रहा है मेरे को टाइम बढ़ाना पड़ेगा।
1: राधे राधे।
0: राधे राधे जी,
1: आप कैसे हो? आप
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत
1: चल रहा है। आनंद जी, जो आपने म्यूजिक चलाया है उसका राइट आंसर है छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैजनिया रे।
0: बहुत बढ़िया,
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप मेरे पास होती तो मैं आपको देता 100 रुपए का नोट।
2: गाना है छम्मा छम्मा और मीला मातोडकर फिल्म
0: का है। क्या बात है, क्या बात है भरत भाई,
2: इन्होंने ज्वेलरी पहन के डांस किया था, बहुत बढ़िया। आपका सवाल का जवाब है,
0: थैंक यू भरत भाई। गुड मॉर्निंग भरत भाई, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज सुन के तो मजा आ गया, मतलब कमाल कर देते हो यार, है इतनी बढ़िया बढ़िया वॉइस नोट पहुंचाते हो आप लोग, थैंक यू सो मच गाइस। जाने का समय हो गया, छम्मा छम्मा ये राइट आंसर पहुंच रहा है मेरे पास। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है आपके? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आई एम एब्सोल्युटली गुड। रिहाना मेरे साथ जुड़ी थी आज की सुबह, शिखा मेरे साथ जुड़ी मानसर ओवर से एंड कोमल जी ने सही जवाब दिया है। ये मेरे पास नैनीताल से भावना का मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग जय श्री राम, कैसे हाल चाल है? ये थैंक यू बोलना चाहती है उन सभी लोगों को जो इनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ इन्हें सिखाते हैं, थैंक यू वेरी मच भावना। बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया आपने, वेल थैंक यू वेरी वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, एक मैसेज और पहुंचे मेरे पास सहारनपुर से, जोन रोजी पलवली हमारे रेगुलर लिसनर हैं, लिखते हैं कभी कभी हम बिना गलती किए भी बुरे बन जाते हैं क्योंकि हम वैसा नहीं कर पाते जैसा लोग चाहते हैं। क्या बात है यार, सो ट्रू। बबली गीता कश्यप लक्ष्मी भाभी हमारे साथ जुड़ गए हैं आज की सुबह, चमन लाल साहब उतली घर रोड से जुड़े हैं, रामपुर से क्षमा जुड़ी है एंड और भी बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। लवली टॉकिंग टू यू, लवली टॉकिंग टू यू एवरीबॉडी। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, प्लेजर टॉकिंग टू यू, कल मिलते हैं, बाय। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, होगी कल मेरी मुलाकात, अभी के लिए हैव अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल डे।
3: You're tuning to FM Muradabad 89.6 FM. मुरादाबाद तैयार हो जाए हंसी का डबल डोज लेकर आती है आरजी खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजी खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
1: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
5: कोई मिल गया,
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी लेकर आई हूँ आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ। एवरीवन, फ्राइडे मॉर्निंग है और तारीख तो आपको पता ही है, नहीं मालूम है, मैं बता देती हूँ, 11 सितंबर की तारीख है, फ्राइडे का दिन है और वक्त हुआ है राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में 10:30। और दोस्तों, हर सुबह एक न्यू शुरुआत लेकर आती है, लेकिन फ्राइडे की सुबह ना कुछ अलग ही वाइब लेकर आती है, क्योंकि इसलिए आज ना टेंशन को थोड़ा सा साइड कीजिए, अपने स्माइल को ऑन कीजिए और खुद से कहिए जब जो भी होगा उसे सीख लेंगे और जो आने वाला है उसे खिलखिलाकर एंजॉय करेंगे, क्योंकि वीकेंड सिर्फ छुट्टी का नाम नहीं है एवरीवन, खुद को थोड़ा टाइम देने का और लाइफ को एंजॉय करने का भी नाम है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, जो होगा बेस्ट होगा, एंड मुस्कुराइए और मुस्कुराकर पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। फ्राइडे की ये ब्यूटीफुल मॉर्निंग आपके लिए सिर्फ गुड वाइब्स लेकर आए और आप सुनते रहिए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजी खुशी और आप भी मेरे साथ इस ब्यूटीफुल सेशन में कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे अपने ब्यूटीफुल मैसेज आज की सुबह पहुंचा सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896 और जैसी घड़ी में 10 बजते हैं आपके मैसेज आ जाते हैं, नो डाउट, इतना प्यार आप करते हैं। लेकिन आनंद सर मेरी चेयर छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, वो कहते हैं कि अभी 2 मिनट वेट करो और 2 मिनट कब उनकी 10 मिनट में तब्दील हो जाते हैं उनको भी नहीं पता होता है, इतना मतलब वो रेडियो से प्यार करते हैं। हम सब प्यार करते हैं लेकिन वो कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, है ना। चलिए हम भी करते हैं अपने शो की शुरुआत और आप भी जल्दी से मेरे साथ आज की सुबह कनेक्ट हो जाइएगा अपने प्यारे प्यारे मैसेजों के साथ। अभी सुनते हैं एक ब्यूटीफुल ट्रैक एंड उसके बाद लौट कर आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें और क्या कुछ स्पेशल है एंड क्या कुछ चल रहा है अपने वर्ल्ड में, अपने सिटी में, वो सब आपको खुशी बताएगी यहाँ पर।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और हमारी दिल की पतंग तो उड़ते उड़ते आकर ठहर जाती है प्यारे सी एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। जी हाँ, प्यारे रेडियो स्टेशन पर। और अब आप भी जल्दी से अपने मैसेज हमें पहुँचाइएगा। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, देखिए फ्राइडे आते ही ना एक अलग ही मतलब ना दिल में खुशी होने लगती है। हाँ कि भैया छुट्टी आने वाली है, अब छुट्टियाँ मतलब मिलने वाली है। सैटरडे संडे वीकेंड होता है और जब ये दो दिन मिलते हैं ना तो बस ऐसा लगता है कि सारे जहाँ की खुशियाँ मिल गई हैं। और पहले से ही हम प्लान करके रख लेते हैं, प्लानिंग हो जाती है हमारी कि इस वीकेंड तो हमें यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। और कुछ सोचते हैं कि बस हमें तो आराम करना है भाई, कहीं नहीं जाना है, बहुत काम काम कर करके थक गए हैं, अब बस रेस्ट चाहिए, है ना, तो वो भी ज़रूरी है। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत संदेश आ रहे हैं आप सभी के, मैं उनको जल्दी से शामिल करती हूँ बिना किसी देरी के। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैं मैसेज पहुँचाते हैं आज की सुबह प्रिंस मुरादाबाद से। हाय गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज हमें मिला है यहाँ पर हरिओम महेश्वरी जी का मुरादाबाद लाइन पर से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है उत्तराखंड से और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं आज की सुबह निसार सलमानी, नौशाद सलमानी जी। गुड मॉर्निंग पहुँचाते धनूरी तिलीवाला से। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर नीलाक्षी जी का आया है न्यू मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग आरजे खुशी जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम गुड मैम, आप बताइएगा।

0: जो हाथों में मोबाइल है ना, उस पर जल्दी से अपना संदेश में पहुंचा दीजिएगा।
1: अख कतल करे लख कतल, जदो मुह करे करे लख कतल, असला भी लोड करे टाल जा टाल जा।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: in a
1: म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. आरजे खुशी आपके साथ है. और दोस्तों देखिए ना, बाहर का मौसम भी अच्छा है. कभी धूप निकल जाती है तो कभी बादल आ जाते हैं. हाँ, और वक्त हुआ है राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में. अभी हमारी यहाँ पर 10:52 हो गए हैं. 10:52 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में टाइमिंग हो गया है.
1: सारा दिन यूं ही गलना, जब मैं तेरे कोल ना होवां, कित्थे किदे नाल सी तू वे.
0: और बात करते हैं अपने मुरादाबाद शहर की. अपने मुरादाबाद शहर का आज वेदर कैसे रहने वाला है और क्या कुछ चल रहा है, सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. लेकिन यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ. हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम आरजे खुशी जी. वालेकुम सलाम. ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं अनमुल अकजी. ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं आज की सुबह फ्रॉम कश्मीर से. आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब. और ये कहते हैं कि मैं आपका शो एवरी डे सुनता हूँ. अमेजिंग शो होता है. और आज मुझे एक ट्रैक सुनना है. और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं तो किसी और को चाहे, कभी खुदा ना करे. नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, जय श्री राम. आपको भी जय श्री राम. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर. ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं दुर्गेश सैनी जी कल्याणपुर मुरादाबाद से आज की सुबह. और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं. ओह हो, क्या बात है, सुबह बहुत अखियां मिलाने चुराने की बातें कर रहे हैं आप. चलिए सुनवाएंगे ट्रैक और अभी बताते हैं अपने मुरादाबाद शहर के बारे में. दोस्तों मुरादाबाद में आज मौसम का मिजाज सुहाना बना हुआ है. तापमान करीब 32 डिग्री से 34 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रह सकता है. दोपहर के बाद गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना है. उमस जरूर महसूस हो सकती है, लेकिन बादलों की आवाजाही और बारिश की फुहारे गर्मी से राहत दिला सकती है. तो दोस्तों मौसम का मजा लीजिए, लेकिन बाहर निकलते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुरादाबाद का जो मौसम है ना आज का, कभी धूप कभी बादल और कभी बारिश वाला मूड भी बन सकता है. तो इसीलिए दोस्तों अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो छाता और रेनकोट अपने साथ में रखिएगा, ठीक है. कभी भी इन चीजों की आवश्यकता आपको पड़ सकती है. और अभी लौट कर आते हैं तो बॉलीवुड की गलियों में भी आपको लेकर चलते हैं. आज की सुबह बॉलीवुड में क्या स्पेशल है, क्या अपडेट है, सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. आप भी अपने संदेश हमें पहुंचाइए बिना किसी देरी के. हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896. गुड मॉर्निंग दोस्तों.

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. आरजे खुशी आपके साथ है और ये ट्रैक अभी आपने सुना. वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 11:08 राइट नाउ. और दोस्तों अब बात करते हैं बॉलीवुड के बारे में. जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि बॉलीवुड की गलियों में हम आपको लेकर चलने वाले हैं और क्या कुछ स्पेशल चल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे. दोस्तों अब बात कर रहे हैं बॉलीवुड से जुड़ी एक खूबसूरत खबर की. जी हाँ, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया अपने आने वाली फिल्म द वन के खास गाने छठी मैया के लिए बिहार की छठ पूजा की परंपरा और आस्था को करीब से समझने की तैयारी कर रही हैं. शूटिंग शुरू करने से पहले तमन्ना भाटिया जी ने बिहार और पटना में मनाए जाने वाले इस महापर्व की गहराई, आस्था और संस्कृति परंपराओं को जाना ताकि पर्दे पर इसे पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ पेश किया जाए. तो उनकी मूवी आने वाली है बहुत जल्द और छठ पूजा जो कि बिहार का पॉपुलर पर्व है एंड वो रोल उसमें प्ले करने वाली हैं, तो उसी की तैयारियों में मैम अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं. लाइक और उस यू नो जो छठ पूजा का महापर्व होता है उसे समझने के लिए उनकी बहुत ही यू नो ब्यूटीफुल अंदाज में वो नज़र आ रही हैं. सोशल मीडिया पर वो उनकी ये पोस्ट काफ़ी वायरल हो रही है और छठ पूजा का जो उत्साह मन में रहता है अलग ही होता है. पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं एंड जो बिहार के हमारे जो मतलब तमाम सुनने वाले श्रोता भी हैं जो पटना बिहार कोलकाता साइड रहते हैं वो सब छठ पूजा पर्व को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं. अब तो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है छठ पूजा. और अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे श्रोताओं के संदेशों की, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं तो मैं उनको जल्दी से शामिल करती हूँ. हमारे पास यहाँ पर एक वॉइस नोट भी आया है सर का, तो जल्दी से मैं प्ले करती हूँ. आज की सुबह क्या पहुँचाते हैं एंड उन्हीं की आवाज में सुनते हैं.
1: राधे राधे, शुभ प्रभात.
0: राधे राधे.
1: मॉर्निंग मसाला आरजे खुशी के साथ. मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा, नगर पंचायत पागबड़ा से, स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज. आज का सुविचार, परिवर्तन कभी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है. घर से दरवाजा छोटा, दरवाजे से ताला छोटा, ताले से चाबी छोटी, पर छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है. इसी प्रकार छोटे छोटे विचार बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं. नमस्कार, सुप्रभात. भेजते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज और अच्छे अच्छे वॉइस नोट, ये सुनाई देंगे सारे शहर को, सारे देश को और हो सकता है सारे संसार को. खुशी मैम गाना सुना दीजिए, मैंने तेरे ही भरोसे सागर में नैया डाल दी. हनुमानंद से नमस्कार. राधे राधे.
0: आपको भी राधे राधे नमस्कार और बिल्कुल सुनवाएंगे ट्रैक आपको. दोस्तों मैंने आपसे ना एक और बात कहनी है और वो क्या बीट है मैं आपको बताऊंगी. दोस्तों बच्चों की सोशल मीडिया सेफ्टी बहुत ज़रूरी है एंड इस टॉपिक पर भी हम बात करने वाले हैं. नेक्स्ट अपडेट हमारी यही होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं एंड वो बड़ों से भी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो उनकी सेफ्टी को लेकर क्या कुछ चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी. बस आप खुश बने रहिए खुशी के साथ और अपने मैसेज पहुंचाते रहिएगा. हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896. लौट कर आती हूँ मैं, आप कहीं मचाइए यूँ ही मुस्कराइए. गुड मॉर्निंग.

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा भजन फ्रॉम द मूवी हनुमान अंश से, और बहुत मधुर आवाज सुनील लोधी जी की। दोस्तों आज 11 सितंबर है और आज का दिन बाबा नीम करौली जी महाराज जी की भक्ति के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज बाबा जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बाबा नीम करौली महाराज जी ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में महासमाधि ली थी। उनका जीवन भक्ति, सेवा, प्रेम और मानवता के संदेशों के लिए जाना जाता है। बाबा जी भगवान हनुमान जी के अनन्य भक्त माने जाते हैं और उनके भक्त आज भी उन्हें प्रेम और श्रद्धा से याद करते हैं। और अभी आपने जो भजन सुना, मैंने तेरे ही भरोसे प्रभु सागर में नैया डार दी, इस पंक्ति में हमें वही खूबसूरत संदेश देता है जो जब जीवन में भगवान पर सच्चा विश्वास और आस्था हो तो मुश्किल हालात में भी मन को हिम्मत मिलती है। और आज के समय में भी हनुमान जी की भक्ति और आस्था से जुड़ी कहानियाँ लोगों के दिलों तक पहुँच रही हैं, जो आज बाबा नीम करौली जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। बस यही कहेंगे कि आस्था रखिए, कर्म करती रहिए और अपना भरोसा प्रभु पर बनाए रखिएगा। दोस्तों आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने संदेश मुझे पहुंचा सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज, चॉइस आपकी है। और दोस्तों अभी हमने बात की थी सोशल मीडिया की, तो क्या अपडेट है एंड वो मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों की सोशल मीडिया सेफ्टी, अब एक जरूरी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 18 साल के कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया सेफ्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि नाबालिगों की सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति और पहचान की पुष्टि जैसी व्यवस्था हो। मकसद है बच्चों को साइबर बुलिंग और ऑनलाइन शोषण, निजी डेटा के गलत इस्तेमाल और अनुचित कंटेंट जैसे खतरों से सुरक्षित रखना। तो अगर आपके बच्चे भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं एंड कोई भी एप्लीकेशन वो यूज़ कर रहे हैं, तो आपको भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है सोशल मीडिया पर, क्या चीज़ें वो देख रहे हैं, कैसा कंटेंट बना रहे हैं, क्या वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी भी है, जिम्मेदारी है। एंड आजकल सबके पास अलग अलग फ़ोन है, सब अपने अपने फ़ोनों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों को सोशल मीडिया पर सोशल क्राइम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों के पास अनजान लिंक आ जाते हैं, वो बच्चे तुरंत क्लिक कर देते हैं, उनको नहीं पता होता है क्या सही है क्या गलत है। तो थोड़ा बच्चों को भी गाइड कीजिएगा, क्योंकि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और वो क्या चीजें दिख रहे हैं एंड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कंटेंट बना रहे हैं सोशल मीडिया पर, किस तरह के वो चीजें, यू नो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे छोटे होते हैं, वो नादान होते हैं, इतना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स उनको समझाएंगे प्यार से तो बच्चे समझेंगे भी। और मुझे लगता है कि अगर आप बच्चों को सोशल मीडिया यू नो चलाने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो उनका एक टाइम टेबल सेट कर दीजिए कि आपको इतने टाइम तक फोन मिलेगा, उसके बाद आप फोन रिटर्न ले लीजिएगा। उससे क्या होगा ना, बच्चे ज़्यादा सोशल मीडिया पर उनका जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो पेरेंट्स के हाथ में डिपेंड करता है, पेरेंट्स जैसा चाहेंगे बच्चे वैसा ही करेंगे, क्योंकि वो उनसे आगे तो नहीं चल सकते हैं ना। तो बच्चों को प्यार से समझाइए, रूडली नहीं, क्योंकि बच्चों पर अगर गुस्सा करेंगे तो थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है बच्चों को। आजकल के बच्चे वैसे ही छोटी छोटी बातों पर तुरंत गुस्सा करने लगते हैं, तो उनको प्यार से गाइड कीजिएगा, और जब प्यार से बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे मान भी जाते हैं।
1: मैं तेरे कोल ना होवां कि तेरे की दे नाल सी तू
0: और हमारी पास

0: यहाँ पर मैसेज आए हैं तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। ये मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। और आज की सुबह गुड मॉर्निंग हमें विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी दी, किम छो, मैं ठीक हूँ अफरोज। फातिमा जी का मैसेज आज की मॉर्निंग आया है और ये कहती है, आज आप अपनी पसंद का ना ट्रैक मैम सुनवा दीजिएगा हमें, जो आपका सबसे फेवरेट ट्रैक है। एंड मेरी फ्रेंड भी है लाइबा, ओके बिल्कुल सुनवाएंगे। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया रानी नांगल से रिहाना जी का, गुड मॉर्निंग हमें पहुँचाती है आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर, अजीत कसाना जी का, माया देवी जी का, ऋतिक और साथ में आदित्य कसाना जी हैं, कांट रोड लदावली से अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह और इनको हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर। तो चलिए दोस्तों अभी सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद लौट कर आते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले कुछ आर्ट ब्रेक भी हैं जो फीट कर रहे हैं, खुशी जी हमें भी प्ले कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं लौट कर आती हूँ, ठीक है, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए खुशी के साथ। एंड कुछ कहना चाहते हैं आज की सुबह, कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के पहुंचा सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए चांद तारे तो नहीं लेकर आ सकती आसमान से, लेकिन हाँ आपके लिए प्रार्थना जरूर कर सकती हूँ ईश्वर से कि आप ऑलवेज खुश रहें एंड हमेशा स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें। क्योंकि जब आप फिट एंड फाइन रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली खुश भी रहेंगे। सिंपल सी बात है, क्यों? और आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। और अगर आए भी ना, क्योंकि देखिए ऐसा किसी का जीवन नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, परेशानियां ना हो, लेकिन हाँ उस परेशानी का सामना करने की ऊपर वाला आपको हिम्मत दे, क्योंकि वो बहुत ही मोस्ट होती है जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सच्चे मन से। और उस कोई भी कठिन परिस्थिति आती है जब हम उसको हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ सामना करते हैं, तो वो मुश्किल समय भी कंप्लीट हो ही जाता है। और बात करते हैं अभी हम जो फिल्म बहुत ज़्यादा चर्चा में है, हनुमान अंश की, ये मूवी खूब चर्चा में रही है दोस्तों, अभी चली भी रही है। और ये फिल्म बनी हुई है बाबा नीम करौली जी के जीवन और उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व से प्रेरित है, और दर्शकों को उनकी भक्ति, सेवा, प्रेम और विश्वास की भावना से जोड़ती है। फिल्म के दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और बॉक्स ऑफिस पर भी इसका प्रदर्शन लगातार मजबूत बना हुआ है। और दोस्तों इस फिल्म से सबसे खूबसूरत सीख यही मिलती है कि भक्ति सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रेम, सेवा और इंसानियत में भी खूब दिखाई देती है। और दोस्तों रात मैं भी ये फिल्म देखकर आई हूँ, बहुत ही अच्छी मूवी है। मेरा बहुत मन था, काफ़ी हमारे फैमिली मेम्बर्स भी बोल रहे थे कि खुशी आपको देखनी चाहिए। हमारी ऑडियंस के भी काफ़ी मैसेज आए कि खुशी जी आप ये मूवी देखकर आइए, तो मैंने कहा चलिए जब इतने सारे लोग हमें कह रहे हैं तो मुझे देखनी चाहिए। और मैंने सोशल मीडिया पर भी छोटी छोटी क्लिप्स आ रही थी, तो उनसे मतलब जब मैंने वो देखी तो मुझसे भी मतलब रहा नहीं गया, मैंने कहा मेरे को भी देखने जाना है। तो फिर रात हम लोग 9 बजे मूवी देखने के लिए गए और बहुत ही अच्छी मूवी थी। बाकी हमारे पास कुछ और बैक टू बैक संदेश आ रहे हैं। मैं अगर अपनी बातें शुरू करती हूँ ना तो रुकने का नाम नहीं लेती हूँ, इसलिए अभी अपनी बातों को मैं थोड़ा सा विराम देती हूँ और जो संदेश यहाँ पर आए उनको शामिल कर लेते हैं। एंड एक वॉइस नोट हमारे पास यहाँ पर आया है अभी, तो चलिए उनको प्ले कर लेते हैं। आज की सुबह मैम क्या पहुँचाती हैं, सुन लेते हैं उन्हीं की आवाज।
1: आप भी बढ़िया होंगी राधे राधे। खुशी आप कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ, उम्मीद है आप भी बढ़िया होंगी। आपका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा है खुशी। खुशी कल हम सब लोग हनुमान अंश मूवी देखने गए थे, बहुत ही अच्छी मूवी है, आप भी ज़रूर देखिएगा। खुशी इसी मूवी का ये वाला गाना सुनवा दीजिएगा जब

0: जी थैंक यू।
1: मोस्ट वेलकम मैम, आपका ये बड़ा प्यारा सा यूनिक सा अंदाज़ है एंड आप जो भी ट्रैक सुनती हैं उसको पहले गुनगुना कर हमें बताती हैं, थैंक यू। एंड बिल्कुल मैम, ये मूवी मैं भी देखकर आई हूँ रात, और आप भी देखकर आए हैं, है ना, बहुत अच्छी बात है। दोनों मतलब मिले नहीं हैं मूवी थिएटर में एंड लेकिन मूवी रात हमने भी देखी है, बहुत अच्छी रही है मैम। तो चलो ये गाना सुन लेते हैं मैम की पसंद का, लौट कर मैं आती हूँ। तब तक आप भी बने रहिए, जुड़े रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। अभी लौट कर आती हूँ तो मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपसे, ठीक है? तो आप जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए, अपना फोन अपने करीब रख लीजिएगा, और क्या सवाल है आज का वो बस लौट कर आती हूँ तो मैं बताती हूँ, ठीक है? आप यूं ही मुस्कुराते रहिए।

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: Hey, hi everyone. Good morning. Once again, welcome back. आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और अब एक इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं हम आपके साथ, ठीक है? अब थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं आपका. मेरे प्यारे श्रोताओं, एक छोटी सी लेकिन बड़े मजेदार पहेली मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है? वो क्या है जो आपका है लेकिन इस्तेमाल सबसे ज्यादा दूसरे लोग करते हैं. वो क्या चीज है जो आपकी है लेकिन यूज ना इस्तेमाल सबसे ज्यादा दूसरे लोग करते हैं. सोचिए सोचिए, जवाब इतना आसान है कि शायद आप कहेंगे अरे ये तो पता ही था. बताइए जल्दी से, देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन पहुंचाते हैं. अपने नाम के साथ अपना आंसर पहुंचाएगा. वो क्या है जो आपका है लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं. सोचिए और जल्दी से जवाब पहुंचाएगा. जब तक आप हमें सही जवाब पहुंचाते हैं तब तक हम आपको एक शानदार गाना सुनवाते हैं. हम भी तो जाने आज की सुबह सबसे ज्यादा अपनी माइंड की कसरत कौन कर रहे हैं. कौन है वो लकी स्कॉलर हमारे जो बनेंगे आज के शो के लकी सुपरस्टार.
1: क्या हुआ?
2: हम रोज 29 की रात को सोते हैं,

समझ तो हमें भी आ गया है कि नो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हमारी जो लिसनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनते हैं। आज की सुबह हमारे साथ हमारी तमाम लिसनर जुड़े हैं और सभी के सही जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं बैक टू बैक। अभी आपने ये ट्रैक एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी भूल चुक माफ सी। और आज की सुबह बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था ना मैंने, ज़्यादा ही सिंपल हो गया है यार। मैं हर बार सोचती हूँ कि कुछ टिपिकल से पूछती हूँ लेकिन दिल है कि मानता नहीं, वो सोचता है कि नहीं खुशी ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन मत पूछो, इजीली पूछ लेते हैं। और आज की सुबह मैंने आपसे पूछा था एक बहुत ही सिंपल सी पहेली, मैंने आपसे जानना चाहा था कि दोस्तों वो क्या है जो आपका है लेकिन इस्तेमाल सबसे ज़्यादा दूसरे लोग करते हैं, है ना, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या फिर हमारे रिलेटिव हो। और उसका सही जवाब हमें पहुंचाया है सबसे पहले कौन बनती है हमारे शो की सुपर क्वीन। एंड पहले तो हम क्लैपिंग करना चाहेंगे उनके लिए कि उन्होंने सबसे पहले सही जवाब पहुंचाया है। एंड ये ज़ोरदार तालियां मैम आपके लिए। आपने पहुंचाया है सबसे पहले राइट आंसर और इस पहेली का सही जवाब, लेकिन मुझे इनका नाम तो नहीं यहाँ पर मालूम है, बट हाँ सुगंधा स्वीट लाजपत नागा से ये मैसेज अपना पहुंचाती हैं। एंड सही जवाब है नाम, एग्जैक्टली राइट, यही हमारी पहेली का राइट आंसर है। देखिए दोस्तों ये हमारा है ना, लेकिन इस्तेमाल इसका सबसे ज़्यादा हमारे फैमिली रिलेटिव फ्रेंड्स करते हैं ना। एंड जब भी कोई बात होती है तो सबसे पहले तो घर में सब नाम से ही हमें पुकारते हैं, सबसे ज़्यादा वही इस्तेमाल करते हैं। हम तो अपना नाम कहाँ लेते हैं, बहुत कम। और बाकी हमारे पास यहाँ पर सभी के सही जवाब आए हैं। कोमल शर्मा

सही जवाब के साथ जुड़ी हैं। मैम राइट आंसर है नाम भूपी शर्मा जी, जुड़े हैं नगर पंचायत भागवाड़ा से सही जवाब के साथ। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंस का भी मैसेज आया है और ये कहते हैं मैम राइट आंसर है नाम। एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पर आसिफ फ्रॉम इटली से अपने सही जवाब के साथ जुड़े हैं आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमें पहुंचाती हैं अफरोज फातिमा जी और उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अनामूल जी का कश्मीर से और ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं आज की सुबह। अपना नाम एग्जैक्टली राइट। नेक्स्ट मैसेज हमें अलका वर्मा जी पहुंचाती हैं बुद्धि बिहार से राइट आंसर के साथ। दुर्गेश सैनी जी भी ओहो आज तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है मैंने, लेकिन कोई बात नहीं है कल भी आपको मौका मिलेगा। नेक्स्ट हमें मैसेज यहाँ पर पहुंचाती हैं संजू मुरादाबाद से, ये भी राइट आंसर के साथ जुड़ी है नाम। तो आज की सुबह सेलिब्रेशन तो बनता है ना दोस्तों, आपने इतने प्यारे प्यारे सही जवाब पहुंचाए हैं।

तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपने सभी ने सही जवाब पहुंचाए आज की सुबह। एंड देखिए, मैं अभी यहाँ पर आपको कुछ गिफ्ट तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ, मेरी तरफ से एक शानदार सा गाना आप सभी के लिए आज की मॉर्निंग। एंड श्रोताओं, अभी तो मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, लेकिन हाँ, हम मिलने वाले हैं अभी आपसे यू नो दोपहर को बहुत जल्द 3 से 5 करेंगे नई बातों के साथ, नई शुरुआत नए शो में। और आज क्या इंटरेस्टिंग है हेलो फरमाइश में, वो मैं आपको बताऊंगी तभी। अभी थोड़ा पेशेंस बनाकर रखूँ एंड अपनी फैमिली का और अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। मिलूंगी मैं आपसे 3 से 5। बाकी और कुछ अपडेट आप मुझे, आपको भी लगता है कि कुछ शेयर करना चाहिए तो बिल्कुल कीजिएगा, दिल खोल कर बातें करेंगे आपसे, है ना, 3 से 5 में। अभी तो मुझे दीजिएगा अनुमति, और एक गाना बहुत प्यारा सा है जो मैं आप सभी के लिए यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, आप इसको एंजॉय कीजिएगा और मुस्कुराइए। गर्मा गर्म खाना बना रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बना लीजिएगा। और अगर बनाने वाले आपके घर में बना रहे हैं तो बस आप खुशबू लीजिए, उसका इंतज़ार कीजिए, जब बन जाएगा तो सबके साथ गर्मा गर्म खाने का लुत्फ़ उठाइएगा। अभी मुझे दीजिएगा अनुमति। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्व

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रीना। दोस्तों सोचिए, अगर हमारी थाली में हरी सब्जियां, दालें और दूध जैसी चीजें गायब हो जाए तो क्या होगा? कमजोरी, थकान और बीमारियां हमें घेर लेगी, है ना? लेकिन अगर हमारी थाली में रंग बिरंगी हो, हरी सब्जी, पीली दाल, लाल टमाटर और सफेद दूध से भरी हुई, तो सेहत भी खिल उठेगी और जिंदगी भी। तो आज सेहत से ही लाभकारी में हम बात करेंगे पोषण की, यानी स्वस्थ जीवन की असली चाबी। इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे इस कड़ी के एक बहुत नित्य साथी सेहतिया जी। सेहतिया जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी, और मुझे उम्मीद है हमारे सभी श्रोता बहुत अच्छे होंगे। मुझे आपकी यही बात अच्छी लगती है कि आप हर बार एक नई थीम लेकर आती हैं हमारे श्रोताओं को, और इस बार तो सबसे जरूरी पोषण। अगर हम पोषण अच्छा लेना शुरू कर दें तो आधी बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी और हम ऐसे ही काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। हमने सोचा जब पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 में मनाया जा रहा है तो हम क्यों पीछे हटे अपने श्रोताओं को बताने से?
2: आरजे जी, यही तो रेडियो की खूबी है कि आप अपने श्रोताओं को हर जानकारी हमेशा जोड़कर रखते हैं। आप अपने श्रोताओं को हर जरूरी जानकारी से हमेशा जोड़कर रखते हैं। पोषण की बात चल रही है तो मुझे अपने गांव की घटना याद आ रही है। हमारे गांव में एक नन्ही सी बच्ची है, त्रिशा, घर की इकलौती और सबकी लाडली। प्यार इतना ज्यादा था कि घर के बड़े बुजुर्ग भी मना करते थे, मगर उसके माता पिता और उसके रिश्तेदार हर रोज उसे चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे के और पैकेट वाले खाना ला लाकर खिलाते थे। सोचिए, मासूम बच्ची जब खुश होकर खाती थी तो किसी ने रोकना ठीक नहीं समझा। लेकिन अचानक से ही उस बच्ची के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया और हालत ये हो गई कि लगातार उल्टियां होने लगी। परिवार घबरा गया, डॉक्टर के पास उसको लेकर गए। कई दिनों तक इलाज चला। डॉक्टर ने साफ कह दिया, इस बार बाहर का जंक फूड बिल्कुल मत देना, वरना हालत और भी बिगड़ सकती है। देखा आपने, थोड़ा सा स्वाद, थोड़ी सी लापरवाही और बच्चे की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो जाता है।
1: हाँ, हम अपने श्रोताओं को ये गलती नहीं करने देंगे।
2: जी चलिए, बिना देरी के अब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की बात करते हैं, और इसकी थीम है सही आहार बेहतर जीवन, यानी ईट राइट फॉर बेटर लाइफ।
1: तो आप हमारे श्रोताओं को सही बताइए कि सही आहार का मतलब आखिर है क्या और ये हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाता है।
2: सच कहूँ रीना जी तो पोषण का विषय हर परिवार के लिए उतना ही जरूरी है जितना घर की नींव। बिना सही पोषण के कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि ये राष्ट्रीय सप्ताह क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई?
2: देखिए, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में हर साल 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और तब से लगातार इसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, लोगों को जागरूक करना है और सही और संतुलित खानपान और पोषण से ही स्वस्थ जीवन संभव है। और इस साल सन 2025 का थीम है ईट राइट फॉर बेटर लाइफ। इसका मतलब है कि अगर हम सही खानपान अपनाएंगे तो न केवल बीमारियों से बचेंगे बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर करेंगे।
1: वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन सेहतिया जी, जब हम पोषण की बात करते हैं तो अक्सर सुनते हैं कि भारत में बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, क्या आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
2: जी आरजी रीना जी, बिल्कुल। भारत में कुपोषण अभी भी एक गंभीर चुनौती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 के आंकड़े हमें बताते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 35.5% बच्चे अवरुद्ध यानी कम लंबाई के हैं और 19.3% बच्चे यानी उनका वजन कम है और 32.1% बच्चे अंडरवेट हैं। यही नहीं, अमीनिया यानी खून की कमी भी सबसे बड़ी समस्या है। 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों में 67%, 5 बच्चों में 59% की किशोरियों और लगभग 57% महिला अमीनिया से पीड़ित हैं।
1: ओहो, ये तो सचमुच चिंता की बात है। तो क्या इसका असर सिर्फ शरीर पर होता है या फिर पढ़ाई लिखाई और काम काज पर भी पड़ता है?
2: बिल्कुल आर्जेरीना, बिल्कुल असर पड़ता है। कुपोषण से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों प्रभावित होते हैं। वो जल्द ही बीमार पड़ते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आगे चलकर वो समाज और देश की प्रगति में भी पूरा योगदान नहीं दे पाते। एक कुपोषित बच्चा बड़ा होकर भी एक कमजोर रहता है और अक्सर बीमार रहता है।
1: ठीक है, अब ये बताइए कि सही पोषण का मतलब क्या है? हमारी थाली में आखिर क्या क्या होना चाहिए?
2: बहुत ही अच्छा सवाल आर्जेरीना जी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने इसके लिए गाइडलाइंस दी है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी थाली संतुलित होनी चाहिए। इसमें तीन बड़े हिस्से जरूरी हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल, रोटी, आलू और अनाज, जो हमें ऊर्जा देते हैं।
1: सेहत या भैया, प्रोटीन का भी और विटामिन का भी तो बताइए।
2: हाँ हाँ अर्जेरीना, बताता हूँ। एक तो तुम्हारे अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है, तो श्रोताओं, दूसरा प्रोटीन, जैसे दाल, अंडा, दूध, मछली और मांस, जो शरीर की मरम्मत और विकास में काम आते हैं। और तीसरा विटामिन और मिनरल्स, जो फल और सब्जियों से मिलता है, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं।
1: ये सब तो काफी अच्छी जानकारी है, पर सेहतिया जी, लोग सोचते हैं तेल घी से मोटापा और हृदय की बीमारी होती है। खैर, हमारा मन तो अटपटा चटपटा खाने से मानता ही नहीं है।
2: हाँ भाई, ये तो सबसे बड़ी समस्या है, पर कभी कभार तो चल जाता है। हमारी रोजमर्रा की थाली में थोड़ी मात्रा में तेल घी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। नमक 6 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सबसे जरूरी, रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: तो क्या इसका मतलब है कि हर इंसान को दिन भर में लगभग कितनी कैलोरी लेनी चाहिए?
2: बहुत ही अच्छा सवाल आर्जेरीना जी। प्रत्येक व्यक्ति को दिन भर में 2000 से 2500 कैलोरी की जरूरत होती है, लेकिन उम्र, लिंग और काम के अनुसार बदलता है।
1: अच्छा सेहतिया जी, इतना सब कुछ बताया, तो ये भी हो सकता है कोई सही मात्रा में ना ले पोषण, तो सभी अंगों का कितना भाग होना चाहिए?
2: प्रोटीन लगभग 50 ग्राम रोज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कुल ऊर्जा का 55 से 60% होना चाहिए और वसा यानी फैट 30% से ज्यादा नहीं। साथ ही 25 से 30 ग्राम फाइबर रोज लेना जरूरी है, जो हमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज से मिलता है।
1: वाह, अब ये सब के लिए बड़ी उपयोगी जानकारी है, लेकिन क्या सिर्फ संतुलित आहार से ही सब ठीक हो सकता है? ठीक हो जाएगा, सरकार भी तो कई कार्यक्रम चला रही है।
2: बिल्कुल, सरकार कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रही है, जैसे एनीमिया मुक्त भारत यानी AMB। इसका लक्ष्य है बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया कम करना। इसके लिए आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं और समय समय पर कीड़ों की दवा दी जाती है और जागरूकता फैलाई जाती है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस यानी NDD, इसमें स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को साल में 2 बार अल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है, उनके पेट में कीड़े ना पनपे।
1: और वो माँ करके एक प्रोग्राम था वो?
2: अरे हाँ हाँ भाई, वो भी बता रहा हूँ, माँ का स्नेह माँ कार्यक्रम। इसका मकसद है कि हर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध पीना शुरू करें और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। लैक्टेशन मैनेजमेंट सेक्टर्स LMCS, यह बीमारी या समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए माँ का दूध सुरक्षित रूप में उपलब्ध कराया जाता है। पोषण पुनर्वास केंद्र यानी NRCS, ये ऐसे बच्चों के लिए है जो गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। यह उन्हें इलाज और पोषण, यहाँ उन्हें इलाज और पोषण दोनों दिए जाते हैं।
1: सेहतिया भैया, आप एक और भूल रहे हैं, विटामिन ए वाला एक प्रोग्राम था ना?
2: अरे हाँ भाई हाँ, वहाँ भी पहुँच रहा हूँ। और आखिर विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, 5 साल से छोटे बच्चों को हर 6 महीने पर विटामिन ए की खुराक दी जाती है।
1: वाह सेहतिया जी, आपने तो सारी जानकारी एक साथ दे दी। लेकिन हमारे गांव में लोग अक्सर कहते हैं कि फल और सब्जियां महंगी है, तो क्या पोषण सिर्फ अमीरों के लिए है?
2: आर्जेरीना जी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोषण हर किसी के लिए है। हमारी लोकल और मौसमी चीजें जैसे चना, मूंगफली, दालें, गुड़, हरी सब्जियां और मौसमी फल, ये सब बहुत पौष्टिक होते हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं है। जरूरी है कि हम इन्हें रोज अपनी थाली में शामिल करें।
1: बहुत बढ़िया सेहतिया जी, हमारे गांव और मोहल्ले में लोग पोषण को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। कई बार समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। क्यों ना आप आज हमारे श्रोताओं को कुछ आम मिथकों की सच्चाई बता दीजिए।
2: जी बिल्कुल आर्जेरीना, ये तो जरूरी है। चलिए कुछ बड़े काले मिथक की परत खोलते हैं।
1: सबसे पहले तो यही सुना है गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खाना खाना चाहिए, चाहे जैसा भी हो।
2: देखिए ये पूरी तरह गलत फहमी है। गर्भवती महिलाओं को ज्यादा नहीं बल्कि संतुलित और पौष्टिक भोजन चाहिए। अगर वह सिर्फ तली भुनी चीजें या सिर्फ चावल रोटी खाएंगी तो माँ और बच्चा दोनों कमजोर रहेंगे। थाली में हरी सब्जियाँ, दालें, दूध, फल और अनाज सब होना चाहिए।
1: ठीक है, अब दूसरा मिथक, लोग कहते हैं बच्चों को 6 महीने से ऊपर ही ऊपर का दूध या खाना देना चाहिए।
2: अरे नहीं आरजे रीना जी, WHO और भारत सरकार दोनों की गाइडलाइन साफ कहती है कि बच्चे के जन्म के पहले 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, यही उसका सबसे और पर्याप्त पोषण है। ना पानी, ना शहद, ना ऊपर का दूध, सिर्फ माँ का दूध।
1: अब सुनिए तीसरा, लड़कों को दूध, घी और फल ज्यादा देना चाहिए, लड़कियों को उतना ही जरूरी नहीं।
2: यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है, यही लैंगिक भेदभाव और बच्चों की सेहत बिगाड़ता है। सच्चाई ये है कि लड़के और लड़कियां दोनों को बराबर का पोषण मिलना चाहिए। किसी को कमजोर रखने का मतलब पूरे परिवार और समाज को कमजोर करना है।
1: बहुत सही, लेकिन एक और मिथक है, मीठा और जंक फूड बच्चों की सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस दांत खराब करता है।
2: नहीं आरजे रीना जी, ये तो सबसे खतरनाक सोच है। लगातार मीठा और जंक फूड बच्चों को मोटापा, डायबिटीज और पेट की बीमारियां देता है। सिर्फ दांत ही नहीं, पूरा शरीर बीमार हो जाता है।
1: अब अगला मिथक, पानी या दाल में डाला गया आयरन फॉलिक एसिड पाउडर दवा है और इसे साइड इफेक्ट होगा।
2: बिल्कुल गलत, यही सुरक्षित पोषण सुधार तकनीक है। खाना खाने का स्वाद नहीं बिगड़ता और शरीर को जरूरी आयरन मिलता है, इससे बच्चे और महिलाओं में अमीनिया कम होता है।
1: ठीक है, एक और सुना है खून की कमी सिर्फ औरतों को होती है, पुरुषों को नहीं।
2: गलत फहमी, ये भी गलत फहमी है। अनीमिया पुरुषों में भी होता है, बस दर महिलाओं और बच्चों में ज्यादा। खून की कमी किसी को भी कमजोर बना सकती है।
1: और आखिरी मिथक, नाश्ता छोड़ने से वजन कम होता है।
2: ये तो सबसे बड़ा झूठ है रीना जी। नाश्ता छोड़ने से शरीर थका थका रहता है और दिन भर इंसान ज्यादा खा लेता है। यह सच्चाई है कि नाश्ता करने से वजन नियंत्रण रहता है और सेहत अच्छी रहती है।
1: वाह सेहतिया जी, आपने तो आज पोषण से जुड़े सारे मिथक तोड़ दिए। मुझे लगता है हमारे श्रोता अब और ज्यादा जागरूक हो गए हैं। अब अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के मौके पर?
2: आरजे रीना जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सही पोषण ही असली धन है। अगर हम अपने बच्चे और परिवार को संतुलित आहार देंगे तो बीमारियाँ कम होंगी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी। इसलिए सब लोग इस सप्ताह यह संकल्प लें कि हम अपनी थाली को रंग बिरंगी और संतुलित बनाएंगे। तो चलिए हम अपनी शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तो तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत सही तो लाभ कहीं।
1: वाह सेहतिया जी, आज आपने बहुत ही काम की बात बताई। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1 सितंबर से लेकर यानी कि 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, यानी कि पोषण। हमें अपने डाइट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो शामिल करने चाहिए जिससे हमें यानी कि एनर्जी मिले और हमारे बाल भी सही रहे और हमारे स्किन भी सही रहे। कहते कि हेल्दी खाना ही आपको हेल्दी रखता है। तो आज मेरे साथ कनेक्ट है डॉक्टर किरण मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताइए।
3: मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ, महिला चिकित्सालय में और मुरादाबाद में, और हमारा SNCU का वो है मेनली। तो हम यूनिट्स को देखते हैं, 28 दिन तक के बच्चे सारे हमारे पास ही आते हैं और साथ में लैक्टेशन यूनिट भी है हमारा। तो उसमें हमारा मदर का भी हमारा पूरा होता है, KMC का भी हमारा यूनिट है जिसमें की हम बच्चों को गर्म करना और कैसे उनको गर्माई दे करके लो बर्थ वेट को हमारे को सही करना है।
1: ओके मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक आखिरकार मनाया पाया क्यों जाता है ये?
3: हमारे पास पोषण वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से सरकार भी ये प्रयास करती है कि इस तरह के वीक्स अगर वो बनाते हैं तो हर जना सेम टाइम पर पे उस चीज को पोटेंशिएट कर देता है, उस बात को, उस हमारा जो भी हम एक थीम को लेकर के चलेंगे। तो कुपोषण वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत है, क्योंकि भुखमरी भी काफी है,
4: बिल्कुल,
3: और गरीब लोग भी काफी हैं, है ना, एंड दूसरा अमीर भी हैं तो दे डोंट नो द स्टाइल ऑफ ईटिंग, तो वो फिर ज्यादा वो मीडिया और उसके हिसाब से जैसे जो चीजें ज्यादा पब्लिसाइज हो रही हैं उस पे चले जाते हैं। तो मतलब ओबेसिटी भी कुपोषण है, ओवरवेट होना भी
4: बिल्कुल
3: कुपोषण है, और अंडरवेट होना भी कुपोषण
4: है।
3: तो वी कैन नॉट से कि कोई अमीर है तो वो वेल न्यूट्रिश्ड है ना, वेल नरिश्ड है, क्योंकि उसके अंदर भी हमारा हम देखें तो वो बच्चे ओवरवेट हैं, क्योंकि उनका जो मोड ऑफ ईटिंग है एंड चॉइस ऑफ ईटिंग है वो बिल्कुल ही अलग है। तो इस वजह से कुपोषण दोनों हर लेवल पे, हर जगह पे हमारे को मिल रहा है।
4: तो मैम, जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने डाइट में, रेगुलर डाइट में ऐसा क्या शामिल करना चाहिए जिनसे उनको एनर्जी मिले, और डाइट में अपने क्या क्या ऐसी चीजें जो शामिल करें वो?
3: देखिए, जो भी हम जिस भी लोकेलिटी में रह रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, जो वहाँ का लोकल फूड है वो हमारे लिए बेस्ट डाइजेस्टेबल है। जो फ्रूट है वो क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से है, क्योंकि वो महंगा है इसलिए वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा। जो सीजनल फ्रूट होगा, भले ही वो अमरूद हो, वो केला हो, है ना, या जिस सीजन में जो चीज हो रही है, एप्पल है तो एप्पल का हमें लेना है। सीजनल फ्रूट अगर हम लेंगे तो उसमें हमारे को सारे विटामिन एंड जितना भी उसका मिनरल्स वगैरह मिलने हैं वही मिलेंगे। सेम चीज हमारे पास वेजिटेबल्स के लिए है।

0: जितनी फ्रेश होंगी एंड जितनी टाइमली हम उसको यूज कर लेंगे। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि मंडी से गए, वहां से मतलब खेत से आया तो मंडी पे आया,
1: हाँ जी
0: ठीक है, फिर मंडी से वो मार्केट में आया, मार्केट से हमारे फ्रिज में गया, फिर हम धीरे धीरे ओवर अ वीक हमने से खाया, तो जितना वो स्टेल होता चला जाएगा, पुराना होता चला जाएगा, उतना उसके जो मिनरल्स एंड जो उसकी पौष्टिकता है वो चीज कम होती चली जाती है। इसलिए हमारे को हर चीज कोशिश

0: इतना ही फास्ट फूड्स आ गए, ठीक है, विच इज कॉल्ड जंक फूड, तो वो वाकई में जंक है बिकॉज उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी नहीं है और उसमें हमारे पास अमाउंट ऑफ फैट एंड चीज ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, तो वो पब्लिसाइज इतना हो गया है मीडिया उसमें एडवर्टीजमेंट और उसकी वजह से ना, तो बच्चे उसकी तरफ को ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट हमारे को उनको इस चीज को एजुकेट करना चाहिए, सरकार ने तो अपनी तरफ से अच्छा कर रखा है क्योंकि साइंस जब से भी स्टार्ट होती है फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर हमेशा न्यूट्रिशन एंड डाइट पे ही होता है, तो दैट इज एन अवेयर जो कि बच्चे को अपने स्कूल में ही मिल रही है, टीचर से ही मिल जा रही है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, और उसमें वो समझ में आता है उनको कि क्या क्या चीजें उनको किस तरह से मिल रही है, बैलेंस डाइट क्या है, वो सारा स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। अब इस वीक में हमने उसको और पोटेंशिएट कर दिया, हमने और अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन कर दिया, तो उन्हें मीडिया में भी सुनने को मिल गया।
1: हाँ जी,
0: जो कि एक मीडिया की तरफ से कोई मैसेज आता है तो बच्चे काफी अटेंटिव है, मोर ऑन द मीडिया, और एज के हिसाब से हम लोग रिलेटिवली काफी कम उसको यूज करते हैं, तो ये एक मैसेज हमारा बड़ा अच्छा सा जाता है उससे।
1: तो मैम, जो महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को स्तनपान करवाती है उनके लिए डाइट कितना जरूरी है और अपने डाइट में ऐसा क्या शामिल करें ताकि बच्चों को भी पोषण मिले और उनको भी पोषण मिले?
0: जैसे पूरी प्रेगनेंसी रही तो सब वो जो भी न्यूट्रिशन बच्चे को मिला वो मदर से ही मिला।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अब डिलीवरी के बाद भी उसको मदर से ही मिलना है, तो इस वजह से मदर अब डबल तो खा नहीं सकती।
1: बिल्कुल।
0: इससे हमारे को कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनसे हमें सप्लीमेंट करना होता है, उसमें हमारे को ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, है ना, मिल्क आ जाता है, जो चीज वो इजिली ले ले, कंज्यूम कर ले, और उसको हमें ध्यान देना है कि उसकी डाइट में प्रोटीन्स भी अच्छी हो, दो बार मुंह से डाल दें, दलिया दें, ठीक है, क्योंकि दलिया में हमारा फाइबर्स भी आ जाता है, और जिसमें फाइबर आएगा साथ में विटामिन भी आ जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ठीक है। साथ में हम फ्रूट्स दे सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हों, एंड ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, जैसे बोले, बस हमें इतना ध्यान रहना पड़ता है कि जो सिजेरियन वाले हैं क्योंकि उनमें हीलिंग होनी है, अभी कितने टाके हैं, तो उसमें जो फैटी चीजें हैं, ऑयली चीजें हैं, घी का इस्तेमाल संभल के कर लें, बाकी और चीजें ले सकते हैं।
1: और ऐसी क्या चीज है जो उनको नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए?
0: कोई चीज ऐसी नहीं है नहीं लेनी चाहिए, ये जो हमारे सिस्टम में बना हुआ है परहेज फॉर 3 मंथ्स, और कितनी मदर्स आज तक भी ऐसी आती हैं जो कि सिर्फ मूंग की दाल खा रही है 3 महीने, विच इज इम्पॉसिबल, कोई जना 3 महीने मूंग की दाल लगातार खाए तो वो खाई नहीं सकता, है ना।
1: बिल्कुल,
0: अल्टीमेटली दे अवॉइड ईटिंग इट। और हमारा जो बच्चादानी है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज बिल्कुल डिफरेंट, है ना, तो बच्चा डिलीवर हो गया, बच्चादानी अपनी जगह पे आ गई, नसें बंद हो गई 42 डेज में, है ना, तो हमारा 6 वीक्स का जो है उस बीच अगर हमें परहेज करना है तो हम ठंडे का कर लें। आप ऐसे मान लो कि नसें खुली हैं, अगर उनको करना भी है तो ठंडी वाली चीजें, बर्फ की चीजें, कोई भी ऐसी चीज है फ्रिज व्रिज की रखी हुई, उसका परहेज कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फूड में दे कैन ईट एवरीथिंग, सब कुछ डाइजेस्ट होता है, इसलिए कोई ऐसा परहेज नहीं है कि हमारे को सिर्फ मूंग मसूर ही खानी है 3 महीने के लिए, कुछ करनी है नहीं, उससे क्या है, मतलब मदर का तो न्यूट्रिशन हमने खराब कर ही करी थी।
1: हाँ जी, बच्चों
0: उसका दूध भी नहीं अच्छा उतरेगा।
1: अच्छा अच्छा,
0: जितनी अच्छी डाइट उसकी होगी उतना ही हेल्दी उसका मिल्क भी होगा। वही चीज है, क्योंकि 6 मंथ तक हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क कहते हैं, ठीक है, तो बच्चे को हमें कुछ भी नहीं देना है, तो वो टोटल डिपेंड पे उसको डाइजेस्ट ही नहीं होगा।
1: हाँ जी,
0: ठीक है, तो मदर का हम जितना न्यूट्रिशन अच्छा रखेंगे तो उतना हमारा बच्चा ही तो हेल्दी होगा।
1: और जो हमारे जो ओल्ड बुजुर्ग होते हैं मैम, उनको एक्चुअल में जो सही डाइट है उनके लिए, बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि उनके दांत भी टूट जाते हैं, तो उनको ऐसा डाइट में क्या शामिल करना चाहिए जिससे उन्हें दिक्कत भी ना और पूरी हेल्दी यानी कि पूरी अच्छे से पोषण उनको मिल जाए?
0: ठीक है, डाइट तो बेसिकली वही है, है ना, हमारा है दाल है सब कुछ, तो ये हम कर सकते हैं कि मतलब बहुत हैवी वाली चीजें उनको ना दे, क्योंकि थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो आई जाती है उनको विद टाइम।
1: हाँ जी,
0: तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको हमने जैसे खिचड़ी के फॉर्म में दे दिया, उसी में हमने वेजिटेबल्स भी मिला दी, ठीक है, हमने रोटी या कुछ बहुत दी तो हमने उनको दे दिया दाल में, क्योंकि प्रोटीन्स की कमी होती है मेनली एज के साथ, रोटी तो वो खाई लेते हैं पर प्रोटीन्स का इतना वो ध्यान नहीं रखते, सब्जी अपना मन के हिसाब से खा ली। एंड ओल्ड एज एक बड़ी ही डेलिकेट एज है एज अ चाइल्ड विद ईगो, मतलब अपना चाहते भी हैं अटेंशन, देना भी पड़ता है, नहीं दे पाए तो नाराज भी हो जाते हैं, है ना? पर बच्चे को थोड़ा डर होता है।
1: हाँ, बिल्कुल जी।
0: और उनसे हम डरते हैं, है ना, ये डिफरेंस होता है।
1: बिल्कुल जी,
0: तो इसलिए इट इज अ वेरी नाइस थिंग कि हमारे को उनको प्यार से भी रखना पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, डांट भी खानी पड़ती है, पर यह है कि मतलब उस हिसाब से उनको बस उनकी उन्हें एक अफेक्शन मिल जाए, उन्हें टाइम मिल जाए हमारा।
1: तो मैम, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि मोटापे और कुपोषण से बचने के लिए हमें क्या करना है?
0: देखिए, मोटापा हटाने के लिए ऐसा नहीं है, कि हमारे को खाना बंद कर देना है, ठीक है, डाइट प्लान्स चल रहे हैं, बिल्कुल भूखे रहते हैं वो, या तो आप उस चीज को बिल्कुल ही किसी डाइटिशियन के अंडर ही करें, ठीक है। मेन थिंग इज जो हम खा रहे हैं, हमारी लाइफ इतनी स्टैग्नेंट

0: गई है, ठीक है ना। तो हर चीज तो अब आप सोचिए बाहर निकलो तो खेलने की जगह नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: है ना, देयर आर नो फील्ड्स। तो बच्चे खेले तो कहाँ खेले, छत पे खेलते हैं या घर पे खेलते हैं या मोबाइल पे खेलने जाते हैं,
1: छत पे भी खेलने से मना करते हैं।
0: हाँ वही, वहाँ भी गिर जाते हैं बच्चे। भी एजेंट अटेंडेंट हमेशा चाहिए उन्हें देखने के लिए। बाहर रोड में नहीं खेल सकते, ट्रैफिक इतना है, बाहर कहीं दूर जाए तो बच्चे चोरी हो जाते हैं।
1: हाँ
0: है ना, तो पेरेंट्स वैसे भी डर के मारे भेजना चाहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा मेन थिंग ये है कि एक्टिविटी कोई हो जाए, मतलब जो हम खा रहे हैं वी शुड हैव अ बैलेंस डाइट। खाना सब कुछ है, साथ में हमारे को उसको बर्न आउट कर देना है। तो बच्चे कोई साइकिलिंग कर लें, डांस कर लें एक घंटे का, है ना, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर लें जिसमें कि उनको पसीना आए, ठीक है, और वो कंटिन्यूस हो। एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज कर लें, ठीक है, और अगर पॉसिबल है तो जिम कर लें। एनीथिंग, मतलब एक्सरसाइज करनी है, जरूरी नहीं हम जिम जाए तभी हमारी एक्सरसाइज होगी, घर पे भी कर सकते हैं, या अपना खेल लें कुछ एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी हो जिसमें कि हमारी वो एनर्जी बर्न हो, है ना, तभी वो हटेगी। नहीं खाने से हमारा बीएमआर कम हो जाता है और वो दोबारा वेट गेन करता है।
1: अच्छा अच्छा, मतलब डबल वेट गेन करता है वो।
0: मतलब बीएमआर क्या करता है, बीएमआर इज हमारे बर्निंग ऑफ द कैलोरीज वी आर ईटिंग। तो उसमें हमने क्या करा, जब हमने अपनी कैलोरीज कम कर दी, 1000 से भी कम कर दी, अब हमारी बॉडी में बीएमआर भी कम हो जाएगा अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। तो बीएमआर कम हो गया मतलब अब हमारी रिक्वायरमेंट कम हो गई, हम जितना खा रहे हैं उतना भी बर्न आउट होकर के कंज्यूम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अबव दैट जो हमने खाया वो फिर हमारा वेट गेन नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इट इज नेसेसरी कि खाना हम पूरा खाएं जितनी हमारी डाइट बनती है 1500-2000 कैलोरीज तक का, ठीक है, और उसके बाद उसको हम बर्न आउट भी करें। एल्डर्स हैं वॉक कर लें,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, और बच्चे हैं तो डांस कर लें, साइकिलिंग कर लें, एक्टिविटी कर लें, खेलकूद करें, मतलब अच्छा प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी।
1: एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे।
0: खाना तो हमें बैलेंस्ड ही खाना है, एंड जो हमारे ट्रेडिशनल फूड है दैट इज द बेस्ट, दैट इंक्लूड्स रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दूध, दही, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और सारा हमारा सैलेड, यही बैलेंस्ड है।
1: थैंक यू मैम।
2: आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम। याद रखिए, सही पोषण बेहतर जीवन। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे और सेहतिया जी को अनुमति।
3: नमस्कार।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: सभी श्रोताओं का हमारी सेहत की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। सेहत सही लाभ कई के एक नए एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। और आजकल हर जगह पोषण माह की चर्चा हो रही है, लेकिन सच बताऊँ, पोषण शब्द सुनते तो हैं, हम समझते कम हैं। हम सोचते हैं पेट भर गया है मतलब पोषण पूरा हो गया है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेहतिया भैया, और साथ में एक पोषण विशेषज्ञ भी हैं, जो हमें बताएंगे कि सेहत भोजन कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद आरजे खुशी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी अस्पताल में नहीं रसोई में शुरू होती है, और स्वास्थ्य भी वहीं से बनता है।
3: वाह, क्या बात कही आपने। लेकिन सच बताऊं, कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे बहुत चिंतित कर दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हमारे देश में 6 महीने से 5 साल तक के 67.1% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। इतने छोटे बच्चों में खून की कमी, ये कैसे हो सकता है?
4: यही तो पोषण की असली तस्वीर है, और यह समस्या सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में भी 59% से ज्यादा एनीमिया है, और गर्भवती महिलाओं में लगभग 52%। इसका मतलब यह है कि हमारे भोजन में कहीं ना कहीं बहुत कमी है।
3: तो क्या इसका मतलब यह है कि हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन सही पोषण नहीं मिल पा रहा है?
4: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे। पोषण सिर्फ खाना नहीं, सही संतुलित भोजन है। शरीर को ऊर्जा, ताकत, दिमागी विकास, बीमारी से बचाव सब भोजन से ही मिलता है। भोजन हम खाते हैं वही हमारे खून, हड्डियों, मांसपेशियों और दिमाग को बनाता है।
3: तो सबसे आसान भाषा में बताइए, पोषण आखिर होता क्या है?
4: पोषण का मतलब यह है कि पोषण का सही मतलब है संतुलित भोजन, जो शरीर की जरूरत पूरा करे। भोजन से मिलने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
3: ये थोड़ा कठिन लग रहा है, जरा आसान करके समझाइए।
4: देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी बड़े पोषण तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर का ढांचा बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी विटामिन, खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत जरूरी होते हैं।
3: मतलब अगर भोजन में विविधता नहीं होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा?
4: बिल्कुल सही कहा आपने। स्वास्थ्य आहार 4 सिद्धांतों पर आधारित होता है, पर्याप्तता, संतुलन, संयम और विविधता। यानी भोजन इतना हो कि जरूरत पूरी हो, ऊर्जा संतुलित हो, हानिकारक चीजें सीमित हो और खाने में विविधता हो।
3: गांव में लोग कहते हैं कि पोषण वाला खाना महंगा होता है।
4: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे गांव की दाल, बाजरा, ज्वार, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, ये सब सबसे अच्छे पोषण देते हैं। महंगा पैकेट वाला खाना पोषण नहीं देता, बल्कि कई बार बीमारी दे जाता है।
3: तो शरीर को ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है?
4: कार्बोहाइड्रेट से, साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कुछ ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं से तो आता है।
3: और प्रोटीन?
4: प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है, मांसपेशियां बनाता है। दाल, चना, दूध, अंडा, ये सब अच्छे स्रोत है। शाकाहारी भोजन से भी पूरी प्रोटीन मिल सकता है।
3: बसा यानी फैट को लोग अक्सर बुरा मानते हैं।
4: जरूरी नहीं है, शरीर को कुछ वसा चाहिए, लेकिन सही वसा सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तेल बेहतर है। ज्यादा घी, तला भोजन और ट्रांस फैट नुकसान कर सकते हैं।
3: आजकल गांव में भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ रही है, क्या इसका संबंध भोजन से है?
4: बिल्कुल, इसका बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि ज्यादा नमक, चीनी, प्रोसेस फूड, प्रोसेस भोजन कहा जाता है, ये इनकी बड़ी वजह है। नमक दिन में 5 ग्राम से कम होना चाहिए, ज्यादा नमक दिल की बीमारियां बढ़ा सकता है।
3: फल और सब्जियों का कितना सेवन जरूरी है?
4: वैसे तो आमतौर पर हर व्यक्ति को रोज लगभग कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां लेनी चाहिए। इससे शरीर को फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते हैं।
3: बच्चों के लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है?
4: जीवन के पहले 1000 दिन गर्भ अवस्था से लेकर बच्चों के 2 साल तक सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही समय दिमाग और शरीर का विकास करने के लिए सबसे फायदेमंद और सबसे तेज बनाता है दिमाग।
3: तो शिशु को क्या खिलाना चाहिए?
4: पहले कुछ महीने केवल माँ का दूध, इसके बाद घर का बना अर्ध ठोस भोजन जैसे कि खिचड़ी, दाल, सब्जी, फल। नमक और चीनी नहीं डालनी चाहिए इसमें।
3: गांव में एक धारणा है कि कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है।
4: असल में अधिकतर मामलों में ऊर्जा की कमी होती है, यानी बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं खा रहा होता है। दाल रोटी भी सही मात्रा में अगर बच्चे को मिले तो वह स्वस्थ रह सकता है।
3: और गर्भवती महिलाओं को पपीता या केला नहीं खिलाना चाहिए, ये बात सही है?
4: नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। ये फल सुरक्षित है और विटामिन से भरपूर है। ऐसी मिथक महिलाओं को पोषण से दूर कर।
3: सरकार इस दिशा में क्या कर रही है?
4: जैसे कि आपने सुना होगा 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों में हिग्नापन, कुपोषण, अनीमिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में हर महीने पोषण गतिविधियां होती हैं, पोषण बैठक, स्वास्थ्य जांच, जागरूकता कार्यक्रम, ये सब चलते रहते हैं।
3: सुना है तकनीकी भी इस्तेमाल हो रही है?
4: जी बिल्कुल सही सुना आपने, जैसे पोषण ट्रैकर ऐप से बच्चों और माताओं की जानकारी रियल टाइम में दर्ज की होती है, इससे सेवाएं सही लोगों तक पहुंच पाती है।
3: महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन कैसा होना चाहिए?
4: अनाज, दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल रोजाना भोजन का हिस्सा होना चाहिए। तेल सीमित मात्रा में लें, तला हुआ ज्यादा मीठा और पैकेट स्नैक्स कम करें।
3: आजकल बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं।
4: जी हाँ, यही तो भविष्य की बीमारी का कारण बनेंगे। बच्ची आदतें पूरी जिंदगी चलती हैं, इसलिए घर का खाना सबसे बड़ा निवेश है।
3: सेहतिया भैया, क्या भोजन से गंभीर बीमारियां भी रोकी जा सकती हैं?
4: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। स्वस्थ आहार मधुमेह, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कैंसर तक के खतरे को कम कर सकता है। यानी सही भोजन दवा से भी बड़ा बचाव है।
3: सेहतिया भैया, आपने अभी कहा कि सही पोषण सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है जिससे हमारे श्रोता जुड़ सके?
4: हाँ आरजे खुशी जी, मैं आपको हमारे ही इलाके की एक लड़की आरती की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सिर्फ आरती की ही नहीं बल्कि हमारे देश की हजारों बेटियों की कहानी है।
3: जरूर सुनाइए, मुझे लगता है श्रोता भी बहुत ध्यान से सुनना चाहेंगे।
4: जी बिल्कुल। आरती एक छोटे से गांव में रहती थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, काम में तो मन कितनी तेज थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर में अक्सर यही सोच रहती थी कि पेट भर खाना मिल जाए, बस यही काफी है।
3: यानी भोजन तो मिल रहा था लेकिन पोषण पर ध्यान नहीं था।
4: बिल्कुल, आरती सुबह चाय और बची हुई रोटी खाकर स्कूल चली जाती थी। दिन में कभी नमक रोटी तो कभी सिर्फ चावल। हरी सब्जियां या फल बहुत कम मिलते थे। परिवार को लगता था कि वह ये सब शौक की चीजें हैं, जरूरी नहीं।
3: और इसका असर कब दिखना शुरू हुआ?
4: इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। जैसे आरती जल्दी थकने लगी, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती थी, अक्सर चक्कर आते थे, लेकिन घर वाले कहते कमजोरी तो लड़कियों में होती ही है।
3: ये बात तो आज भी कई जगह सुनने को मिलती है।
4: हाँ, और यही सबसे बड़ा खतरा है। कुछ साल बाद आरती को शादी हो गई, शादी के बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन उसके शरीर में पहले से ही खून की कमी थी जिससे किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं।
3: क्या उसने जांच नहीं करवाई?
4: पहले तो नहीं करवाई, उसे लगता था कि सब ठीक है, लेकिन गर्भ व्यवस्था के 4th महीने में उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। एक दिन खेत में काम करते करते वे बेहोश तक हो गई थी। उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, वहाँ जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, गंभीर अनीमिया पाया गया। डॉक्टर ने परिवार से कहा अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो माँ और बच्चे को खतरा हो सकता है।
3: यह सुनकर तो परिवार घबरा गया होगा ना?
4: हाँ, पहली बार में उन्हें समझ ही नहीं आया कि पोषण कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर ने आयरन की गोलियां दी, पोषण आहार समझाया, हरी सब्जियाँ, दाल, गुड़, चना, मूंगफली, दूध और नियमित जांच भी बताई।
3: क्या आरती ने सलाह मानी?
4: शुरू में मुश्किल हुई, उसे गोलियों से हल्की मिचली होती थी, लेकिन आशा दीदी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने समझाया कि यह सामान्य है और दवा जारी रखना जरूरी है। परिवार ने भी धीरे धीरे भोजन में बदलाव किया।
3: मतलब पूरा परिवार सीखने लगा?
4: जी हाँ, घर में पहली बार रोज हरी सब्जी बनने लगी, गुड़ और चना नाश्ते में शामिल हुआ, आरती को आराम करने दिया जाने लगा।
3: फिर प्रसव के समय क्या हुआ?
4: नियमित देखभाल और बेहतर पोषण की वजह से स्थिति संभल गई। कुछ महीनों बाद आरती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा अगर समय पर सुधार नहीं होता तो परिणाम बहुत गंभीर भी हो सकते थे।
3: यानी सही समय पर पोषण ने दो जिंदगियां बचा दी।
4: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आरती खुद अब गांव में महिलाओं को समझाती है। वो कहती है मैंने कमजोरी को सामान्य समझकर गलती की, अब कोई और ये गलती ना करे।
3: वाह, ये तो सच में प्रेरणादायक कहानी है।
4: हाँ, आज आरती अपने बच्चों को समय पे स्तनपान कराती है, पूरक आहार देती है और गर्भवती महिलाओं को जांच और पोषण की सलाह भी देती है।
3: तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या है?
4: सीख तो बहुत साफ है, कमजोरी किस्मत नहीं होती, अक्सर पोषण की कमी होती है। सही भोजन, समय पर जांच, सरकारी सेवाओं का उपयोग जीवन बचा सकता है।
3: दोस्तों, आरती की कहानी हमें बताती है कि पोषण कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं है, ये छोटी छोटी रोज आदतों से बनता है।
4: और याद रखिए, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ पीढ़ी की नींव है।
3: धन्यवाद सिहतिया भैया, सच में ये कहानी दिल को छू गई और बहुत बड़ी सीख दी गई।
4: बिल्कुल, स्वस्थ माँ मतलब स्वस्थ पीढ़ी।
3: तो अंत में श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
4: विविध भोजन खाइए, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त भोजन दीजिए, 6 महीने तक केवल स्तनपान कराएं, बच्चों को घर का पौष्टिक भोजन दीजिए, नमक चीनी कम कीजिए और रोज सक्रिय रहिए।
3: दोस्तों, हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे, साफ सफाई अपनाएंगे, नियमित जाँच करवाएंगे और संतुलित आहार अपनाएंगे।
4: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तभी देश मजबूत होगा।
3: इसी संदेश के साथ आपकी आरजे आपसे अलविदा लेती है, पर जाने से पहले लेंगे हम अपनी सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
4: अपने और अपने परिवार के स्वस्थ स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
4: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
3: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
4: व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सके,
3: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
4: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही
3: लाभ कई, धन्यवाद। सेहत सही तो लाभ कई, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6। दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद शहर का। और दोस्तों आज सोच बदलो का टॉपिक बहुत ही कमाल का है और इस सोच बदलो के टॉपिक में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी हमारे साथी हैं जो हमारा साथ देंगे इस कार्यक्रम में। दोस्तों आज का टॉपिक है शायद हर घर की सच्चाई जो बन चुका है, वो एक ऐसा टॉपिक जिसपे आज के समय में बात करना बहुत जरूरी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट घर में सब लोग एक साथ होते हैं लेकिन फिर भी हम किसी की बात नहीं सुनते, किसी से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में होता है मोबाइल। यस, आज पूरा का पूरा मुद्दा होने वाला है मोबाइल फोन और ये बहुत जरूरी डिस्कशन बन चुका है। तो मैंने सोचा सोच बदलो प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए मैं अकेला क्यों। तो आज हमारे साथ हैं आरजे रीना, आरजे कुमकुम और एक हमारी खास मेहमान शैली जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हाल चाल है आप लोगों के?
1: थैंक यू आनंद। सच कहूं तो आजकल कई घरों में लोग एक दूसरे के पास बैठते जरूर है लेकिन कनेक्ट मोबाइल से रहते हैं, परिवार से नहीं।
2: बिल्कुल सही कहा। पहले लोग खाना खाते समय एक दूसरे से बात करते थे लेकिन आजकल तो सब मोबाइल में ही देखते हुए बैठे रहते।
3: रीना जी और कुमकुम जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि बच्चों से लेकर बड़े तक सब धीरे धीरे मोबाइल के इतने आदि हो गए कि घर की हंसी और बातचीत कम होती जा रही है।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइज। बिल्कुल, तो दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, दिल थाम के बैठिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं वेलकम बैक एक बार फिर से। दोस्तों जरा सोचिए, एक परिवार हॉल में बैठा है, पापा मोबाइल में रील्स देख रहे हैं और मम्मी व्हाट्सएप चला रही है, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। क्या यही परिवार है?
1: पहले लोग दिन भर बातें शेयर करते थे, आज क्या हुआ, कैसा दिन रहा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अब रिप्लाई सिर्फ इतना होता है, ठीक है, क्योंकि ध्यान मोबाइल में होता है।
0: बिल्कुल सही कहा।
2: बिल्कुल सही रीना जी। और यही धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां बढ़ा देता है और घर के लोग साथ रहकर भी अकेले महसूस करने लगते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने कुमकुम जी। मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल रिश्तों को कमजोर कर देता है, बस ये है।
0: सही कहा शैली जी आपने, टेक्नोलॉजी जरूरी है लेकिन फैमिली टाइम उससे भी ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं सच बताऊं श्रोताओं, ऐसा मेरे साथ या शैली जी के या रीना कुमकुम के साथ नहीं, हर घर की कहानी हो गया है शैली जी। और मुझे लगता है कि सच बताऊं तो मोबाइल के हम इतने आदि हो गए हैं कि आजकल हम वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। शैली जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगी?
3: और कई बार पेरेंट्स खुद मोबाइल में इतने डूबे और बिजी होते हैं कि बच्चों को कैसे वो सिखाएंगे कि उन्हें क्या करना है, जब वो खुद ही इतना बिजी है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और रीना तुम्हें क्या लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हम सच में अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी होगी, जैसे खाना खाते समय मोबाइल दूर रखना, फैमिली टाइम फिक्स करना, बच्चों से खुलकर बातें करना, सुबह और रात कुछ समय बिना फोन के बिताना।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी एक्सपेंसिव मोबाइल फोन की नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के समय और प्यार की होती है।
3: बिल्कुल सही कहा। और जब परिवार में बातचीत बढ़ती है तभी प्यार बढ़ता है, समझ बढ़ती है और सच में सोच बदलती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है मोबाइल की दुनिया में रिश्ते में जैसे मानो कहीं खो से जा रहे हैं, पास बैठकर भी लोग दूर हो गए हैं। मतलब एक टाइम था जब लोग एक दूसरे से बात करना पसंद करते थे, एक समय था जब लोगों को एक दूसरे की चिट्ठियों का इंतजार होता था, वहीं आज एक सेकंड के अंदर व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करते हैं और थोड़ी देर के बाद वो ऐसा लगता है जैसे हमारे पास सब कुछ आ गया है। लेकिन उसका जो मजा था ना वो एक अलग ही था। अगर मैं शैली जी सबसे हटके बात करूं आप लोगों से गाइज, तो अभी जो ये व्हाट्सएप का ट्रेंड चल गया और उससे पहले जो चिट्ठियों का ट्रेंड था उसमें क्या था शैली जी, कितना मजा आता था उसमें?
3: उसमें बहुत मजा आता था, उसमें हम वेट करते थे।
0: करेक्ट। और
3: एक
0: हम भेजने के लिए भी हमें बहुत प्रोसेसिंग फॉलो करनी पड़ती थी।
3: अब तो क्या है कि मतलब एक बेचैनी रहती थी, वो हमने आज मम्मी को लेटर भेजा है या पापा हमारे बाहर है उन्हें लेटर भेजा है, तो रिप्लाई क्या आएगा, कब रिप्लाई आएगा। और जो वो रिप्लाई पर तो उन्हें सजो के रखते थे। आज भी लोग पोस्ट कार्ड को सजो के रखे हुए हैं, लेटर बॉक्स जो आज भी हम देखते तो हमें खुशी से महसूस होती है।
0: तो मुझे लगता है कि देखिए सोच बदलने की जरूरत तो यहाँ पर है कि लेटर का ट्रेंड भले ही खत्म हो गया है, व्हाट्सएप का ट्रेंड आ गया है। आई नो व्हाट्सएप अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी हमारे और आपके फायदे के लिए बनी है, अच्छी बात है, हम लोग कनेक्टेड हैं। बट कहीं ना कहीं सोच ये बदलना है कि हम जब परिवार के साथ होते हैं, स्पेसिफिक टाइम बिता रहे होते हैं, परिवार को जो टाइम दे रहे होते हैं, उसमें एक दूसरे से बात करना कितना जरूरी है। शैली जी आपको क्या लगता है?
3: परिवार में एक दूसरे से बात करना, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन परेशान है।
0: करेक्ट।
3: किसके मन में क्या बात, आजकल लोग आप सोचो कि मतलब काउंसलिंग करा रहे हैं लोग। इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि आपके पास घर में भी एक व्यक्ति नहीं है जिससे आप अपनी बात कह पाए। पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है,
0: क्योंकि सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी
3: है। तो बिजी होने के बाद भी हमारे पेरेंट्स भी बिजी होते थे, मम्मी घर के कामों में, पापा बाहर, लेकिन फिर भी हम लोग शाम का खाना बैठ के खा रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो उसे पूछा भी क्या प्रॉब्लम है, बेटा आज क्या हुआ ऐसा जो आप खाना नहीं खा रहे हो, या आज आप उदास क्यों हैं?
0: सही कहा आपने।
4: वो कहते हैं ना दोस्तों कि असली कनेक्शन वाईफाई से नहीं दिल से होता है। जब लास्ट में शाम के टाइम हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाते थे तो चार बातें हुआ करती थी, लोगों को समझा जाता था, एक दूसरे को समझा जाता था, अपने ड्रीम्स के बारे में बात की जाती थी। अब लोग अपने मोबाइल फोन में ही इतना घुस गए हैं कि सारी चीजें उसी में देखते हैं।
3: और मुझे लगता है कि ये जो हम लोग में होता था ना कि इंतजार, पहले इंतजार करते थे हम रिप्लाई का, आज वो इंतजार खत्म हो गया है तो पेशेंस लेवल भी कम हो गया है
1: जी। और आज बात ना ईगो पे आ जाती है कि अगर आपको मैसेज कर रहा है तो आप क्या मतलब करते हैं इंसान कि यार अभी नहीं रिप्लाई देंगे, हम थोड़ी देर बाद रिप्लाई देंगे इसको।
3: बिल्कुल, पहले कम बातें होती थी, रिश्ते ज्यादा लंबे टिकते थे।
1: बिल्कुल,
3: अब बातें ज्यादा होती हैं,
1: रिश्ते कम टिकते हैं।
0: क्या बात है। चलिए दोस्तों ये बातें चलती रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौट कर आएंगे।
5: हेलो 9821026212।
0: उसके बाद लौट कर आएंगे।
5: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 Max Touch।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का एफएम मुरादाबाद पे प्रोग्राम है सोच बदलो, और सोच बदलो का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोबाइल फोन जो है रिश्तों को कहीं ना कहीं कमजोर करता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। मम्मी घर में होती है, पापा घर में होते हैं, हम सब घर में होते हैं, लेकिन उसके बाद भी नाश्ते के लिए एक टाइम था जब मम्मियां 100 गालियां देकर उठाती थी शैली जी, और आज का टाइम है कि मम्मी सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कर देती है नाश्ता रेडी है टेबल पे, ऊपर से नीचे आ जाओ, है ना। तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं हमें हमारे घर के पेरेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।
1: हाँ बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नाश्ता रेडी है, पहले सब लोग जब टेबल पे आ जाते थे तभी नाश्ता लगता था, अब सबके कमरों में ही पहुंचा देगा। और रूम पे पहले बेटा हम तुम्हारा रूम में मतलब हाँ, मैं
0: आप रेस्ट करो,
1: आप रेस्ट करो, मैं वहीं पहुंचा रही हूँ, क्यों वहीं भाई, सब साथ में बैठ के नाश्ता।
2: और पहले टाइम का भी फिक्स होता था, अब भूख नहीं है, अभी नहीं खा रही, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी, अब तो ये हो गया है।
1: अब नाश्ता हो रहा है 11 बजे 2 बजे, आप खाना कैसे खा लोगे,
2: इनफैक्ट हम उठ ही लेट रहे हैं,
0: मतलब दिनचर्या भी कहने के मोबाइल की वजह से, क्योंकि लोग
1: तो लेट लाइट आ गए। पहले की लेडीज घर में खाना बनाने के बाद कढ़ाई सिलाई बुनाई सारे काम कर लेती
0: हैं,
1: अब लेडीज को खाना बनाने के बाद टाइम ही नहीं है,
2: टाइम ही नहीं है बिल्कुल,
1: क्योंकि वो सुबह का नाश्ता लेट, फिर दोपहर का खाना लेट, और चीजें लेट। पहले लोग ऑफिस चले गए, हम लोग की मम्मियों को स्वेटर बुनते देखा है, मैंने तो आज तक एक स्वेटर नहीं बुन पाया क्योंकि टाइम ही नहीं है।
2: टाइम तो तब हो ना कि हम समय पर सोए समय पर उठे, अब उठते ही इतने लेट हैं, पहले टाइम के पंचुअल हुआ करते थे, अब हम टाइम को समझते नहीं है,
0: टाइम को इसलिए नहीं समझते,
1: पंचुअल भी अगर ना बोलो तो हम टाइम की वैल्यू समझते
0: थे। एग्जैक्टली,
3: टाइम की वैल्यू उतनी नहीं की जाती जैसे पहले की जाती थी,
1: और जो टाइम की वैल्यू आज भी करते ना वो सक्सेस है।
0: ये तो बात बिल्कुल सही की, ये तो मतलब सोच बदलने की जरूरत है, यहाँ पर नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो किससे नहीं, जरूरत है सही चीज को मेंटेन करने की, है ना। अगर आप सही तरीके से चीजों को मैनेज करोगे तो मुझे लगता है बेहतर चीजें हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, हर चीज फोन में ही मत ढूंढो,
2: बिल्कुल
0: अगर आप घर पे हो, परिवार के साथ हो, रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो तो उनसे बात करो।
1: आप सोचो आजकल चैट जीपीटी जो आया है वो इतना पॉपुलर क्यों है,
0: लोग उससे बात कर रहे हैं,
1: क्योंकि लोगों के पास व्यूज ही नहीं रह गए हैं। आप लोगों को पहले, अगर कोई अगर नॉन प्रोफेशन बंदा है जिन्होंने कभी माइक हाथ में नहीं थामाया, अगर आप किसी को दे दोगे ना वो बोल नहीं पाएगा, उसके पास शब्द ही नहीं होंगे, डिक्शनरी कम हो गई है क्योंकि आपने इतनी बातचीत कम हो, आप एवरी थिंग के लिए आप डिपेंड हो गए हो सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, इस पे और उस पे, तो फिर क्या ही होगा, आपके अपने पर्सनल व्यूज ही नहीं रह गए, आप अपने माइंड का यूज ही नहीं कर रहे हो, और जहाँ यूज कर रहे हो आप कहाँ कर रहे हो ये तो पता ही है।
0: ये बिल्कुल सही कहा आपने, तो मुझे लगता है कि देखिए दिक्कतें टेक्नोलॉजी से नहीं है, दिक्कतें मोबाइल चलाने से नहीं है, दिक्कतें सिर्फ बात करने से है, क्योंकि हमें लगता है कि हर चीज हमारे लिए कन्वीनियंट होनी चाहिए, इजीली होनी चाहिए, हम इस इजी के चक्कर में मोबाइलों में इतना घुस गए हैं। आजकल आप देखो ना, घर बैठे बैठे हम चाहते हैं हर चीज आ जाए, आजकल दूध लेने का एक बहाना होता था कि हम सुबह दूध लेने जाएंगे, आजकल भैया दूध लेने भी नहीं जाते क्यों, सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है।
1: पहले चलो ठीक है, कुछ चीजों के लिए तो निकलना ही पड़ता था, अब तो बिल्कुल नहीं निकलना है, कि हमने अपने आप को इतना डिपेंड कर लिया है, हम लोग पैदल स्कूल जाते थे,
0: सोचो
1: आजकल बच्चे को हम बैग लेकर के बस तक भी पहुंचाने जाएंगे,
2: छोड़ने जाते हैं
1: और उनका बैग उठा के बस से भी घर पे लाएंगे।
0: सही कहा आपने, तो दोस्तों मतलब कुल मिला के ये है कि बात आलस की तो नहीं कर रहे हैं, आज हम बात हम कर रहे हैं कि हमारे जो परिवार हमारे कनेक्शन कम हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ा कारण है, उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन इसलिए क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मोबाइल पे ही दिखाते हैं, हम परिवार के साथ होते हुए भी ऐसा महसूस करते हैं कि हम फैमिली के साथ नहीं है। अगर सोचो हम चार लोग यहाँ पे अगर अपने अपने मोबाइल में लग जाए तो कौन एक दूसरे से बात करेगा,
2: कोई भी
0: जी सोचने की बात है, और ना हम एक दूसरे को जान पाएंगे ना समझ पाएंगे।
1: आजकल जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हो गए उनका मजा किरकिरा क्यों हो गया है, क्योंकि वहां जाके लोग वहां की खूबसूरती नहीं देखते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस पे जाइए वहां की कहानी समझने की कोशिश नहीं कर रहे, ये क्यों, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि या कौन सा व्यू हम देख ले, यहाँ पे हमारा फोटो सबसे बेस्ट,
2: फोटो वीडियो
0: कैप्चर करो उसको ही,
1: खाने के टेबल पे खाना रखा है
0: करें।
1: लेकिन आपको उसको टेस्ट नहीं पता है कि आपने आज ठीक था, बाद में अगर एक डिश चार डिश में से एक डिश आपने ऐसी टेस्ट के लिए वो खाना अच्छा नहीं था, बाकी की चार आपने स्वाद ले ही नहीं पाए,
2: क्यों हमारा ध्यान तो फोन में होता है, पहले हम फोटो खींचते हैं स्नैप भेजते हैं और फिर वही टाइम हो जाता है चलो चलो ठीक है।
1: टाइम में एक ऐसे आता था हिंदी में, ज्ञान के अभिशाप और चमत्कार
3: जी,
1: तो मतलब वो हर मतलब जब भी देखो वो एक सबसे रखा ही होता था क्वेश्चन पेपर में, वो तो उस टाइम पे मुझे वो इतना नहीं समझ आता था, मगर आज मुझे समझ में आता है। ऐसा नहीं है, मोबाइल अच्छी चीज है, हम लोगों को बहुत अच्छी चीजें मिली हुई है कि हम लोगों को बहुत कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन हम अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं ये मैटर करता है,
2: बिल्कुल
1: किस चीज पे दे रहे हैं, पॉजिटिव चीज पे दे रहे हैं या निगेटिव चीज पे दे रहे हैं। पॉजिटिव भी है इसमें, निगेटिव भी है।
0: सही कहा आपने। तो दोस्तों आप सुनते रहिए ऐसे ही सोच बदलो प्रोग्राम, और अभी हम लौट कर आते हैं एक छोटे से गाने के बाद।

0: इस गाने के बाद वेलकम बैक है शहर जाते जाते। रीना कुमकुम, आप लोग क्या कहना चाहोगे हमारे युवा पीढ़ी से, जो लोग घर में बैठ के बातें कम मोबाइल ज्यादा चलाते हैं उन लोगों?
1: मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए हर घर में जितने भी मेंबर्स है ना, हर घर में सभी के पास फोन है। तो पहली बात पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपके पास फोन है तो जो बच्चे हैं जो 12th तक अभी पढ़ाई कर रहे उनको फोन ना दे। अगर आप उनको फोन नहीं देंगे तो वो देखिए और भी आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। हमें तो ये पता है ना कि हमने बच्चों को फोन दे दिया, वो पढ़ ही रहा होगा, लेकिन आप देखने नहीं जा रहे कि उस कमरे में वो पढ़ रहा है या वीडियो देख रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर आप फोन दे भी रहे तो उस चीज का ध्यान रखें कि बच्चा कब क्या किस टाइम क्या कर रहा है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, फोन नहीं देना चाहिए। लेकिन कई टाइम ना हमें टीचर्स ऐसे प्रोजेक्ट दे देते हैं कि बच्चों को काम होता है फोन से, इसलिए पेरेंट्स उनकी सुविधा के लिए देते हैं, पर वो ना फोन
1: यूटिलाइज हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए,
2: सुविधा के लिए दी जाते हैं क्योंकि उन सुविधाओं से हम आगे बढ़ सके, अपने अपने करियर के लिए सोच सके, अपने फ्यूचर के बारे में आगे देख सकें कि हमारे पढ़ाई में और चीजों में क्या क्या कर सकते हैं, पर वो डिपेंड इतने हो जाते हैं उस फोन पे, उसके आदि बन जाते हैं एक तरह से।
3: मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि जब भी वो बच्चों के सामने मोबाइल देखें या खुद भी देखें तो मोटिवेशनल चीजें ज्यादा देखें, जिससे उन्हें कुछ लगे कि हाँ मम्मा या पापा हमें ये चीजें देख दिए तो उनके दिमाग पे भी वही छाप पड़ जाती है।
1: बिल्कुल,
3: तो वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे लगे कि हाँ ये चीज ठीक है।
4: और बच्चों को भी टाइम दीजिए, आप खुद नहीं फोन में रहेंगे बच्चे। अब आजकल मैम ये होता है कि बच्चे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आप काम में बिजी होते या फिर फोन चला रहे हो या फिर मासी का फोन आ गया तो भैया तो समझो बेटा।
3: तो सबसे ज्यादा यंगस्टर को काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है इस समय, सबसे ज्यादा स्ट्रेस लोग काउंसलिंग ले रहे हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, कि मुझे उनके पास बात करने के लिए लोग नहीं है। साइड चल गई है, आइए बात करिए।
1: बिल्कुल, अब इंसान वहाँ टाइम दे रहा है लेकिन अपने फैमिली को कम।
2: मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना ड्रामास देखते हैं या कोई भी ड्रामा आप देखते हो कंट्री के बाहर का, उसमें ना एक टाइम दिया जाता है कि नो मोबाइल टाइम, फैमिली का टाइम जो रहता है उस मोबाइल को ना एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी होना चाहिए, आप सबको अपनी फैमिली में एक टाइम ऐसा बनाना चाहिए, यहाँ सब फैमिली एक साथ रहेगी, मोबाइल को एक बॉक्स में रख दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए।
1: चलिए श्रोताओं, अब हम लेते हैं जाने के विदा।
0: बिल्कुल इजाजत लेंगे, लेकिन सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सोच जब बदलेगी जब हम उसकी शुरुआत करेंगे, उसकी शुरुआत मुझे और आपको ही करनी है श्रोताओं। तो मोबाइल एक अच्छी चीज है हमारी फैसिलिटी के लिए, इस गवर्नमेंट ने बनाई है, टेक्नोलॉजी का अच्छा फायदा आपको जरूर मिलेगा और मिल भी रहा होगा आई एम श्योर। बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारी चीजें कर भी रहे हैं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि अपने रिश्तों को भूल जाए, अपने परिवार को भूल जाए, परिवार को क्वालिटी टाइम दीजिए। और फैमिली से भी कहना चाहता हूँ, स्पेशली अगर आप मुझे सुन रही हैं, वर्किंग लेडी हैं, आप वुमेन वर्किंग वुमेन हैं, तो डेफिनेटली अच्छी बात है, आप जो भी कर रही करती रहिए, ऑल द वे बेस्ट। बट उसके साथ ही साथ अगर आप घर जा रही हैं तो उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम अपने बच्चे के साथ जरूर बिताएं, उससे पूछें आज उसने स्कूल में क्या किया, उसके स्कूल में कैसा रहा उसका टाइम, उसने किसके साथ टाइम बिताया। अगर आप फादर हैं तो आप भी अपने बच्चों के साथ स्पेशल टाइम डेफिनेटली सेलिब्रेट करें और एक वीकेंड में एक ऐसा दिन जरूर निकालें जिसमें नो मोबाइल, एटलीस्ट एक घंटा ही सही, बट वो आप जरूर करें।

0: कहीं बाहर जाएं, एक्टिविटीज करें, फन करें, बट मोबाइल को थोड़ा सा तवज्जो कम दें। मतलब जब आपको लगता है स्पेशली परिवार के लिए टाइम है तो ये चीज आप कीजिए, सोच अपने आप बदलेगी, बाकी कोशिशें आपको करनी पड़ेंगी। हम भी आपके लिए कोशिश करते रहते हैं प्रोग्राम के जरिए कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाएं और आपको जगाएं। बाकी के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनते रहिए। है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। फिर से बोलेंगे रेडियो
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बाय।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो और मैं हूँ आपके साथ आपके अपने दोस्त आरजे खुशी। और मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ में
5: आरजे रीना भी है।
4: हाँ जी, हम हाजिर हैं आपका फेवरेट शो लेकर महिला मंच, जहाँ पर बात होती है महिलाओं के बारे में, घर परिवार के बारे में, फैमिलीज के बारे में।
5: करेक्ट।
4: तो अच्छा, अभी दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ, अब हमने घर परिवार की बात छेड़ी ही है तो बताते हैं कि आजकल न्यू जनरेशन है, रिलेशन बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, फासले घरों में नहीं अब दिल में बनते जा रहे हैं।
5: बिल्कुल सही कहा तुमने
4: रीना जी। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम के समय जब मैं घर के आंगन में बैठकर अपने बीते पलों को याद करती हूँ ना, तो मन मतलब खुश हो जाता है, उन पुरानी यादों में लौट जाता है जब रिश्तों में एक अलग ही मिठास हुआ करती थी। तब घर छोटे थे लेकिन दिल बहुत बड़े हुआ करते थे। तब उस समय भी ना सुविधाएं बहुत कम थी लेकिन अपनों के लिए समय बहुत था।
5: ये सही कहा तुमने, उस टाइम चाहे सुविधाएं कम थी लेकिन अपनों के लिए समय बहुत ज्यादा था। हर इंसान एक दूसरे की मदद करता था उस समय, लेकिन अब फोन आ गया है, हर कोई फोन में बिजी रहता है, भले ही कमरे बड़े हो गए हैं लेकिन
4: दिलों में जगह कम हो गई है।
5: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने।
4: और पता है क्या होता है ना रीना, जैसे हम लोग पहले के टाइम में, मैं बताती हूँ तुम्हें, जब कोई फोन नहीं था, कोई ऐसा इंटरनेट का सिस्टम नहीं था उस टाइम पे, था लेकिन बहुत कम थे।
5: मतलब वही टेलीफोन वाला जो कनेक्ट होते थे।
4: और एक वो वाला टेलीफोन की याद है आपको, जिसमें एक रुपए डाल के बात किया करते
5: थे। एक रुपए डाल के बात किया करते, मिनट के हिसाब से होता था, जैसे मिनट खत्म।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो। और आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है सीनियर सिटीजन कानूनी अधिकारों के बारे में, यानी कि हमारे बुजुर्ग समाज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर है, लेकिन कई बार उन्हें अपने ही अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी हमारे कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है।
1: थैंक यू रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: देखिए मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है। और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली वहीं डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सबसे बड़ी चीज है ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
0: सही।
1: तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल सर। तो चलिए इस सिलसिले को हम शुरू करते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सीनियर सिटीजन के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मुख्य कानून कौन सा है?
1: देखिए कानून के बारे में जानने से पहले मैं पहले अपने जो हमारे समाज में जो इस समय बुजुर्गों की स्थिति है उनके बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा। अधिकतर देखा गया जो हमारे समाज में सीनियर सिटीजन हैं उनको मोस्टली एक हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है आजकल के यूथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, उनको बिल्कुल किसी भी चीज की भरण पोषण की आवश्यकता है या कोई हेल्प चाहिए उनको इग्नोर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने हमें बचपन में पाला पोसा, हमें हमारे पालन पोषण किया, भरण पोषण किया, हमारा भी दायित्व है कि अगर वो इस एज में है तो
0: उनकी सेवा करें,
1: सेवा करें हम भी। और भारत में सीनियर सिटीजन्स के अगर हम अधिकारों के लिए बात करते हैं, सुरक्षा के लिए उनकी बात करते हैं, तो मुख्य रूप से एक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है। ये कानून के तहत बच्चों या परिवार के सदस्यों के अपने माता पिता की देखभाल के लिए भरण पोषण का अधिकार है। अगर कोई जो भरण पोषण अपने माता पिता का नहीं कर रहा है, जैसे अधिकतर घर में देखते भी है कि भाई बच्चों की शादी हो जाती है तो वो अपना
0: अलग रहने की कोशिश करते हैं
1: और माता पिता को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, और उस समय जो कठिनाइयां झेलनी पड़ती है सीनियर सिटीजन्स को, तो उसके लिए भी उनके पास राइट्स है, वो कोर्ट में विवाद दायर करके उनके मेंटेनेंस इत्यादि मांग कर सकते हैं भरण पोषण की।
0: बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन है हमारा सर, अगर बच्चों के द्वारा माता पिता की देखभाल नहीं की जाती तो बुजुर्ग क्या कर सकते हैं?
1: देखिए ऐसी स्थिति में आप किसी भी लीगल लॉयर की एडवोकेट की हेल्प लें, उसे पूरी बात बताएं, और ऐसी स्थिति में आपको जो है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में आप शिकायत कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल बच्चों को आदेश दे सकता है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें। लोकल आप एसडीएम कोर्ट में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, डीएम के यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो है कानूनी विधि हैं जिसके थ्रू आप जो है अपने बच्चों से मदद मांग सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रत्येक बच्चे को खुद ही आगे आके अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, दायित्व का निर्वहन करना चाहिए।
0: जिस तरीके से हमें माँ बाप जन्म देते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, बड़े करते हैं, वही हमारा दायित्व है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए।
1: करनी चाहिए, क्योंकि हम भी कभी उसी स्थिति में थे कि हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं था।
0: बिल्कुल सर। और इनफैक्ट तो हम भी उस एज में आने वाले ही एक टाइम।
1: बिल्कुल, जैसा आप बीज
0: वैसे ही फल मिलेगा।
1: फल मिलेगा आपको।
0: बिल्कुल सर। तो सर चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या सीनियर सिटीजन अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो है लोकल जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे आवेदन करके आप जो है मांग कर सकते हैं। यदि कोई बुजुर्ग अपना खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहा है तो वह अपने बच्चों से कानूनी वारिसों से भरण पोषण की मांग कर सकता है।
0: श्रोताओं आपको जो ये हमारी बात है आई होप कि बहुत अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपके भी मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896। यानी कि अगर किसी बुजुर्ग को उनके ही घर में जबरदस्ती निकाल दिया जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, ऐसी स्थिति में अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार या कोई जबरदस्ती घर से निकालने की कोशिश करे, तो सबसे पहले तो आप 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाएं। पुलिस आपकी तुरंत हेल्प करेगी। सीनियर सिटीजन एक्ट में भी ये आपको अधिकार दिया गया है। पुलिस आपकी तुरंत सहायता करती है। नजदीकी थाने या चौकी पे जाके अपनी पूरी बात बताएं। रिटन में अगर कंप्लेंट करने को आप पुलिस अधिकारी आपसे कहते हैं तो लिखित में अवगत कराएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तुरंत किसी लीगल सलाहकार से बात करके ट्रिब्यूनल में अगर आप केस डालना चाहते हैं तो आप केस भी डाल सकते हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी।
0: और बहुत से बुजुर्ग है सर, उनके पास फोन नहीं होते हैं, तो वो कैसे पहुंच सकते हैं?
1: देखिए, नजदीकी थाने में तो आपको पता होता है कि कहाँ पे है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आपका मित्र है या संबंधी है तो आप तुरंत उसकी मदद मांगी कैसे भी करके, लेकिन सूचना आपको पुलिस को देना जरूरी,
0: पहुंचाना जरूरी है
1: तुरंत।
0: चलिए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई कानूनी कदम उठा सकते हैं?
1: जी बिल्कुल उठा सकते हैं। जितने भी सीनियर सिटीजन बुजुर्ग अपनी संपत्ति को देते समय कुछ शर्तें रख सकते हैं। अगर उन शर्तों का पालन के वारिसान नहीं करते हैं तो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द भी कर सकते हैं कानूनी।
0: बिल्कुल।
1: तो लेकिन जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखित में होनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्रॉपर यही है कि लिखित में हो।
1: हाँ,
0: तभी
1: अगर आप कोई भी संपत्ति अपने वारिसों को देते हैं या दान करते हैं और दान करने के बाद वो आपकी सेवा नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, तो अक्सर मन में ये मलाल रहता है कि हमने संपत्ति क्यों दे दी।
0: बिल्कुल।
1: तो जो भी आपके मन की बात है, जो भी टर्म्स कंडीशन है, वो पहले ही लिखित में आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं।
0: इससे लिखित में होगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी सर?
1: आपका अधिकार बना रहता है। फिर भी अगर मान लीजिए आपको कोई दान में दी हुई चीज रद्द करनी है या किसी चीज को लेके आप उसमें कोई पॉइंट ऐसा है कि जो आपने उसमें क्लॉज में लिखा हुआ है और उसकी वो फुलफिल आपके वारिस नहीं करते, तो आप उस चीज को लेके भी आप जो भी आपने कोई भी उनको फेवर दिया तो उस पॉइंट पे आप उनको रद्द भी कर सकते हैं।
0: ओके सर, क्या सरकार सीनियर सिटीजन के लिए अलग से अदालत या ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करती है?
1: हाँ बिल्कुल, सीनियर सिटीजन को मुख्य रूप से प्रायोरिटी पे सुना जाता है। अगर हम कोई भी बात दायर करते हैं तो उनके लिए एक जो है कोर्ट का भी जो है अलग ही एक नजरिया रहता है। और मुख्य रूप से जो ये हमारी सरकार की नीति है या हमारी जुडिशरी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता प्रथम पायदान पे दी गई
0: दी जाती है। सीनियर सिटीजन को सरकारी योजनाओं में कोई विशेष सुविधाएं मिलती हैं?
1: सीनियर सिटीजन के लिए सरकारी सुविधाएं काफी दी गई हैं, जैसे आप सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए पेंशन है, उनकी स्वास्थ्य संबंधी है, यात्राओं में छूट दी गई है, उनके सामाजिक योजनाएं कई सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं ताकि वो अपना जीवन यापन सुरक्षित और सम्मानित ढंग से कर सके।
0: बहुत अच्छी बात है सर। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी बुजुर्ग के साथ आर्थिक धोखाधड़ी हो जाए तो क्या कर सकते हैं?
1: देखिए, बुजुर्गों को सबसे बड़ी चीज है कि जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है वो सॉफ्ट टारगेट समझता है, क्योंकि इस एज में एक तो बुजुर्ग ज्यादा जो है सोचने विचारने की शक्ति थोड़ा सा उनकी कम,
0: थोड़ी शक्ति उनकी कम हो जाती है,
1: कम हो जाती है, शरीर भी थोड़ा दुर्बल
0: हो जाता है, मतलब एनर्जी पावर थोड़ा लो हो जाता है।
1: क्रिमिनल व्यक्तित्व के लोग हैं वो सॉफ्ट टारगेट उनको लगता है कि वो बुजुर्ग को बनाए। अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आप तुरंत जो है पुलिस में लेके शिकायत दर्ज कराएं, कानूनी सहायता आप लीजिए। कानून बुजुर्ग को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए ही सख्त प्रावधान कानून के तहत बने हैं, और बुजुर्गों की जो शिकायत है वो बिल्कुल प्रथम पायदान पे जाके सुनी जाती है पुलिस अधिकारियों द्वारा, तो निश्चित तौर पे आपको तुरंत लीगल एक्शन लेना चाहिए।
0: क्या बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करना कानूनी अपराध है?
1: जी हाँ, बुजुर्गों के साथ कानून अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है कोई, तो ये कानूनन अपराध है। आमतौर की डेली दिनचर्या में हम देखते हैं कि अगर हम कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं या पड़ोस में ही होते हैं तो हम किसी भी बुजुर्ग को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, धमका देते हैं, तो ये भी क्राइम है अपने आप में।
0: अच्छा अच्छा, मतलब कोई धमका रहा है? हाँ, कुछ गलत
1: तो
0: बोल रहा है
1: आपका, आप किसी को भी आप ऐसे ही अगर आप बोलते हैं बुजुर्गों को, तो खास तौर पे अगर आपने कोई भी ऐसी अपशब्द बोल दी तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, और खास तौर पे जो है पुलिस के आला अधिकारियों को जुडिशरी की तरफ से भी साफ इंस्ट्रक्शन है कि बुजुर्गों का, बच्चे और बुजुर्गों दोनों के लिए अगर कोई भी क्राइम होता है तो तुरंत तत्काल लीगल एक्शन लिया जाए उस केस में।
0: बिल्कुल सर। और सर मुझे लगता है बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो, हमें किसी के बारे में बोलने का कोई राइट?
1: बिल्कुल, आप किसी को अपशब्द कैसे बोल सकते हैं? आप किसी को कानून कैसे आप हाथ में ले सकते हैं? तो आपको निश्चित तौर पे जो है सबका आदर सम्मान करना चाहिए, और जो है बुजुर्गों को तो खास तौर पे आपको जो है उनकी सेवा भाव रखना चाहिए मन के अंदर।
0: बिल्कुल श्रोताओं, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे बुजुर्ग जो होते हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। अगर आप सेवा करते हैं तो भगवान भी आपके साथ होते हैं। अगला क्वेश्चन है सर हमारा अंत में, यानी कि आप सीनियर सिटीजन और उनके परिवार को क्या संदेश एक देना चाहेंगे?
1: देखिए, मेरा सभी जितने भी आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 एमएसजेड के कम्युनिटी रेडियो के लिसनर्स हैं, मैं उनको यही संदेश दूंगा कि हम सभी को अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए।
2: पहले रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट एट एआईआर न्यूज हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही।
4: For BRICS particularly, higher economic activity.
5: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
4: and transparent trade and investment.
2: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स की विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
4: This year is a milestone.
5: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
2: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
6: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
4: Take to the world as a trusted partner.
2: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
7: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमापार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
8: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के पालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
2: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। अमरीकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गौफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाखस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आर्यना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज चार महीने के उच्चतम स्तर 108.77 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,000 में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
11: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
10: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
12: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
13: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
12: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
14: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। श्रोताओं, आपका फेवरेट शो लेकर हाजिर हूं महिला मंच, जहां पर हम बात करते हैं महिलाओं के संघर्ष की। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री मुमताज जी की। जहाँ दोस्तों, एक ऐसी कलाकार जिन्होंने छोटे छोटे किरदारों से शुरुआत की और अपनी मेहनत के दम पर हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में जगह बनाई। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के अनसुने किस्से, संघर्ष, सफलता और यादगार फिल्मों की कहानी। बचपन और संघर्ष।
15: 31 जुलाई 1947 को मुंबई में जन्मी मुमताज का बचपन आसान नहीं। उनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसके बाद परिवार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने शुरू किए। उस दौर में उन्हें अक्सर भीड़ वाले दृश्यों या छोटी गांव तक ही सीमित रखा जाता था। कई बार उन्हें यह कहकर भी ठुकरा दिया कि वह मुख्य अभिनेत्री बनने के काबिल नहीं है, लेकिन मुमताज ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर छोटे अवसर को पूरी मेहनत से निभाया।
14: दारा सिंह के साथ सफर। साथियों, जब बड़े बैनर उन्हें मौका नहीं दे रहे थे, तब अभिनेता और पहलवान दारा सिंह के साथ उन्होंने स्टंट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों ने उन्हें पहचान तो दिलाई, लेकिन उन्हें स्टंट फिल्मों की हीरोइन का टैग भी मिला। इसके बावजूद उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनकी प्रतिभा को सही मंच मिलेगा।
15: 1969 में फिल्म दो रास्ते ने उनकी किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। इसके बाद उन्हें लगातार सुपरहिट फिल्में दी। यादगार फिल्में दो रास्ते, खिलौना, सच्चा झूठा, तेरे मेरे सपने, बंधन,

0: अपना देश, आपकी कसम, रोटी, कहानी, उनकी जोड़ी राजेश खन्ना जी के साथ दर्शकों को बेहद पसंद आई।
1: मुमताज जी की खास बातें, हमेशा मुस्कुराती रहने वाली अभिनेत्री, शानदार डांस और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, सादगी और आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी पहचान रही। उन्होंने अपने समय के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया। निजी जीवन,
0: 1974 में मुमताज ने व्यवसायी मौर्य माधवनी से विवाह किया। बाद में फिल्मों से दूरी बना ली। परिवार को प्राथमिकता देने का उनका फैसला भी लोगों ने खूब सराहा।
1: प्रेरणा, दोस्तों अब बात करते हैं उनकी प्रेरणा की। मुमताज जी की कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास साथ हो तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। साथियों, मुमताज जी का बचपन आसान नहीं था। परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजरा, इसलिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग 11 वर्ष की उम्र में लाजवंती, जो 1958 में आई थी, और सोने की चिड़िया जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटे छोटे रोल मिलते थे और कई बार जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम करना पड़ा।
0: साल 1963 की फिल्म गहरा दाग से उन्हें मुख्य भूमिका मिलने लगी। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक में वह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा मांग वाली और कामयाब अभिनेत्री में शामिल हो गईं। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर लोगों को बहुत पसंद आई। दोनों ने दो रास्ते, अपना देश और रोटी जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में साथ की। फिल्म खिलौना 1971 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला।
1: क्या बात है परी, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा जिक्र किया है फ्रॉम द मूवी दो रास्ते, और इस मूवी में एक गाना है जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है, छुप गए सारे नजारे और क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई।
0: जी जी खुशी जी, आपने काजल लगाया और ये दिन में रात हो गई।
1: अरे यार, पता है आपको मुमताज जी ने जो ड्रेस पहना था येलो कलर का, कितना ब्यूटीफुल था ना यार।
0: बहुत सुंदर, वो ड्रेस बनाने की मैंने भी कोशिश करी थी पर वो मेरे से बन ही नहीं पाई और मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अब भाई हर कोई मुमताज जी जैसा खूबसूरत तो नहीं हो सकता।
1: एग्जैक्टली राइट। और क्या खूब लगते थे ना राजेश खन्ना जी और मुमताज जी,
0: उन दोनों की जोड़ी तो ब्लॉकबस्टर है पर्दे पे, और मेरे हिसाब से जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको भी ये जोड़ी बहुत पसंद आने वाली।
1: बिल्कुल पसंद करेगी हमारी जनरेशन भी, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड।
0: यस बिल्कुल।
1: तो चलिए दोस्तों, इस फिल्म का जिक्र हमने किया है और इस गाने की भी हमने अभी लाइनें आपको कुछ बोलकर सुनाई है, तो क्यों ना इस गाने को सुन लेते हैं। हमें पूरा यकीन है कि हमारी ऑडियंस को ये ट्रैक पसंद आएगा हमारी तरह। तो चलिए लौट कर आते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: श्रोताओं, इतना प्यारा गाना आपने सुना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि वापस आ जाऊं, लेकिन क्या करूं, आना पड़ा क्योंकि आप जो हमें इतना मिस करते हैं। तो फिर हम चले आए आपके पास, आप ही के अपने फेवरेट सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आज हम जिक्र कर मुमताज जी का, एंड आज हम जानने वाले हैं उनकी हॉबीज के बारे में भी, उनकी क्या हॉबीज रही है, तो ये हमें बताने वाली है परी। तो परी बताएगा मुमताज जी क्या उनकी हॉबीज है।
1: मुमताज जी को सबसे ज्यादा डांस करना पसंद था, किताबें पढ़ना पसंद था, और उनको अपने परिवार के संग समय बिताना पसंद था, और वो तरह तरह की नई डिशेज बनाती थी, अपने परिवार वालों को खिलाती थी, और उनको खूब शौक था किताबों पढ़ने का और फिल्में देखने का, वो फिल्में देखने की बहुत शौकीन थी। तो भाई अब हमने जब अभिनेत्री के बारे में जाना है कि वो उनकी फिल्मों के बारे में, उनके करियर के बारे में, तो उनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना भी हमें चाहिए। तो अब मैं खुशी मैम से पूछना चाहूंगी कि मैम आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, अब आप बताइए दर्शकों को कि आपकी हॉबीज क्या हैं।
0: अरे मेरी हॉबीज तो मुझे यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं ट्रैवल करती हूँ अक्सर। नेक्स्ट उसके अलावा मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है, और सिंगिंग के साथ साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ, अपनी ऑडियंस से बातें कर रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ गॉड का कि उन्होंने इतनी प्यारी आवाज दी है, अपने मम्मी पापा जी का। ये मेरी हॉबीज है। बाकी परी अभी आपने कुछ जिक्र किया था ना गानों का, जरा उनके गानों के बारे में भी बताइए, उनके सुपरहिट गानों के बारे में आपने बात जिक्र किया था, अभी आप मुझसे बता रही थी कुछ गानों का जिक्र कर रही थी, जरा हमारे श्रोताओं को भी बताइए यार कौन कौन से वो गाने हैं।
1: मुमताज जी के गाने हैं कोई सहरी बबू कोई लहरी बबू,
0: आई रे पग बांध गया घुंगरू मैं छम छम नचती फिरा,
1: गोरे रंग पे इतना
0: गोरे रंग पे ना इतना घुमाने कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा।
1: और ये वाला तो मेरा फेवरेट है,
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आपको भी खबर हो गई ना कि हम दोनों लड़कियों की आवाज अच्छी नहीं है। तो दोस्तों अभी और ऐसी ही हमारी बातें चटपटी बातों को आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी मिलते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप भी मचाइए, बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, जहाँ पर हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में। तो आज हम बात ही कर रहे हैं मुमताज जी के बारे में, और भी बातें हैं जो बहुत दिलचस्प बातें हैं अभी बाकी हैं, वो भी आकर हम करने वाले हैं, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। महिला मंच शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री मुमताज जी के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं मुमताज जी की फिटनेस और खूबसूरती का राज क्या है, हमारे श्रोताओं को भी तो पता होना चाहिए ना। दोस्तों, 70 के दशक की सबसे खूबसूरत और चुलबुली अभिनेत्री की बात होती है तो मुमताज जी का नाम सबसे पहले जहन में आता है। आज भी जब उनकी तस्वीर सामने आती है तो लोग यही कहते हैं, आखिर इतनी उम्र में भी ये इतनी फिट और ग्रेसफुल कैसे दिखती हैं? तो जानते हैं मुमताज जी की फिटनेस और खूबसूरती का असली राज। सबसे पहले बात करते हैं अनुशासन डिसिप्लिन की। मुमताज जी का मानना रहा है कि फिटनेस किसी एक दिन की मेहनत नहीं बल्कि रोज अच्छी आदतों का परिणाम है। वे हमेशा संतुलन भोजन पर जोर देती रही। ज्यादा तला भुना या बहुत अधिक मीठा खाने की बजाय वे घर का बना ताजा और हल्का भोजन पसंद करती थी। उनका मानना था कि शरीर को वही दीजिए जिसकी उसे जरूरत है, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं। उनकी दिनचर्या में रोजाना, उनका कहना था कि अगर आप रोज कुछ देर पैदल चलते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी शांत रहता है। मुमताज जी ने कई मौकों पर ये भी कहा है कि खुश रहना और तनाव कम लेना खूबसूरती का बड़ा राज है। चेहरे की असली चमक महंगे मेकअप से नहीं

0: मन की शांति और मुस्कान से आ जाती है।
1: खुशी मैम, आपने उनकी सेहत का जिक्र किया है, अब मुझे उनका एक पॉडकास्ट याद आया जिसमें उन्होंने ये बोला था कि वो शाम को 4 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती हैं और हल्का खाती हैं और समय पर खाना खाती हैं। और एक अच्छी बात और बताती हूँ, एक अंदर की बात और बताती हूँ, उन्होंने ये भी कहा है कि उनके सेहतमंद रहने के लिए, मतलब सेहतमंद का राज ये है कि वो अक्षय कुमार के बताए हुए नियमों पर चलती हैं, उसका पालन करती हैं। मतलब जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो एक दूसरे से इंस्पायर्ड होके अपना फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं।
0: तो देखिए, जब इतने खूबसूरत अभिनेता अभिनेत्री अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं तो दोस्तों हमें भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। हमें भी बाहर का जंक फूड अवॉइड करना चाहिए और अपने घर का बना हुआ फूड ही हमें लेना चाहिए।
1: खाना समय खाना चाहिए, जितनी भूख हो उतना खाएं, ज्यादा ना खाएं, और वॉक करें और अपना सेहत पे ध्यान दें।
0: सुबह सुबह मेडिटेशन करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि देखो दोस्तों ये जो बॉडी हमारी है ना, ये भी एक मशीन है। आप इसको जितना चलाओगे ये उतना स्वस्थ रहेगी, और आप जितना इसको आलसी बनाओगे ना तो ये उतनी ही बेकार हो जाएगी। और कहते भी है ना कि जो फिट है वो हिट है।
1: बिल्कुल सही बात। और आज अक्षय कुमार भी हिट है और मुमताज मैम भी फिट है।
0: अरे वाह, क्या बात है यार। चलो दोस्तों, मिलते हैं कुछ और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया ना दोस्तों, तो हमें अपने सुझाव भी जरूर साझा कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बताइएगा जरूर आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, सुनते रहिएगा एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
0: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: कोई मिल गया,
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। देखिए, खुशी आ गई है आपका अपना फेवरेट शो लेकर, हेलो फरमाइश, जहां पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। और समय की अगर बात करें तो वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:05 और बाहर का मौसम कभी धूप तो कभी बादल। हाँ, चलिए अभी बात करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से और करते हैं शो की शुरुआत। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार आदाब सर, बताइएगा अपना नाम।
1: मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद सुकुलपुरा बनारस से आपसे मुखातिब हो गया हूँ। मैम
0: जी, बताइएगा सर, कैसे हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया है मैम, फोन मिला रहे थे और आपसे रेडियो मुरादाबाद में फोन लग गया और आपसे बात हो रही है, बहुत ही खुशी मिल रही है मैम।
0: थैंक यू सो मच, हमें भी अच्छा लगा सर आपने कॉल किया है और आज हमारे शो की आप फर्स्ट कॉलर बने हैं। कब से ट्राई कर रहे थे, मतलब आज आपने डिसाइड किया था कि फर्स्ट कॉलर मैं ही बनने वाला हूँ शो का?
1: जी जी जी मैम, मैं सोचा कि आज टाइम मैं देख रहा था, मैं बोला कि जैसे ही खुशी मैम आएंगी मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरा पहला कॉल लग जाएगा तो बहुत अच्छी लगेगी। और जैसे ही मिला है मैम और दो कॉल रिंग गई है और आपने फोन रिसीव कर लिया, इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया मैम।
0: मोस्ट वेलकम। बताइएगा सर, कैसा मौसम है बनारस का?
1: मैम मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है, कपड़ा सूख जा रहा है, कपड़ा धुलाई हो गई है।
0: अच्छा,
1: दो दिन से धूप हो रही है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हफ्ते लगातार बारिश हुई, जब आप हमारी अगले हफ्ते आपसे बात हुई थी तो हम बोले थे ना मैम कि बहुत बारिश हो रही है।
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अभी दो दिन से धूप हो रही है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, धूप हो रही है।
0: चलिए अच्छी बात है सर, बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: आज मैं फिल्म है बेवफा सनम,
0: सनम बेवफा,
1: सनम बेवफा, और गाने का बोल है अरे दुपट्टे वाली दादी बोली वाली जानम रुक जाना तू सलमा या सुल्ताना नाम तो अपना बतनाना और जानम रुक जाना। कुछ गाना के बोल इस तरह है मैम, आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन गा दिए।
0: कोई बात नहीं सर, जो तमन्ना होती है ना वो पूरी करनी चाहिए। और अच्छा अभी गुनगुनाया है आपने, क्योंकि कोई भी कार्य जब हम दिल से करते हैं ना तो वो अच्छा ही होता है।
1: जी मैम, और इस गाने में मैम फर्स्ट पे आप रहेंगी डेडिकेट, और हमारी रीना जी मैम रहेंगी और आनंद भैया रहेंगे।
0: हाँ।
1: और आरजे हैं रेडियो मुरादाबाद से वो रहेंगे।
0: ओके।
1: और हमारे दोस्त हैं सतीश शर्मा जी और नेत्रपाल सिंह जी, सुनील गौतम जी, प्रिंस पासवान जी, सुनील भाई बांका बिहार से, मुक्तिनाथ जी नेपाल से, और गौरव सिंह ठाकुर जी, और तमाम जो रेडियो मुरादाबाद सुनने वाले श्रोता है।
0: हाँ जी।
1: दीपाना दीपांश दीकी जी है मुरादाबाद से और विजय कक्कर जी, वो भी साथ रहेंगे।
0: ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गाना आपको, आपकी पसंद का, आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक और करेंगे आपसे भी बातचीत। करने के लिए आपको हमें कॉल लगाना होगा, तो जल्दी से कॉल लगाइएगा आप। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ, आपकी खुशी।

0: देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, आपको कॉल लगाते रहना है कंटिन्यू। जब आप कॉल लगाएंगे तभी आपका इजीली कॉल लग पाएगा। और नंबर मैं आपको बता देती हूँ, वंस अगेन 9837896896। और अभी सुना आपने ये ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सनम बेवफा। और इस खूबसूरत गीत को गाया था विपिन सचदेवा जी ने। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से और जान लेते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार।
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: वे गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम तो सेफी।
0: जी मैं तो ठीक हूँ सर, आप बताइएगा आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं मैम
0: जी,
1: आपका शो सुनकर तो और भी अच्छे हो जाते हैं।
0: थैंक यू। आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं मैम कांट रोड मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ।
0: आपके मैसेज भी आते हैं ना, राइट?
1: जी मैम।
0: जी बताइएगा।
1: एक महीने में एक बार तो कॉल कर लेता हूँ मैम।
0: हाँ, अच्छी बात है। और आप सभी को मौका भी देते हैं।
1: जी मैम, मैं आपकी बात को सहमत रहता हूँ ना। आप बोलते हो ना कि किसी और को भी मौका मिलना चाहिए।
0: एग्जैक्टली।
1: पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो कॉल लगाते होंगे, नहीं लग पाती होगी।
0: हाँ जी,
1: तो उन्हें भी मौका मिल जाता है।
0: बिल्कुल, थैंक यू। आप हमारी बातों को फॉलो करते हैं क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है, देखिए जैसे हम खुश होते हैं हमारा कॉल लगता है ना तमाम श्रोताओं को, तो एंड नए नए जो न्यू लिसनर्स हैं उनको भी लगता है कि काश मेरा भी कॉल लग जाए। तो मुझे लगता है कि अपनी खुशी के साथ
1: मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि तब हम जब छोटे थे रेडियो सुनते थे।
0: हाँ।
1: जब ये हेलो फरमाइश आती थी आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र की।
0: हाँ जी।
1: तो उस टाइम पे जब हम देखते थे वहाँ पे बात करते थे ऐसे, तो हम सोचते थे पता नहीं है आपस में तो बात नहीं करते होंगे।
0: अच्छा।
1: ऐसे फोन करता हुआ किसको।
0: ओके।
1: जब हमारी फर्स्ट टाइम कॉल लगी थी ना, तो मोरे को बड़ी खुशी हुई थी। बोला यार ये चीज बहुत अच्छी है।
0: हाँ।
1: कि हम भी बात करके अपनी फरमाइश सुनते हैं।
0: या, और
1: इसी तरह से दीदी
0: मैं कहना चाह रही थी सर, जब आपने फर्स्ट टाइम वहां पर कॉल किया तो आपने अपने सब फ्रेंड्स को फैमिली को बताया होगा कि आज मेरा कॉल वहां पर लगा है, कैसा था वो फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका?
1: मैं पहली बार मेरी कॉल जो एफएम मुरादाबाद में लगी है।
0: अच्छा जी, ओके।
1: तभी तो मुझे बहुत खुशी है। और उस दिन से मैं सुनता तो बहुत पहले से हूँ।
0: हाँ हाँ।
1: उस टाइम से तो मैं लगातार एफएम मेरा 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो शाम को 7 रीना जी का शो, आपका शो, आनंद जी का, तीनों उसको चलते रहते हैं। और आपके जो दोपहर में चलते हैं ना, वो
0: अरे शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं, आपका कॉल लगा है।
1: मेरा एक सॉन्ग है मैम, कुछ बीते पुराने पल याद आ गए थे तो सॉन्ग भी मुझे याद आया। प्रेम रोग मूवी का सॉन्ग है मैम, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों मैं तेरा इंतजार करता हूँ, ऋषि कपूर जी का।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा गाना है। कुछ कहना चाहते हैं और मतलब अपने दोस्तों के नाम वगैरह लेना चाहते हैं आप, कोई फ्रेंड्स वगैरह?
1: मैं तो चाहता हूँ सभी के लिए सुने, दोस्तों का नाम लेके मैं 2 दोस्तों का नाम लूंगा, 4 दोस्त नाराज होंगे।
0: ये तो मैं
1: के लिए चाहता हूँ, ऑल मेंबर्स, ऑल लिसनर, जितने भी लोग हैं, जितने भी दोस्त हैं, सभी के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है, वेरी स्मार्ट।
1: और एक बात मैम आपकी वाली जो मुझे भी बहुत अच्छी है, ये जो आजकल जो ड्राइविंग करते हैं, बस ये लोगों को जो है ना अच्छा रहे कि ये हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करते रहें।
0: हाँ जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल मैसेज देने के लिए। और एंजॉय कीजिएगा ये ट्रैक, मैं प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए।
1: ओके मैम, थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए रिफर्न सुनते हैं सर की पसंद का ये अमेजिंग सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी प्रेम रोग से। आप भी कॉल लगाइए और आपका भी फेवरेट गाना प्ले हो सकता है यहाँ पर राइट नाउ। तो जल्दी कॉल कीजिए बिना किसी देरी के।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश। और अभी आपने सुनाई प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी प्रेम रूप से।

0: और हमारे साथ हमारी कॉलर भी जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर,
1: हम मेराज अंसारी बोल रहे हैं, करोला मरतबा से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: सब बढ़िया है, अल्लाह का करम है। आप बताइए, खुशी मैम आपके कैसे हैं?
0: हाँ जी, सभी बहुत ही अच्छे हैं सर। आप बताइएगा, आज आपने कॉल किया है काफी समय की बात।
1: अब अपने फैमिली के साथ में, परिवार के साथ में आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। हेलो फरमाइश।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आप परिवार के साथ सुन रहे हैं। बताइएगा आज क्या सुनेंगे आप?
1: जिनका नाम है जमाई राजा
0: जी।
1: बाने के बोल रहे, प्यार हुआ है मुझे और तुझे। और हमारे साथ में फरजाना है हमारे यहाँ
0: जी,
1: कमाला है।
0: ओके।
1: परिवार में और ये बेटी माई नूर है, अलीजा है।
0: अच्छा।
1: तो हमारा यूसुफ है। और ये हमारे मिलने वाले हैं डॉक्टर सैयद तारिक अली दवाखाने से नामकारी हूँ।
0: ठीक है सर, आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स के साथ सुनवाते हैं प्यारा से गाना, आपके दोस्तों के साथ आप एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए एवरीवन, अभी अगर कोई गाना सुनना चाहते हैं ना, तो बिना किसी देरी के टेंशन फ्री होकर कॉल लगाइएगा। मैं इंतजार कर रही हूँ और ये गाना सुनिएगा अभी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं आपकी होस्ट आरजी खुशी। बाहर का मौसम बड़ा ही सुहाना सा है और अभी अपने कॉलर से बात कर लेते हैं, उनको कौन सा गाना सुनना है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका? हेलो, मैं ठीक हूँ मैम, आप बताइएगा क्या नाम है आपका? नेहा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद
0: से बात कर रहे हैं। बताइए नेहा जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ, आप बताइए।
0: हाँ जी, आई एम गुड। बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं सुनना चाहती हूँ सपना चौधरी।
0: कोई भी ट्रैक प्ले करें। बावन गज का दावन, ठीक है, सुनवाते हैं आपको ये गाना। ओके मैम, एंजॉय कीजिएगा, मोस्ट वेलकम। तो चलिए नेहा जी की पसंद पर सुन लेते हैं बावन गज का दामन, बहुत प्यारा ट्रैक है। और हम लौट कर आते हैं, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइए जल्दी से। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और बिना किसी देरी की कॉल लगाते रहिए। जब आप कॉल लगाएंगे तभी तो आप हमसे बातचीत करने का अवसर पाएंगे ना।
2: जब आई

0: तो 52 गज के दामन वाली गाने पे आपने जम के खूब डांस किया ना। ओहो, लड़कियां तो भाई सो रही थी लेकिन सोते सोते उठकर फटाफट से डांस करना शुरू कर दिया। जब अपना कोई पसंदीदा गाना प्ले हो जाता है ना रेडियो पर, तो ऐसा लगता है कि सारी खुशियां मिल गई है ना। और अभी आपने सुना ये अमेजिंग सा ट्रैक रेणुका पवार की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। चलिए भी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो
1: मैम, बोलो तो।
0: हाँ जी बताइएगा, क्या नाम है आपका?
1: मैम अजय कुमार है, मैंने फरमाइश बताई नहीं थी।
0: हाँ जी बताइए जी जी, क्या फरमाइश है?
1: हेलो।
0: हाँ जी हेलो, आवाज आ रही है आपको? मुझे सुन पा रहे हैं आप?
1: मैम कॉल नहीं करती थी क्या? अभी तो मैं बात कर रहा था आपसे, बात कर रहा था नहीं मैं अभी।
0: सर आपकी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी, आप होल्ड पे थे। अभी आप बताइए, लाइव है, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: ये प्यार बड़ा बेदर्दी है
0: जी, बताइएगा आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: अजय कुमार।
0: अजय कुमार जी,
1: मुरादाबाद के पास में गाँव पड़ता है।
0: ओके, तो सुनवाते हैं गाना, आप इंजॉय कीजिएगा ठीक है?
1: जी मैम
0: जी। तो चलिए श्रोताओं सुनवाते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक, और आप भी कॉल लगाइए बिना किसी देरी के। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी, जब आप मुझे कॉल लगाते हैं तो उसके बाद आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है। एंड कुछ लिसनर हमारे, उनको शायद मालूम नहीं है, आई डोंट नो क्या होता है, वो ट्रैक बताते हैं उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिर वो वेट करते हैं कि हमारा गाना प्ले होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे लिसनर कॉल करते हैं बैक टू बैक। अगर आप कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे तो हम दूसरा कॉल रिसीव कर लेंगे, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आप मुझे कॉल करें तो कॉल डिस्कनेक्ट ना करें बिना किसी रीज़न के, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता है आप इतनी मेहनत से कॉल लगाते हैं और उसके बाद हम आपका गाना प्ले ना करें। तो उन चीज़ों का ख्याल रखो, बाकी गाना इन्जॉय करो। मैं बस वापस आती हूँ अभी इस छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: मुझे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
1: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर साहनी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजी खुशी और वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 3:48 और हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बात करते हैं कौन कहाँ से कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: आपको आवाज आ रही है? यस, बताइएगा अपना नाम।
1: मेरा नाम कनिका।
0: कनिका, आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? अभी सो के उठे हो?
1: नहीं,
0: पर थोड़ा एनर्जी के साथ बात करो। खाना तो खाया है ना आज आपने?
1: हाँ खाया है।
0: हाँ तो इतने धीरे धीरे बात क्यों कर रहे हो?
1: मेरी आवाज ऐसी ही है।
0: अच्छा, आपकी आवाज ऐसी ही है। ओके, फिर तो आप किसी को डांटते भी होंगे ना, तो कोई आपसे डरता भी नहीं होगा।
1: नहीं,
0: इतना स्वीट तरीके से आप बोल रहे हो, स्वीटली बात कर रहे हो, धीरे धीरे बात कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी डांट से डरता होगा। या तब आपकी वॉइस थोड़ी चेंज हो जाती है? हाँ,
1: हो जाती होगी शायद।
0: शायद नहीं, हो जाती होगी, वो तो आप ही को पता होगा। बताइएगा क्या सुनना चाहते हो आज आप?
1: मोहम्मद फैज की आवाज में फिर लौट के नाना सॉन्ग सुनना चाहती।
0: सॉरी, कौन सा ट्रैक बोला है आपने? फिर लौट के ना आना।
1: हाँ, फिर लौट के ना जाना।
0: फिर लौट कर ना जाना, राइट?
1: हाँ
0: ठीक है, ये ट्रैक सुनवाते हैं हम आपको। ओके,
1: अच्छा सुनिएगा, क्या आप मुझे लगातार 2-3 सॉन्ग सुनाना?
0: नहीं, ये पॉसिबल नहीं है डियर, एक टाइम में एक ही गाना सुन सकते हो आप।
1: अच्छा ओके, कोई नहीं।
0: या तो चलिए विवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाओ जल्दी से, बिना किसी देरी के। इतना आलस ठीक नहीं है, ठीक है? आपने खाना वाना खाया है, फुल एनर्जी के साथ हैं आप, मुझे पता है, रेस्ट भी कर लिया है, तो जल्दी से कॉल लगाओ ना। फिर क्यों इतना बहाना लगा रहे हो? हाँ

0: क्या बात है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मोहम्मद फैज की आवाज में ट्रैक आपने सुना और लिरिक्स थे जानी की एंड म्यूजिक था हनी बनी का। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से कौन हमारे साथ जुड़े राइट नाउ। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा। जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: ठीक है मैम, आप
0: जी? ऑल गुड, सब बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा, आज कॉल लगाया आपका, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम गाना जो कानपुर फिल्म का सुनवा दीजिए।
0: हाँ, कौन से गाना सुनना है जी?
1: फिल्म का नाम है कामचोर।
0: ओके,
1: गाने के बोल है तो जिसमें प्रीत लगाई सजना।
0: अच्छा ठीक है सर, सुनवा देते हैं गाना
1: जी। और घर वालों को नाम देना चाहिए
0: जी, बताइएगा
1: जी। हमारी माताएं सरोज देवी और
0: हाँ जी,
1: चंद्रपाल सिंह, हमारी भाई सर राखी और हमारे दो बेटे हैं अनुज प्रशांत।
0: ठीक है सर, आपकी फैमिली के साथ सुनवाते हैं गाना, आप एंजॉय कीजिएगा
1: जी। रेडियो पर सुना है सभी लोग ये
0: गाना। ओके हाँ बिल्कुल, पूरे परिवार के साथ आप इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए और अपने पसंदीदा गाना भी सुनिएगा। तो चलिए श्रोताओं, लौट कर मैं वापस आती हूँ इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। आप कहीं मर जाइएगा, यूं ही मुस्कुराइएगा और सुनते रहिए खूबसूरत गीत।

0: Amazon. Here's my beauty wish list.
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

वही तो हम अपनी श्रोताओं से कहना चाहते हैं कि दोस्तों आपको क्या हो गया है, एंड आपको पता है ना रूल्स के बारे में कि वीक में सिर्फ एक ही बार कॉल लगाते हैं और आप हैं कि बार बार कॉल लगाते हैं। माना कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं फिर मुरादाबाद से, शुरू से दिल है कि मानता नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है ना। और अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही से, एंड दोस्तों आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और सुनिएगा आप भी अपना फेवरेट ट्रैक, गाने वही जो आपका दिल चाहे। तो जब तक आप मुझे कॉल लगाते हैं ना, मैं आपको एक शानदार से गाना सुनवाती हूँ अभी सतेंद्र सरताज जी की आवाज़ में।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
1: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
0: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर साहनी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के

0: बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी आपके साथ है और मेरे साथ में हमारे एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। अपना शुभ नाम बताइएगा आप और कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: सुनील कुमार, बुद्धिगार, सेक्टर 12, मुरादाबाद
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप।
1: जी मैम ठीक है, आप बताइए कैसे हैं।
0: हाँ जी, हम भी बहुत ही अच्छे हैं, प्रभु राम जी की कृपा है। आप बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आज।
1: जी मैम, मैं आज सुनना चाहता हूँ एक माँ भूमि से सॉन्ग है ना, टाइटल सॉन्ग माही मंदिर।
0: माही मंदिर, ओके।
1: हाँ जी मैम, ये अपनी मम्मी के लिए सुनना चाहता हूँ, याद आ रही थी मुझे बहुत।
0: अच्छा ठीक है, तो मम्मा के लिए सुनवाते हैं ये प्यारा से गाना। थैंक यू सर कॉल करने के लिए।
1: ओके, थैंक यू वेरी मच।
0: तो चलिए फ्री फन सुनते हैं सर की पसंद के ट्रैक एंड मैं लौट कर आती हूँ। तब तक आप भी मुझे कॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मोबाइल नंबर आपको बता देती हूँ, 9837896896। इस नंबर पे कॉल लगाइए और सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। अभी इंजॉय कीजिएगा ये टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी माँ और मैं वापस आती हूँ बस।

क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और अभी आपने टाइटल ट्रैक सुना, बहुत ही प्यारा सा। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: जी मैम।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, नाम बताइएगा अपना।
1: मेरा नाम नाजिया मलिक है।
0: नाजिया मलिक, कहाँ से बात कर रही हैं आप? ये किस साइड पड़ता है मैम? ये कहाँ पर है आपका जो नाम है?
1: पाक बड़े के साइड।
0: अच्छा अच्छा, ओके, बताइएगा क्या करते हैं आप?
1: हम जींस की सिलाई कर रहे थे।
0: ओके, अच्छी बात है मैम। बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मुझे एक पाकिस्तानी ड्रामा सॉन्ग सुनना है।
0: बताइएगा।
1: कहानी सीरियल का सॉन्ग।
0: ओके,
1: और आपके टीम के कैसे लोग हैं?
0: हाँ, सब ऑल गुड, बहुत ही अच्छे हैं मैम। जिस ट्रैक की आप रिक्वेस्ट कर रही हैं मैम, ये तो नहीं मिल पा रहा है हमें। एंड कोई दूसरा गाना बताइएगा।
1: तो आप धूम सीरियल का चला सकते हैं, पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तानी ड्रामा है।
0: सॉरी, क्या बताया, दोबारा बताइएगा एक बार फिर से।
1: झूम झूम
0: झूम, किधर झूम रहे हो आप?
1: मैं तो घर पर ही घूम रही हूँ।
0: अच्छा, ओके,
1: आपसे बात करके तो और भी अच्छा लगा है।
0: हाँ,
1: और मैंने एक बार ट्राई किया था, कई बार भी अच्छा जा रहा था, लेकिन उठाया नहीं था किसी ने भी।
0: अच्छा,
1: अचानक में लग गया पहली फेरी में।
0: तो कैसे लग रहे हैं आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: और आपके पास में कौन कौन गुफ्तगू कर रहे हैं आपसे?
1: मेरी एक भांजी है और मेरी भाभी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है वो।
0: अच्छा जी, ओके,
1: मैं नाम ले सकती हूँ उनके?
0: हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं।
1: मेरी भांजी का नाम सोफिया।
0: हाँ,
1: और मेरी भाभी का नाम रेशमा।
0: ओके, ठीक है, तो आपकी फैमिली के साथ सुनवाते हैं गाना आपको।
1: ओके,
0: या तो चलिए विवान सुनते हैं एक ट्रैक, एंड उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत। आप भी जल्दी से कॉल लगाइएगा। मैम ने दोनों गाने बताए हैं और दोनों ट्रैक यू नो हमारी प्लेलिस्ट में मुझे नहीं नजर आए, बट हाँ एक गाना है बहुत ही खूबसूरत सा, फ्रॉम द मूवी। बता दें आपको, चलो बता देते हैं बिना किसी देरी के, बहुत प्यारा गाना है फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम। और ये गाना बहुत ही प्यारा सा है, शादियों में इफेक्ट चलता है, तो हम अपनी सखियों को भी थोड़ा सा झुमा देते हैं।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
2: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
1: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

0: हेलो गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये शानदार सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम, अलका याग्निक जी और साथ में उदित नारायण जी की आवाज। म्यूजिक कंपोजर थे जतिन ललित जी और लिरिक्स थे समीर अंजान जी के। बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से और जान लेते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: जी मैम। हेलो कमाई।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार मैम
0: जी, अपना नाम बताइएगा।
1: मैम मैं नितेंद्र चौधरी एडवोकेट बात कर रहा हूँ
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप सब।
1: मैम मैं बहुत अच्छा हूँ और आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा हो गया हूँ।
0: अच्छा, बातें सुनकर अच्छे हो गए हैं आप।
1: खुशी मैम, मैं बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ आपका और आनंद भाई भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं।
0: ओके।
1: मैं मुरादाबाद से हूँ लेकिन इन दिनों प्रयागराज में हूँ, मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला हुआ है।
0: अरे वाह,
1: अपनी मैडम की याद आती है तो मैं गाना सुन लेता हूँ, वो लड़की बहुत याद आती है।
0: ओके अमेजिंग। तो मैम कहाँ पर रहते हैं, मुरादाबाद में।
1: मैम मुरादाबाद में रहते हैं, वो योगा टीचर हैं। आपको मिलवाऊंगा किसी दिन आएंगे, आनंद भाई ने हमें इनवाइट किया था लेकिन शायद उनके पिताजी नहीं मिल पा रहे थे ना, तो इससे थोड़ा।
0: हाँ जी जी जी जी सर।
1: अभी तो उनका पता लगा नहीं लगा मैम।
0: नहीं सर, अभी तो कोई अपडेट नहीं है।
1: चलिए कोई नहीं, हम तो यही ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि उनके पिताजी जल्दी से जल्दी मिल जाएं, जहाँ भी जाएं अच्छे हो जाएं।
0: थैंक यू सर, बस हम भी यही ब्लेसिंग प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से मिल जाएं।
1: बिल्कुल मैम बिल्कुल
0: जी। तो उसे बताइएगा आज कौन सा ट्रैक सुनना चाहते हैं आप मैम के लिए।
1: हाँ मैम, मैं अपनी मैम के लिए वो लड़की बहुत याद आती है क्योंकि मैंने लव मैरिज करी है ना, तो इसलिए थोड़ा मुझे याद आती है।
0: थोड़ी नहीं, अरेंज करो, लव करो, जो जब रिश्ते में आ जाते हैं, रिलेशन में आ जाते हैं, तो वो रिश्ता अपने आप में बहुत खूबसूरत हो जाता है।
1: यस मैम, यस मैम
0: जी। तो सुनवाते हैं ट्रैक आपको। थैंक यू सो मच सर कॉल करने के लिए।
1: ओके मैम, थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये अमेजिंग सा ट्रैक और मैं लौट कर आ रही हूँ। वैसे गाना बहुत ही प्यारा चुना है सर ने, ये मूवी में मैंने देखी है, काफ़ी अच्छी है। तो चलिए सुनते हैं ये शानदार सा ट्रैक और आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। वैसे सच में सच बात है दोस्तों, जो ये गाने होते हैं ना, सिर्फ गाने नहीं होते हैं, ये हमारे ना लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। एंड जैसे सर ने कहा कि वो रहते हैं अभी राइट नाउ प्रयागराज, शायद रिमेम्बर, और उनकी मिसेज रहती है मुरादाबाद में। तो गाना देखिए कितना प्यारा चुना है ना, वो वहां से याद कर रहे हैं, मैडम यहाँ पर मुस्कुरा रही हैं। चलिए सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक।

हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो फरमाइश शो में। और देखिए, जैसे ही घड़ी में शाम के 4 बजते हैं ना, तो हमें सबसे पहले याद आती है गर्मा गर्म चाय, क्योंकि हम हैं चाय लवर और चाय के बिना नहीं रह पाते हैं, तो हमें चाय की याद आती है। और यहाँ पर अभी आपने ये ट्रैक सुना, वो लड़की बहुत याद आती है कुमार सानू और अलका याग्निक जी की बहुत प्यारी आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी कयामत सी। और दोस्तों, आप भी मेरे साथ इस प्यारे से सेशन में कनेक्ट हो सकते हैं, लाइव सेशन चल रहा है, फोन इन कार्यक्रम। आप जल्दी से मुझे कॉल कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। जब तक आप कॉल करते हैं ना, तब तक हम आपको एक शानदार सा ट्रैक सुनवाते हैं, और ये गाना बहुत ही प्यारा है, फ्रॉम द मूवी मोहरा सी।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: यार, सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुनाई प्यारा सा ट्रैक पंकज उदास साथ में साधना सरगम जी की बहुत मधुर आवाज में ट्रैक। ना कचरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी इतने सुंदर हो, सादगी में भी इंसान बहुत खूबसूरत लगता है। और अभी बात करते हैं अपने अगली कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार मैम
0: जी, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैम मैं मुरादाबाद से हनुमान नगर से खेमपाल सैनी बोल रहा हूँ, टेलर
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप सब।
1: मैम सब बढ़िया हैं, और आपके यहाँ कैसे हैं सब।
0: हाँ जी ऑल गुड, सब बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आज, आप क्या फरमाइश है आपकी।
1: मैम आज सुनना चाहते हैं हम वीर है कयामत की और हम अकेले हैं।
0: ओके सुनवाते हैं फिर ये आपको गाना, ठीक है सर, आप एंजॉय कीजिएगा।
1: जी मैम
0: जी, तो चलिए व्यूअर्स सुन लेते हैं सर की पसंद का।

हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी मोहब्बती से। और दोस्तों, अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, लेकिन हाँ, बस जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि दोस्तों, आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए फिर मुरादाबाद के प्रति, और सुनते रहिए बेहतरीन ट्रैक। गानों के साथ साथ आपको मिलते हैं यहाँ पर बैक टू बैक अमेजिंग शो सुनने को मिलते हैं, बहुत सारी जानकारियां भी मिलती हैं। एंड बस यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और अगर आप इस समय ऑन द वे कार में हैं एंड ट्रैफिक में हैं, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है? थोड़ी देर ही सही, लेकिन आप सुरक्षित घर पहुँची, वो ज़्यादा मोस्ट है। एंड बी बजे हॉर्न ना बजाएं और सीट बेल्ट ज़रूर बांध लीजिएगा। बाकी कीप स्माइलिंग एवरीवन, जब आप मुस्कुराएंगे ना तो ये सफ़र भी कट जाएगा। और हम चलते हैं अभी फ़िलहाल, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, टेक केयर, और एक प्यारा सा गाना मेरी तरफ से आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिएगा।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
4: कार में म्यूजिक बजा, म्यूजिक बजा नाचूंगी, कार में म्यूजिक बजा।

0: क्या हुआ?
1: Stop the car.
2: अरे अब घर जाके सुन लियो।
3: लेकिन कोई बात नहीं जी, हम आपको घर जाने के लिए नहीं बोलेंगे। हम आपको स्टूडियो में ही सुना देंगे, क्योंकि आज रीना आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई हैं इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 5:06 हो चुके हैं और हम यहीं पर आप

को गाना ढेर सारे सुनवाने वाले हैं और साथ ही साथ ओहो कड़क अपडेट। क्योंकि आज की तारीख है 11 सितंबर और देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे और भी ढेर सारी बातें करेंगे। और आज का स्पेशल डेज क्या है, बॉलीवुड में क्या चल रहा है, आखिरकार बॉलीवुड के गलियों से लेकर और भी बहुत सारी बातें करेंगे और पहेली ऐसी जिसे सुनकर थोड़ा कंफ्यूज तो हो जाते हैं आप, है ना। मुझे पता चल गया है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ऊपर से ये कहा जाता है कि मैडम थोड़ा सा तो आसान क्वेश्चन पूछा करो, बट देखिए आज और भी आसान क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं आपसे। लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करेंगे गाने से, करेंगे ढेर सारी बातें। और फिलहाल आपने कहीं नहीं जाना है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर अपनी भक्ति करनी है ना, तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

0: बम भोले, भोले बम भोले, भोले बम भोले।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
3: FM मुरादाबाद 89.6 से रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आरजे रीना आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है और बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है, पार्वती पार्वती काहे कर रही जिद। मतलब सच बताओ, अगर इस मूवी को कोई बोले ना कि 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए, तो 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए। क्योंकि जब तक मैं ये मूवी नहीं देख कर आई थी तो ठीक है, जो बोलता था हाँ भाई देख लो मूवी को, लेकिन कल मैं इस मूवी को देखकर आई हूँ। बहुत अच्छी मूवी है, फैमिली मेंबर के साथ जाइए, अपने जो दादा है दादी है उनको भी साथ लेकर जाइए, ये मूवी दिखा के लाइए उनको, क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी है। और इस मूवी को इस तरीके से बनाया गया है ताकि पार्ट टू देखने के लिए इंसान उतावले हो जाए। मतलब वो 10 साल बाद आते हैं वापस, लेकिन उसके बाद नहीं दिखाते, वो पार्ट टू में दिखाया जाएगा। लेकिन वाकई में बहुत बहुत बहुत अच्छी मूवी है। मैं आप सभी से यही कहूँगी कि देखिए, एक महीने से ज़्यादा हो गए, फिर भी सीट एक भी खाली नहीं है भैया, फुल। मतलब रात का भी शो हो चाहे दिन का शो हो, एक भी सीट खाली नहीं जाती। आप और मूवी देखने चले जाएंगे तो आपको 10-15 सीट तो लगेगा कि हाँ ठीक है खाली रहती है, लेकिन हनुमान अंश मूवी देखने के लिए भैया लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हम नीचे बैठ के देख लेंगे, मुझे लेकिन टिकट्स मिल जाने चाहिए हमें, इतनी शानदार मूवी है। और गाने भाई, गाने उससे भी खतरनाक वाले, उससे शानदार वाले गाने हैं। और इस मूवी को देखने के बाद बहुतों के मन में, क्योंकि मेरे मन में भी एक मतलब एक सोच जो है मेरे मन में भी आई, वो सोच ये है, मतलब हर किसी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगा। देखिए हम पूजा भी करते हैं, है ना, हनुमान चालीसा भी करते हैं, शिव चालीसा कर लीजिए, विष्णु चालीसा कर लीजिए, लेकिन हम बैठे तो हुए होते हैं एक्चुअल में पूजा करने के लिए, चालीसा करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं भटकता रहता है, कभी कुछ सोच रहा है, कभी पूजा करते करते पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं कि बस अब जैसे पूजा करूंगा ब्रेकफास्ट करने लग जाऊंगा और ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा, भाग दौड़ी में हम पूजा करते हैं, जल्दी जल्दी पूजा करते हैं। और एक्चुअल में सही में जो भी हम चालीसा करते हैं, पूजा करते हैं ना, इनफैक्ट आप हाथ ही जोड़ लीजिए भगवान के आगे, लेकिन वो भी सच्चे दिल से अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत कहते हैं कि भगवान नहीं सुनते, लेकिन आप जल्दबाजी करेंगे तो भगवान सुनेंगे कहाँ से। इसीलिए जब भी आप पूजा करें या फिर कोई चालीसा करें, अपने दिमाग में जो भी ओवरथिंकिंग चलता है उसको दूर करिए और सच्चे दिल से कोई भी आप चालीसा करेंगे, जिस भी भाव से आप करेंगे, वो पूर्ण जरूर होता है और भगवान तक आपकी जो आवाज़ है ना वो ज़रूर पहुँचती है। लेकिन उसके लिए भाव अच्छा होना चाहिए, मन में कुछ और खिचड़ियाँ नहीं पकनी हो पकनी चाहिए कि मैं पूजा करूँगा ऑफिस के लिए चला जाऊँगा, पूजा करूँगा ब्रेकफास्ट करूँगा या फिर कुछ और करने लग जाऊँगा। इसीलिए चाहे 5 मिनट ही दीजिए पूजा को, पूजा जब आप करते हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा अगर आप चाह रहे कि नहीं कर पाऊँगा मैं, तो जितने मिनट भी करें आप ध्यान से करें। और भी ढेर सारी बातें करेंगे। और भैया ये जो मूवी है ना सच में बहुत अच्छी है, आप भी ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखी होगी तो। फिलहाल एक और गाना हम प्ले करेंगे, उसके बाद कनेक्ट होने वाली मैं आप सभी के साथ, करेंगे ढेर सारी बातें।

0: हेलो जी, नैना दी की कसूर वे नैना ही दियो कसूर होता है जी। हर चीज नैना जो दिखती है वही सब कुछ अच्छा होता है। हर चमकता चीज सोना नहीं होता है, इसीलिए जो भी आप देखे अच्छे से ही देखे, तभी उसको परख के अपनी जिंदगी में आप ग्रहण करें। आज रीना आप सभी के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 5:28 हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में कनेक्ट हैं। और साथ ही साथ देखिए, आप ऑन द वे होंगे, आई नो, मुझे पता है ट्रैफिक में हैं आप, क्योंकि देखिए ऑफिस से भाई हर कोई घर के लिए रवाना होता है और इतने जल्दबाजी होती है ना कि बस यही सोचते हैं कुछ भी हो जाए हम घर पहुंच जाए, और ऐसे चक्कर में घर से भी कॉल आ जाता है, कुछ लिस्ट बन के भेज देते हैं घर वाले कि भैया बाहर से आना, ऑफिस से निकलना तो ये चीज़ लेते आना, लेकिन हम जल्दबाजी इतनी ज़्यादा करते हैं ना कि ले जाना ही भूल जाते हैं, फिर घर जाके ताने सुनते हैं, फिर वापस आते हैं ले जाने के लिए सामान, और क्या लेके जाएंगे आप। और साथ ही साथ देखिए, मैं आपको हर रोज़ बोलती हूँ कि हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना आपकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आप सुरक्षित अपने घर पहुँच सकते हैं। इसीलिए हेलमेट और सीट बेल्ट अगर आपने नहीं लगाया है तो लगा लीजिए। हाँ, आपको ही बोल रही हूँ मैं, लगा लीजिए, वरना आप बाहर आप देखेंगे कि भैया खाकी कलर में जो मामा बैठे हैं ना, वैसे भी शादियों का सीजन अब शुरू होने वाला है, यानी कि जब ही देव उठ जाएंगे तो शादी शुरू हो जाएगी फिर से होने, ढोल नगाड़े बजने लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही आपका भात भर सकता है। इसलिए आप चाहते कि हमारा भात ना भरे, हमारे गुल्लक खाली ना होए, तो हेलमेट और सीट बेल्ट ज़रूर लगाए और आरजे रीना के साथ यूं ही कनेक्ट रहे। और साथ ही साथ देखिए, जो हनुमान हंस मूवी कल हम देख कर आए, तो भाई एक घनघोर जंगल में जाता है अपने भाई की वकालत की फॉर्म देने के लिए, लेकिन ये कह दिया जाता है कि अगर डर लगे तुम्हें तो हनुमान चालीसा पढ़ना, लेकिन हनुमान चालीसा सच्चे दिल से पढ़ना, तभी आप डर नहीं पाओगे। तो अच्छा, मेरा आप सभी से आज क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अभी पूछ रही हूँ मैं, आई नो 6 भी पूछूंगी। सो आज मेरा अभी आप सभी से क्वेश्चन ये है कि अगर आपको रात को डर लगता है, सोते सोते आप डर जाते हैं, तो क्या वाकई में आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करके बताना है कि आप जब रात को डर जाते हैं तो वाकई में हनुमान चालीसा करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, हनुमान चालीसा करते ही ना एकदम आपके अंदर पावर आ जाता है और जो भी डर होता है ना वो छू मंतर हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी आपके पास आ जाते हैं आपकी मदद करने के लिए। तो आपने बताना है कि आप जब डर जाते हैं तो क्या वाकई में हनुमान चालीसा करते हैं या फिर हनुमान चालीसा सुनते हैं। जल्दी मैसेज करिए और बताइए हमें, और फिलहाल ये गाना भी इंजॉय करिए। लेकिन गाना सुनने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का भी टाइम हो ही जाता है।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
4: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
3: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है और आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है। और समय की बात करूं तो 5:39 हो चुके हैं और आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है। इवनिंग मस्ती शो में और आज की तारीख यानी कि 11 सितंबर और आज का डे ना हमारे लिए बहुत खास है। अब ये डे खास क्यों है? अरे बिल्कुल बहुत ही खास है, बस जरा कान खोल लीजिए और आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए। रेडियो का वो जो वॉल्यूम है उसको भी बढ़ा लीजिए, तभी मजा आने वाला है आपको। तो आज का हमारा डे मनाया जाता है राष्ट्रीय नव शहीद दिवस, हर साल 11 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिरकार इस दिन को मनाने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? हर किसी के दिमाग में यही ख्याल आता है कि आखिरकार, देखिए अगर आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो डीपली जानेंगे तो दिमाग में इस तरीके के क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आते ही आते हैं। ये दिन उन बहादुर वन अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों को याद करने और श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्हें जंगलों और वन्य जो अजंगली जीवन होते हैं उनकी रक्षा करते हुए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। हम अक्सर जंगल को सिर्फ पेड़ पौधों के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में जंगल हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। ये हमें साफ हवा देते हैं, बारिश और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं और हजारों जानवरों को घर भी है ये, क्योंकि उनका घर जंगल ही होता है। इस दिन का संबंध सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के यानी कि खेजड़ी बलिदान से भी जोड़ा जाता है, जहां पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। तो हमें क्या करना है? बस हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है कि पेड़ मतलब ना काटे और पेड़ लगाए जितना हो सके। फिलहाल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है कि भैया पेड़ काटे जा रहे हैं, सुरंग बनाए जा रहे हैं और सड़कें निकाली जा रही हैं ताकि जो सुविधा है वो और भी स्मूद और आसान बन सके। इस चक्कर में हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं और पर्यावरण फिर हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। गर्मी और ऊपर से बिन मौसम बारिश, जब देखो जब मौसम में चेंजेस होते रहते हैं, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और अपने पर्यावरण को बचाते रहिए और आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए। ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

सोनू निगम और अलका याग्निक जी की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं, बनके तेरा जोगी। और फिलहाल आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट है और मैं आपको बता दूं कि देखिए अब फेस्टिवल ना बिल्कुल यानी कि नज़दीक आ चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा भैया अब कब दिवाली ख़त्म हुई और फिर से दिवाली आ जाएगी और ऊपर से गणेश जी का उत्सव भैया इतने जोरों शोरों से है ना कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं। मतलब देखते देखते पता ही नहीं चला कि ये जो साल है कितने जल्दी गुजर गया और ऊपर से फिर से अब जो गली शहर के जो गलियां हैं वो सूनी पड़ने वाली हैं क्योंकि हर कोई घर जाने के लिए टिकट्स बुक करवा रहे हैं पहले से ही, पहले 2-3 महीने पहले से ही बुक करवाना होता है टिकट्स, यानी कि जब वो घर जाते हैं घर से दूर रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक दिन में कितने टिकट्स बुक हुए हैं। बस आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए क्योंकि दिवाली पर और छठ पूजा के पावन मौके पर हर कोई अपने घर जाते हैं, हर शहरी बाबू बस अपने घर की तरफ रवाना होते हैं और फैमिली के साथ मिलकर भैया जो भी फेस्टिवल होते हैं ना उसका अलग ही आनंद आता है जो फैमिली के साथ आप फेस्टिवल मनाते हो, फेस्टिवल इंजॉय करते हो। तो फिलहाल एक गाना सुनेंगे क्योंकि गणपति बाबा मोरिया यानी कि गणपति पापा जी बहुत ही जल्द यानी कि आज की तारीख 11 सितंबर और 19 सितंबर को वो हमारे बीच आने वाले हैं तो बस 9 दिन और रहते हैं। तो उन्हीं के वही ये जो गाना है ना, सच बताऊँ बहुत अच्छा गाना बनाया

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एक रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई देशों के नेता इस समय नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच में शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कार्यक्रम में सदस्य देशों और साझेदार देशों के 2000 से अधिक उद्योगपति और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स व्यापार मंच है।
5: मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज टू द वर्ल्ड।
6: ब्रिक्स देशों से दुनिया को होने वाला वस्तु निर्यात 2003 में करीब 900 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसके साथ ही वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी भी करीब 12% से बढ़कर अब लगभग 24% हो गई है।
4: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप्स और उद्यम शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एचपीवी टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
7: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
8: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
9: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
8: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
9: अरे नहीं,
10: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
9: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
8: अच्छा?
9: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: लॉन्ग ड्राइव ले चल हाय हाय, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। लेकिन फिलहाल अभी सभी लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए रेडी हैं। अब ये लॉन्ग ड्राइव वाली बात मैं क्यों कह रही, फिलहाल तो मैं आपको समय बता दूं, यानी कि 6:11 हो चुके हैं और दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। अर्जेंटीना के साथ आप कनेक्टेड, और तारीख की बात करूँ तो 11 सितम्बर और आज दिन है शुक्रवार। कहते हैं ना कि शुक्र है कि आज शुक्रवार है। हर किसी के जहन में भैया शुक्रवार आते ही ना बहुतों की सैटरडे और संडे की छुट्टियां रहती है, तो उनके दिमाग में भैया अलग ही बल्ले बल्ले वाली जो खुराफात है ना वो चलती रहती कि ओहो क्या बात है बेटे, कल तो छुट्टी है, मजा आने वाला है। लेकिन संडे की प्लानिंग करते हैं कि आखिरकार 2 दिन मिला है, या तो हम सो लेते हैं अच्छे से या फिर कहीं घूमने चलते हैं फैमिली वालों के साथ, हमेशा यही प्लानिंग चलती रहती है। फिलहाल अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया ही है कि देखिए फेस्टिवल है वो शुरू हो गए हैं, और इस चक्कर में जो दूर दराज से अपने घर से दूर रहते हैं उन्होंने, यानी कि अब की बार का रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो 2 दिन रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो 2 दिन में 30 लाख ट्रेन टिकट्स बुक, दिवाली छठ पूजा पर यानी कि रेलवे का रिकॉर्ड अब की बार का हाई रहा है। क्योंकि देखिए हर घर जाने वाले टिकट्स बुक करते हैं पहले ही, और अब की बार का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही हाई है, यानी कि ये मत सोचिए कि एक ही ट्रेन का टिकट्स बुक हुआ है, हर अलग अलग स्टेट से सब आते हैं, बाहर जाते हैं काम करने के लिए और फेस्टिवल पर अपने घर जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ 2 दिन के अंदर, यानी कि 2 दिन के अंदर इतने टिकट्स बुक हुए हैं, यानी कि 30 लाख टिकट्स बुक हो चुके हैं। और साथ ही साथ छठ पूजा के और दिवाली के पावन अवसर पर यानी कि और भी ट्रेनें चलाई जाएंगी, लेकिन वो ट्रेनें और भी चलाई जाएंगी, कौन कौन से रूट पर चलाई जाएंगी उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, हम हैं यहाँ पर आप सभी को बताने के लिए। बस आपने क्या करना है, ट्यूनिंग करके रखेंगे तभी आपको पता लग पाएगा, अदरवाइज जैसे ही आपने सिग्नल चेंज किया तो काकी आप कुछ नहीं जान पाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। क्योंकि आर्जेंटीना है आप सभी के साथ कनेक्ट और भी अपडेट्स देने के लिए, लेकिन साथ ही साथ भैया कुछ मैसेज हैं उनको भी शामिल करना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं पिंटू जी, जो कि दिल्ली से है, और इनका कहना है कि आपने अभी राइट नाउ पूछा था कि रात को अगर आपको डर लगता है या किसी टाइम आपको डर लगता है तो आप क्या करते हैं, तो देखिए मैम मैं सच में अगर मैं डर भी जाता हूँ ना तो हनुमान चालीसा सुनता हूँ, क्योंकि जब मैं हनुमान चालीसा सुनता हूँ या फिर मैं बोलने लगता हूँ तो मतलब जितने भी मेरे को डर लगती है वो छू मंतर हो जाती है, एक अलग ही पॉजिटिविटी मेरे आसपास, मेरा ऑरा ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी भर चुकी है, ऐसा लगता है कि हनुमान जी मेरे साथ है। जी बिल्कुल, हनुमान जी साथ ही में रहते हैं। शालिनी जी का मैसेज आता है और इनका भी कहना है कि जब मैं भी डर जाती हूँ कभी कभी, जब घर पर अकेली रहती हूँ तो मैं भी हनुमान चालीसा तो सुन ही लेती हूँ, क्योंकि इससे आपके डर है वो छूमंतर हो जाते हैं और एक अलग ही एनर्जी आपको फील होती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और अगले मैसेज की बात करूँ तो गुड वाली इवनिंग है, कैसी हैं आप, बहुत अच्छी हैं। रीना जी आपने बोला था बारिश आएगी, देखिए बारिश 11 तारीख को बताई हुई है, अब ये नहीं बता मुरादाबाद में जहाँ आप रहते वहाँ ना हो या आसपास इलाकों में हो जाए, तो भैया ज़रूरी नहीं है कि आपके मुरादाबाद में बारिश होगी, क्योंकि मैंने बोला था कि देखिए बारिश आ भी सकती है, बारिश नहीं भी आ सकती। लेकिन फिलहाल मौसम बहुत ही अच्छा है, हवाएं चल रही हैं आज तो, अरे सर थोड़ी गर्मी से देखिए राहत है, भले ही धूप कड़क वाली है लेकिन हवाएं जो चल रही है ना जिस हिसाब से भैया, उस हवाओं में ना हल्की ठंडा फील हो रहा है। अगले मैसेज की बात करूँ तो बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, हेलो गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। चलिए फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, क्योंकि समय की अगर मैं बात करूँ तो 6:15 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: प्राथमिक विद्यालयों का समर्थता स्वरूप, यूपी में शिक्षा का निखरता रूप।
5: ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर।
6: पीएम पोषण से पौष्टिक भोजन, तो स्मार्ट क्लास से मिल रही है आधुनिक शिक्षा की नई रोशनी।
5: शारदा कार्यक्रम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों विद्यालय से जुड़े, समर्थ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के द्वार खुले।
7: अब यूपी में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का आगे बढ़ने का सपना पूरा होता है।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

हेलो जी, गर्ल वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 6:25 हो चुके हैं श्रोताओं। और देखिए, आई नो भैया, ओहो क्या बात है। क्वेश्चन देखिए पूछेंगे हम आप सभी से, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट्स भी तो है ना मेरे पास, वो आप सभी तक पहुँचानी है। देखिए, हमारी विमेन टीम इंडिया ने यानी कि 2026 एशियाई कप में सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, वो भी बांग्लादेश को 40 रन से हराकर। 10वीं बार फाइनल में हमारी विमेन टीम, जो इंडिया विमेन टीम है, वो फाइनल में पहुंच चुकी है। यानी कि जो कल तक भैया ये सवाल उठाते थे कि आखिरकार लड़कियां क्या कर सकती है, अब बोलो है आपके पास शब्द नहीं है ना, तो लड़कियां वो भी काम कर सकती है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं लगा कर रखी है। इसीलिए बस उनको आपका साथ चाहिए, आप उनको साथ दीजिए। और दूसरी बात ये, अपनी नज़र को ठीक रखना है, क्योंकि हर कोई ठीक है, परफेक्ट है, बस अपने नज़रिया को चेंज करना है और उन्हें भी आगे बढ़ने और उन्हें भी उड़ने का मौका देना है। फिलहाल आप फाइनल मैच देखने के लिए भैया उतावले हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो फाइनल मैच में पहुंचने वाली हमारी टीम इंडिया, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि अब हारना तो हमारी ज़िंदगी में लिखा ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ आगे ही बढ़ते रहेंगे। क्योंकि बड़ी मुश्किलों से लड़कियों को ना क्रिकेट यानी कि मैच खेलने की परमिशन दी गई थी, बहुत उसके पीछे का बहुत संघर्ष है, और उसके बाद जो ये अब मेहनत सामने आती है ना, तो वो दिन याद आते हैं कि काश हम पहले ही इजाज़त दे देते कि हमारी जो वुमेन टीम है, इन लड़कियाँ जो आगे और खेले, आगे और बढ़े। तो फिलहाल कौन कौन भैया फाइनल मैच देखने वाला है, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो। नंबर है 9837896896 पर। और साथ ही साथ आपके लिए भी हम सवाल लेकर आने वाले हैं, आप घबराइए मत, बस थोड़ा सा इंतज़ार करते रहिए और आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। और आज के मुरादाबाद के टेम्परेचर की बात करूं भैया, तो 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि आज का टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल है, जैसे पहले था वैसे ही है। यानी कि ठंडी हवाओं के साथ हल्की फुल्की धूप का भी आनंद आप ले रहे हैं, और जब हवाएं चलती है तो धूप का फील भी नहीं होता है। फिलहाल गाना सुनेंगे और उसके बाद कनेक्ट होंगे कड़क सवाल के साथ, और भी ढेर सारी बातें।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: हां जी, और इसी बीच आरजे रीना भी आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है कड़क सवाल लेकर। देखिए, और वो जो फल है ना, ठंड के मौके में बहुत ज्यादा मिलते हैं, और वैसे भी नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं 11 अक्टूबर से, तो ये उस टाइम भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसी कौन सी फल है जो पानी में उगाई जाती है। आपने सोचकर आराम से मैसेज करना है। बहुतों को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं और बहुत से जिनको पसंद भी नहीं होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट वो जो फ्रूट्स होता है ना, वो जो फल होता है ना, खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है, क्योंकि वो पानी में उगाई जाती है। तो आपने हमें मैसेज करके बताना है कि ऐसी कौन सी फल है जो पानी में उगाई जाती है और ठंड के मौसम में मिलती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो बस आपने सोचना है और मैसेज करना है, नंबर है 9823789689 कि ऐसी कौन सी वो फल है भैया जिसको पानी में उगाई जाती है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप आंसर बता पाएंगे। चलिए, फिलहाल के लिए एक और गाना सुनते हैं और उसके बाद हम सभी के साथ कनेक्ट होते हैं। सोचिए सोचिए, थोड़ा सा तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि ऐसे कौन सी फल है जिसको पानी में उगाई जाती है और ठंड के मौसम में वो मिलती भी बहुत है। सोच लीजिए और मैसेज कर लीजिए। ऊपर से उसकी परत जो होती है ना, वो ग्रीन ग्रीन सी होती है, लेकिन अंदर से वो वाइट। अब बस इतना ही हिंट बहुत है जी भैया, आप सोच सकते हैं अब।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: तैयार की खिंच खिंच के निशाने हूँ मैं मारती।
5: हाँ जी, खिंच खिंच के निशाने हूँ तो मार दी। फिलहाल आरजेरी ने आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है और समय की बात करूं तो 6:40 हो चुके हैं श्रोताओं, और साथ ही साथ गणेश उत्सव के लेकर ना भैया हर गली मोहल्ले हर शहर में एक अलग ही रौनक है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो भी शराब मिलने वाले हैं वो यानी कि बंद कर दिए जाएंगे, जब यानी कि 11-12 दिन के लिए शराब आपको नहीं मिलने वाली है, जो भी ठेके वगैरह है उनको बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जब भगवान जी धरती पर आएंगे तो उनकी पूजा में कोई विघ्न ना आए, क्योंकि विघ्न हरता है वो। और ऐसे में ये जो शराब नशीली चीजें हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ उसके बाद जो भैया नॉनवेज जो खाते हैं वो भी बोलेंगे कि नहीं नहीं अब नहीं भैया, अब तो पूजा करनी है बस। ऊपर से फिर साथ ही साथ नवरात्रि भी आ जाएंगे तो फिर लहसुन प्याज भी छोड़ देंगे, है ना। और देखिए, भगवान कभी ये नहीं कहते कि ये मत खाओ वो मत खाओ, बस भगवान ये कहते हैं कि कभी कभी किसी की निंदा मत करो, कभी किसी को सक्सेस होते हुए देखकर उस जेलसी फील ना करो, बल्कि उसका साथ दो। और साथ ही साथ 13 सितंबर से क्या शुरू होने जा रहा है, आई नो आप सभी उसके बहुत ही दीवाने हैं, लेकिन वो क्या है क्या नहीं है, क्या शुरू होने वाला है 13 सितंबर से वो भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज का जो मैंने कड़क सवाल पूछा है आप सभी से, मैसेज आ गए हैं बहुत सारे, थैंक यू सो मच। और अभी भी बहुत हैं जो सोच रहे होंगे कि भैया ऐसी कौन सी चीज है, मैंने देखिए कोई इतना बड़ा चीज तो नहीं पूछा है मैंने आप सभी से, बहुत ही आसान वाला सवाल पूछा है आपसे कि ऐसे कौन से फल है जो पानी में उगाई जाती है और ठंड के मौसम में मिलती है और खाने में भी बड़ा ही मजेदार होता है, ऊपर से ग्रीन अंदर से व्हाइट। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप आसानी से सोच पाएंगे और मैसेज कर पाएंगे। नंबर है 9823789896 पर कि ऐसे कौन से फल है जिसको पानी में उगाई जाती है। देखिए, जल है तो कल है, और जब जल ही नहीं रहेगा तो कल कहाँ से होएगा। और अगर मैं बात करूँ पानी की, तो देखिए हम पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा करते हैं। घर साफ करते तो पाइप ऐसे ही चला देंगे, टैब ऐसे खोल कर छोड़ देते हैं, बस पानी बहता रहता है। सोचिए जिस पानी को हम इतनी आसानी से बहा रहे हैं, वही कहीं कहीं पर एक बूंद के लिए ना तरस जाते हैं कि आखिरकार बस एक साफ हमें पानी मिल जाए पीने के लिए। तो बस पानी को बचाइए, तभी हमारा कल बचेगा। अगर आप पानी को नहीं बचाएंगे तो कल कैसे बचेगा, इसीलिए पानी भी सेफ, पानी को भी सेफ रखना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा पानी वेस्ट ना करें। अगर आपको दिखता है कि टैब खुला हुआ है तो उसको बंद कर दीजिए। और घर की सफाई के लिए देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप पाइप चलाकर ही छोड़ दें, बस पानी बहता रहे, वो भी पानी नाले में ही जाता है ना, इसीलिए पानी का जितना हो सके अच्छे काम के लिए के साथ साथ उसको टैब को बंद भी करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एक और गाना और उसके बाद फिर कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ और बताऊंगी कि आखिरकार 13 सितंबर से क्या शुरू होने जा रहा है। फिलहाल तो आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आज का कड़क सवाल भी बहुत ही आसान मैंने आपसे पूछा है कि ऐसी कौन सी फल है जो पानी में उगाई जाती है। सोचिए और मैसेज करिए।
6: दोवें देखे ने

0: ਫੈਨ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਤੱਕ ਪਾ ਗਿਆ।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में

हाय हाय, क्या बात है जी। बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है आरजे रीना के साथ। अब कनेक्टेड श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 6:00 यानी कि 42 मिनट हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। बिल्कुल जी। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आप सभी को बताया ही था कि 13 तारीख से यानी कि 13 सितंबर से क्या होने वाला है, चलिए मैं बताती हूँ आपको 13 सितंबर से हकीकार क्या होने वाला है। देखिए आप अगर मैन हर भैया हर मैच देखना हर किसी को पसंद है ना, तो 13 सितंबर से शुरू होने जा रहा है भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 मैच। तो 13 सितंबर याद रखिएगा, क्योंकि कल का दिन है, क्योंकि कल है 12 तारीख और संडे को है यानी कि 13 सितंबर। तो 13 सितंबर को यानी कि T20 मैच भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला है और

साथ ही साथ एक और बहुत ही प्यारा भैया जो खबर है, यानी कि रूस के जो राष्ट्रपति है ना, उन्होंने भगवत गीता, जो भगवत गीता है, भगवत गीता का जो किताब है, उसको बड़े चाव से पढ़ी उन्होंने। यानी कि रूस और भारत की जो दोस्ती है फिर से कनेक्ट हो गई है, क्योंकि उनको तोहफे में भगवत गीता मिला और उन्होंने उसको अच्छे से अब रीड कर रहे, पढ़ रहे हैं। तो देखिए, भगवत गीता पढ़ना बहुत अच्छी है। अगर आपको कभी लगता है कि आपका मन विचलित हो रहा है, फिर या मन अशांत हो रहा है आपका, और बार बार आपको बेचैनी फील होती है, ओवर थिंकिंग होती है, तो एक बार भगवत गीता पढ़कर देखिए। जितने भी मन में आपके ओवर थिंकिंग चल रही होती है ना, वो सारे कैसे छू मंतर हो जाएंगे ना, आपको भी नहीं पता चलेगा। इतनी पावरफुल होती है भगवत गीता। और साथ ही साथ आज जो मैंने आप सभी से कड़क सवाल भी पूछा है ना, बहुत ही आसान वाला, बस आपने थोड़ा सा सोचना था भैया और हमें आंसर पहुंचाना था हमारे पास। क्योंकि आज मैंने आप सभी से पूछा है कि पानी में उगने वाला फल का नाम बताना है आपने। एक ऐसी कौन सी फल है जो भैया ठंड में बहुत ज्यादा मिलती है और नवरात्रों में खासकर, और साथ ही साथ करवा चौथ वाले फास्ट वाले दिन ना, उस वो पूजा बहुत ज्यादा है। तो आपने हमें मैसेज करके बताना है, और ऊपर से वो ग्रीन होती है, अंदर से व्हाइट होती है, और खाने में बड़ा ही मजेदार लगता है। तो बताइए जल्दी जल्दी, क्योंकि एक मौका तो आपको और मिलना चाहिए ना सोचने के लिए। सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल एक और गाना सुनते हैं और उसके बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट होती हूँ, क्योंकि शाम होते ही हर कोई एक ही बात कहता है।

0: मुश्किल है आए, क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया।
1: दावत इश्क है,
2: हर किस्मत से मिलती है शिरकत, दावत इश्क है।
0: हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, किस्मत से मिलती है दावत इश्क है। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है श्रोता और आप सुन रहे हैं इवनिंग मस्ती शो। समय की बात करूं तो 6:58 हो चुके हैं, यानी कि 7 बजने में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट की देरी है। चलिए अब देखना ये है, मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछा है आज की शाम कि आखिरकार पानी में उगने वाले फल का नाम बताना है आपने, यानी कि ऐसे कौन से फल है जो पानी में उगाए जाती है और ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा खाया भी जाता है उसको, ऊपर से वो ठंडी होती है और हाय हाय हाय बड़े मजे के साथ बड़े चाव के साथ उसको खाती हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये है कि हमारे पास किनका राइट आंसर आता है और कौन बनते हैं इस शो के विनर। चलिए देखते हैं। विक्की सागर जी आज राइट आंसर के साथ कनेक्ट हो गए हैं। भैया इनका कहने की सिंघाड़े होते हैं मैडम, जो ठंड के मौसम में मिलते हैं और पानी में उगाई जाती है। ओके अगली मिसेस की बात करूं तो रीना जी गुड इवनिंग, क्या हाल है आपके, बहुत अच्छे हैं जी, लेकिन आप गलत आंसर के साथ कनेक्ट होती हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होती हैं संजू जी, और इनका कहना है कि राइट आंसर होता है सिंघाड़ा। ओके अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होती हैं। गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप, बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं, आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बेहद पसंद आ रहा है और जो गाने होते हैं ना बड़े ही जबरदस्त वाले चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके जी, और मैं आपको बता दूं हमारे साथ कौन कनेक्ट होते हैं, यानी कि मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, सैयद शारिक अली जी, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी, यानी कि राइट आंसर के साथ ये कनेक्ट होते हैं। इनका कहना है कि सिंघाड़े है। ओहो ललिता जी आपने तो सुनकर हमें आंसर करा है नारियल, पहले तो इन्होंने नारियल बताया था। हेलो रीना मैम, गज वाली इवनिंग है, इवनिंग मस्ती शो में आप कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं, और आज हमने आपका शो नहीं सुन पाए क्योंकि कोई बात नहीं जी, घर का भी काम होता है, फिर सुनिएगा आप क्योंकि घर के काम भी इम्पोर्टेंट होते हैं, और अभी अभी हमने रेडियो ऑन किया है। ओके चलिए फाइनली सुन का आंसर दिया, लेकिन दिया तो सही इन्होंने कि सिंघाड़े होते, फिलहाल नारियल भी बता दिया था इन्होंने, नारियल के अंदर पानी होता है ना, नारियल पानी पीना भी चाहिए। दीपक जी भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होते हैं हमारे साथ, और वर्षा जी का मैसेज आता है कि मैडम सिंघाड़े हैं, जो कि बेहद मुझे सच बताऊं तो बहुत ज्यादा पसंद है और ये खाने में भी बड़ा ही अच्छा लगता है, मजा आ जाता है। चलिए जी बहुत अच्छी बात है कि आपको खाने में मजा आ जाता है और खाने भी चाहिए क्योंकि ये पानी में उगाई जाती है ना, तो इसलिए पानी की भी पूर्ति आपके अंदर हो जाती है। और बहुत से ठंड में ना भैया ये कहते हैं कि हमें प्यास नहीं लगती है, लेकिन देखिए गर्मी हो या ठंड पानी पीना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी फिलहाल ठंड शुरू नहीं हुई है तो पानी जरूर पीजिएगा। बहुत से सोचते हैं कि नहीं यार थोड़ी सी ठंड लगने लगी तो पानी नहीं पीते, क्योंकि पानी पीना बहुत जरूरी हो चाहे ठंड हो या गर्मी। और इसी के साथ मिले तो यहाँ से क्या अरे फुर होने की इजाजत, हम आपको मिलने वाले हैं कल, यानी कि मिलने वाले हैं मॉर्निंग मसाला शो में, करेंगे ढेर सारी बातें, तब अभी के लिए बाय बाय।
3: जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई, यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है। उन्होंने मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया और स्केल फॉर द वर्ल्ड का आह्वान किया। इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस समय प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच वार्ता हो रही है। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 2-3 दिन तक बादल छाए रहने और वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
7: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
6: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
7: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लखनऊ की मक्खन मलाई और चाट।
1: नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां बात होती है विकास की, विरासत की और उस स्वाद की जो दिल में उतर जाए।
0: और आज हम पहुँचे हैं बाबू की शहर, तहजीब की शहर यानी लखनऊ में, जहाँ पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज है।
1: अब यही लखनऊ अपने शानदार स्वादों की वजह से भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को सिर्फ नवाबी शहर नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी के रूप में भी पहचाने।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ की सर्दियों की सबसे नाजुक मिठास, मक्खन मलाई की।
1: वाह, नाम सुनते ही जैसे मुंह में मिठास घुल गई। मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग निमिष भी कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि मुंह में रखते ही पल भर में घुल जाती है, जैसे ठंडी सुबह धूप की पहली किरण, बिल्कुल वैसा एहसास।
2: ये सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें।
3: हमारा नाम पप्पू जी है।
2: पप्पू जी, पप्पू जी आपका ये प्रतिष्ठान कब से है?
3: 40-45 साल हो गया।
2: खासियत क्या है, क्योंकि भीड़ काफी कुछ का बहुत देखने।
3: हम लोगों का यहाँ छोला समोसा मिलता है और यहाँ से व्यवहार भी बहुत अच्छा, हम लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं सबसे।
2: जी जी, उसकी खासियत क्या चीज है?
3: हमारे यहाँ लहसुन पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारे यहाँ।
2: मैंने सुना है लहसुन
3: हर प्लेट में पड़ता है।
2: तो उससे क्या स्वाद में?
3: स्वाद आप खाएंगे खुद जान जाएंगे, खा के देखिए।
2: बिल्कुल, ये भीड़ तो मुझे बता ही रही है कि उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत है, तभी इतनी ज्यादा भीड़ आपके यहाँ हमेशा बनी हुई। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी जी, उनके एक प्रोजेक्ट के तहत एक जनपद एक व्यंजन हम यहाँ पे आपको चुने हैं। ये लहसुन वाला छोला आपका काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम आए और आपसे खास वार्ता हो रही है। तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: बहुत धन्यवाद है, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं, उनका क्या पूछा जाए।
2: हमारे शहर के राजा हैं,
3: हमारे शहर का क्या, हमारे पूरे देश के राजा हैं वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उन्हें महाराज हैं।
4: धन्यवाद योगी जी।
0: और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लखनऊ की पुरानी नवाबी परंपरा का भी हिस्सा है। कहा जाता है कि पुराने समय में नवाबों की रसोई में भी इसे बड़े अंदाज में तैयार किया जाता था,
1: और इसे बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं। सबसे पहले ताजे दूध को घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, फिर उसमें मलाई तैयार की जाती है।
0: उसके बाद असली जादू शुरू होता है। पूरी रात उस दूध को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि सर्दियों की ओस और ठंडी हवा उसकी मिठास में घुल जाए।
1: यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि मौसम और मेहनत का अनोखा संगम है।
0: बिल्कुल, और सुबह सुबह जब हलवाई उस दूध को बड़े प्यार से फेंटता है, तो धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के झाग बनने लगते हैं।
1: उसमें डाली जाती है केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और ऊपर से पिस्ता बादाम की हल्की सजावट। उफ, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाए।
0: और खास बात ये भी है कि मक्खन मलाई सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, क्योंकि इसकी असली पहचान ही ठंडी हवा और ओस से जुड़ी हुई है।
1: इसलिए लखनऊ में लोग सुबह सुबह दूर दूर से इसे खाने निकल पड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आपने सर्दियों में चौक की मक्खन मलाई नहीं खाई तो समझिए लखनऊ को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया।
0: और चौक, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ की गलियों में सुबह के वक्त बड़े पीतल के बर्तनों में सजी मक्खन मलाई का नजारा अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है।
1: लखनऊ के चौक इलाके में मक्खन मलाई कॉर्नर पर सर्दियों में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई कुल्हड़ में खा रहा होता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है।
0: यानी पारंपरिक स्वाद अब नई पीढ़ी को भी खूब पसंद आ रहा है।
1: और अब ODOC योजना के जरिए इस मिठाई को नई ब्रांडिंग और पहचान मिल रही है, जिससे छोटे दुकानदारों को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ लखनऊ के पारंपरिक स्वादों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हलवाइयों, चाट विक्रेताओं, छोटे उद्यमियों और

0: कारीगरों को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है।
1: बिल्कुल, सरकार इन पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक व्यावसायिक तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
0: भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी दिलाया जा सकता है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।
1: स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
0: सरकार की कोशिश है कि छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यंजन बनाने वाले कारीगरों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले, जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच सके।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, किटन आयोजनों और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रचार प्रसार का अवसर दिया जा रहा है।
0: यानी ODOC योजना स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान देने के साथ साथ हजारों परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम कर रही है।
1: और यही वजह है कि लखनऊ की मक्खन मलाई, चाट और रेवड़ी जैसी पारंपरिक स्वाद अब नए बाजारों और नए ग्राहकों तक भी पहुंच रहे हैं।
0: अब चलिए लखनऊ की गलियों में, जहां चाट की खुशबू देर से लोगों को अपनी ओर खींच रही है।
1: अरे भाई, लखनऊ की चाट मतलब स्वाद का धमाका। खस्ता, आलू टिक्की, मटर चाट, दही बड़े, हर चीज में नवाबी अंदाज।
0: और सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की चाट सिर्फ तीखी या मसालेदार नहीं होती, बल्कि उसके स्वाद में एक संतुलन होता है। खट्टापन, मिठास, मसाले और कुरकुरापन, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में।
1: सही कहा, यहाँ की चाट वाले खाने सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हर प्लेट को बड़े प्यार और कला से सजाते हैं।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: हेलो जी, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और आज का जो ये सेशन आप सुनने वाले हैं, एक खास बातचीत, बेहद ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। आपको पता है ना, जब भी हम स्टूडेंट के साथ बात करते हैं, स्पेशली उनके करियर को लेकर, तो बहुत सारे स्टूडेंट बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। 12 के बाद स्पेशली बच्चे बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार 12 तो कर लिया, लेकिन अब आगे क्या करें। स्पेशली पेरेंट्स बहुत ज्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, बिकॉज उनको भी नहीं समझ में आता कि बच्चों के लिए क्या बेस्ट होगा और क्या नहीं। इन सभी पर बात करने के लिए मैंने सोचा अपने वीडियो भी कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लेडी को इनवाइट किया है अपने शो में। आज हमारे साथ कौन कहां से जुड़ी है, जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो आपको भी ना थोड़ा सा ऐसे लगेगा, ओ माय गॉड, सच में इतनी दूर से आप लेकर आए हैं हमारे करियर को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कि हम क्या चुने क्या ना चुने। यस ऑफकोर्स, ये हमने सोचा, आप एफएम मुरादाबाद सुन रहे हो तो मुरादाबाद पे कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और आज इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कौन है, आइए जरा बात करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू डूइंग, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद।
1: थैंक यू सो मच आरजे आनंद, मुझे इनवाइट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। बहुत खुश हूँ आपके साथ ये मंच शेयर कर पा रही हूँ टू डिस्कस विद द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और लिसनर्स के साथ।
0: मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, और बहुत कम मौका मिलता है हमें कि जब हम मतलब ऐसे लोगों से भी कनेक्ट होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को छू मंतर करते हैं, और उन्हीं एक आप हैं।
1: बहुत अच्छा लग रहा है कनेक्ट करके, एंड आज जो टॉक शो होने वाला है इसको आगे जाने के।
0: मैं चाहूंगा थोड़ा सा आपका परिचय हो जाए हमारे मुरादाबादीज आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक है, एक्साइटेड है, सो प्लीज टेल अस अपने बारे में थोड़ा सा क्विकली बता दें आप।
1: ओके, आई एम कृति मोहित वोरा, मैं करियर काउंसलर हूँ बाय प्रोफेशन, एंड मैंने स्टडीज की भी है यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी से फॉर सोशल एंड इमोशनल लर्निंग स्किल्स, एंड सर्टिफिकेशन कोर्स किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एनईपीएससी की तरफ से, फॉर करियर एंड एजुकेशन काउंसलर। एंड करेंटली मैं एक एकेडमिक पोजिशन होल्ड कर रही हूँ एक कंपनी में, and I do take personality development classes out.
0: That's very nice, ma'am. Beautiful. And but right now, where are you? ये तो हमारे listeners को पता चलना चाहिए, आप किधर हैं अभी?
1: मैं अमची मुंबई से हूँ।
0: Oh my God, मुंबई से। अच्छा, तो मतलब वो उसे मुंबई में उसे बोलते हैं, तो मैं कशिक आई।
1: Yes, yes.
0: मुंबई की थोड़ी थोड़ी भाषा हमने भी, तो सोचो गाइस मुरादाबाद में सीधा मुंबई वाली फील आपको दे रहे हैं कृतिका मैम। सो मैम थैंक यू सो मच, इतना इम्पोर्टेंट टाइम आपने शेयर किया। और मैम आपको पता है ना, जैसे ही 12th हो जाता है बच्चों का, पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही बड़े टेंशन में चले जाते हैं। उनको ये लगता है, पता नहीं यार 12th तो जैसे तैसे कर लिया बच्चे ने, अब आगे क्या कराएं, ये बड़ी कन्फ्यूजन है स्पेशली हम भारतीयों में।
1: यस एग्जैक्टली, मैं समझ सकती हूँ। एक्चुअली ये कन्फ्यूजन होना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल ऑप्शन भी इतने सारे हैं। पहले तो स्टैंडर्ड ऑप्शन थे, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो तो वो साइंस में जाएगा, एवरेज हो तो कॉमर्स जाएगा,
0: एब्सोल्युटली
1: नहीं हो तो ह्यूमैनिटीज में।
0: राइट,
1: आजकल की एरा में बहुत सारे ऑप्शन है, इंजीनियरिंग, डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस,
0: करेक्ट।
1: तो अगर वो बच्चा करियर काउंसलिंग लेता है तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस मिलता है और एक गाइडेंस मिलती है कि आगे क्या कर सकता है, रादर देन सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने से कंफ्यूजन बढ़ता है।
0: एब्सोल्युटली कृति मैम, आपने बहुत अच्छे से इसको बताया, एंड आई थिंक मुझे भी यही चीज लगती है। और आजकल इतने सारे ऑप्शन आने के बाद भी लोगों में बहुत सारी कन्फ्यूजन है कहीं ना कहीं। सो वेल, इस विषय में हम डेफिनेटली आपसे टॉक करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा, व्हाट एग्जैक्टली इज करियर काउंसलिंग, क्या है ये, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को कि आखिर करियर काउंसलिंग है क्या, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इस विषय में।
1: बेसिकली ये गाइडेड प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं, बच्चे को समझते हैं, उसका इंटरेस्ट, एबिलिटीज, उसकी पर्सनालिटी, स्किल्स क्या क्या है, और उस हिसाब से उसको एक राइट दिशा दिखाते हैं जहाँ पे वो अपना करियर चूज कर सकता है।
0: करेक्ट, ओके। वही ना, एक्चुअली जिस फॉर्मेट पे हम बात कर रहे हैं, जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, ये आज के समय में ना बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है। हालांकि डिजिटल टाइम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सारी चीजें अवेलेबल है, बट अंदर की जो चीजें होती है ना, करेक्ट, वो चीजें लोगों को समझ नहीं आ रही होती है कहीं पर।
1: वो बात है, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन है बट वो उनके लिए कितना सूटेबल है, एक्यूरेट है, वो अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, वो कंफ्यूजन अभी भी होता है।
0: एग्जैक्टली मैम, एक और क्वेश्चन जो मेरे जहन में अक्सर आता रहता है कि व्हाई इज करियर काउंसलिंग बिकम सो इम्पोर्टेंट टुडे, बिकॉज मुझे लगता है कि आज के समय में करियर काउंसलिंग इतनी जरूरी क्यों हो गई है, तो ये जानना तो डेफिनेटली बनता है, वो भी जब आप मेरे साथ हैं तो।
1: यस आरजे आनंद, मैं समझती हूँ, जैसे मैं आपको बता रही थी कि पहले के जमाने में मैक्सिमम क्या ऑप्शन आते थे, हाथ में गिनने लायक उतने ही ऑप्शन,
0: करेक्ट,
1: इंजीनियरिंग, डॉक्टर, टीचर या कोई सरकारी नौकरी कर लो,
0: राइट,
1: से ज्यादा तो कोई ऑप्शंस किसी के मन में आते ही नहीं थे। बट अभी के कॉम्बिनेशन एंड जो चूज कर सकते हो. जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक एग्जाम्पल मैं बोलूँ, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस विद बायोलॉजी. तो अगर बच्चे को बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट है बट टेक्नोलॉजी भी उसका समथिंग पैशनेट है वो, तो ये दो कंबाइन

0: अच्छा मैम, जो स्टूडेंट हैं वो करियर चुनते समय सबसे बड़ी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको लगता है कि अफकोर्स करते ही करते हैं, और क्या गलतियां हैं जो हो ही जाती हैं अक्सर स्टूडेंट से?
1: पांच मेजर गलतियां मैं बताना चाहूंगी एक्चुअली, जो मेजरली बच्चे करते हैं। एक तो जो दोस्तों ने चूज किया है वो करियर ही हमारा करियर होता है, डिसाइड कर लेते हैं।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: दूसरा होता है पापा ने बोला मेरे को इंजीनियर बनना चाहिए, मम्मी ने बोला मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, सो लेट्स डू इट।
0: मैं
1: बनना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ अपने आप को हम पूछते ही नहीं है।
0: करेक्ट। हमारी क्या खुद की इच्छाएं हैं?
1: यस। फिर दूसरा रहता है द ग्लैमर साइड या पैसा जिसमें ज्यादा है, मैं वो बनना चाहता हूँ। बट तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटीज है नहीं है, पॉसिबिलिटी है तुम्हारे जगह में जॉब मिल पाएगी, पॉसिबिलिटी है कि नहीं उसका करियर कितना अच्छा जाएगा वो डोमेन में, ये सब नहीं ध्यान रखते हैं। एंड फोर्थ, जैसे मैं बता रही थी, सबका इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ हमेशा देखना चाहिए, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू वर्क रियली वेल। एंड देन चूजिंग द करियर बेस्ड ऑन प्रॉपर रिसर्च इज समथिंग दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियर होना चाहते हो एंड मुरादाबाद में ही रहना चाहते हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो उधर तो कोई माइंड ही नहीं है पेट्रोलियम के लिए। जैसे नांतल आप मुरादाबाद छोड़ के जाना चाहते हो, कहीं अब्रॉड वर्क करना चाहते हो या कोई माइनिंग में वर्क करना चाहते हो, देन ओनली उसका कोई फायदा होगा आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पढ़ने का भी।
0: ओके।
1: तो दीज आर द मेजर फाइव थिंग्स मैं आपको बोल सकती हूँ। एक फ्रेंड्स की तरफ से स्ट्रीम्स चूज मत कीजिएगा पेरेंटल प्रेशर या सोसाइटी के प्रेशर से। दूसरा, ट्रेंड या पैसा देख के अपनी इंटरेस्ट अपनी स्ट्रेंथ को इग्नोर करके और प्रॉपर एडमिशन ना लेके रिसर्च करने के अलावा।
0: वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया एंड आई एम श्योर जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुत ही बारीकी से आप चीजों को एक्सप्लेन कर रही हैं। थैंक यू सो मच। एंड एक क्वेश्चन जो मेरे नहीं हर किसी के जहन में होता है कि जो करियर काउंसलिंग है वो किस उम्र में या किस स्टेज में एक्चुअली शुरू होनी चाहिए, आपको मैम क्या लगता है?
1: जो आइडियल एज बोलते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, वो ग्रेड 8 to 10 होता है।
0: ऑलराइट।
1: ऐसा नहीं है अगर अभी मेरा कोई लिसनर अभी कि 11th ग्रेड का है, इट्स नॉट द राइट टाइम, इसका टाइम चला गया है, नहीं। बट आइडियल जो बोलते हैं वो क्लास 8 to 10th ग्रेडर्स के लिए होता है। बट ये यू कैन इवन टेक करियर काउंसलिंग एट दी ग्रेड 11 और व्हेन यू आर वर्किंग, या आप कॉलेज में एक्चुअली एडमिशन ले चुके हो बट फिर कंफ्यूज हो, तो देर इज नो इश्यूज, नहीं ले सकते। बट आइडियल इज ग्रेड 8 to 9।
0: 100%। बहुत ही बढ़िया कॉटन मैम। एक्चुअली मुझे भी लगता है मैम, जो आपने बहुत अच्छे से जो चीजें डिफाइन करी, जो आपने एक्सप्लेन किया, ये बहुत अच्छा एक तरीका और लोगों को समझ में भी आ रहा है। आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे हैं गाइस, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज करियर काउंसलिंग पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैम के साथ, और बहुत जरूरी है। अभी जिन बच्चों ने 12th किया है, हमने सोचा उनके लिए जो कन्फ्यूजन वाला ये सेशन हो जाता है ना 12th के बाद, कि कहां जाए, कौन सी स्ट्रीम ले, किस में जाए, किस में करियर बनाए, बहुत सारी यू नो स्पेशली करियर को लेकर ही मैम, स्टडी को लेकर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
1: आई अंडरस्टैंड, ये कंफ्यूजन जो वो एज में रहता है वो बहुत ज्यादा ही रहता है, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग मच क्लैरिटी, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या, आप नहीं समझ पाते हो, बहुत कंफ्यूजन रहता है।
0: करेक्ट। अच्छा कृतिका मैम, एक क्वेश्चन जो मुझे आई एक्चुअली लग रहा है कि आपसे पूछना चाहिए, जो करियर काउंसलिंग है, क्या सच में वो जो कमजोर बच्चे होते हैं, जो कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा चीजों को लेके, जो सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पाते हैं, क्या उन्हीं के लिए है या फिर सबके लिए है करियर काउंसलिंग, क्या लगता है आपको मैम?
1: बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है कोई बच्चा जो वीक है या टॉपर है उनके लिए ही होता है। ये करियर काउंसलिंग हर एक बच्चे के लिए है जिसको यू नो राइट डायरेक्शन चाहिए, अपनी पर्पस एबिलिटी समझ के एक करियर चूज करना है, सो दैट यू नो हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट दोनों मिल पाए। करियर इज चॉइस ऑफ लाइफ बेसिकली, जिस हिसाब से मैं हमेशा बोलती हूँ, इट इज नॉट यू नो सिर्फ वीक बच्चा अपना चॉइस बनाता है कि यू नो टॉपर बनाता है, सबको अपनी लाइफ चॉइस करना होता है।
0: एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। कृतिका मैम, दिस इज माई पर्सनल क्वेश्चन, आई वांट टू आस्क यू, दिस इज वेरी वेरी यू नो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई डोंट नो, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है क्योंकि मैं पहली बार किसी करियर काउंसलर से कनेक्ट कर रहा हूँ अपने स्टेशन के थ्रू, एंड आई एम वेरी ग्लैड आई एम हियर विद यू, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल कॉन्वर्सेशन विद यू मैम। थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो आपका इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने शेयर किया हमारे स्टेशन पे हमारे लिसनर्स के लिए, सो थैंक यू वेरी मच। बाय द वे,
1: आई एम टोटली हैप्पी टू बी हियर एंड डिस्कस, बिकॉज ये मेरा बड़ा पैशन है टू गाइड यंग एडल्ट, यू नो।
0: सो यू नो, थैंक यू वेरी मच मैम, माय प्लेजर मैम। दिस इज माय क्वेश्चन कि क्या करियर

0: काउंसलिंग सेशन बेसिकली जो होती है वो किस चीज के लिए, हालांकि इसमें करियर ऑप्शन जब ये दे दिया गया है करियर काउंसलिंग, सो आई नो वेरी वेल, बट मुझे अंदर की चीजें जाननी है, इसमें किस चीज के बारे में बात होती है, कैसे जो काउंसलर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या चीज करते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जानना है कि बेसिकली करियर काउंसलिंग सेशन में होता क्या है।
1: ओके, तो मैं आपको बता दूंगी, अगेन ये भी एक 5 पॉइंट्स डिस्कस कर लूंगी। पहले हम स्टूडेंट को समझते हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके गोल्स क्या है,
0: उसकी
1: हॉबीज क्या है। देन सेकेंडली उसका एकेडमिक बैकग्राउंड,
0: ओके,
1: पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, नहीं है, एवरेज है, ट्यूशन क्लासेस का जाना आना बंद है, नहीं, सो ऑल दिस एकेडमिकली वी अंडरस्टैंड द स्टूडेंट। नेक्स्ट एक्सप्लोर करते हैं उसके साथ करियर ऑप्शन, एंड देन वी ऑल्सो कंडक्ट अ साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसमें यू नो थ्रू दैट रिपोर्ट मैं समझ पाती हूँ उनका इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, वीकनेसेस सब जान पाते हैं, एंड देन लास्टली वी क्रिएट द करियर रोड मैप।
0: ऑल राइट, अभी मेरा क्वेश्चन भी यही होने वाला था कि व्हाट इज द रोल ऑफ साइकोमेट्रिक्स, इसी पर हम लोग अभी बात करने वाले थे।
1: यस यस, तो साइकोमेट्रिक बेसिकली एक साइंटिफिक टूल है जिससे हम बच्चे को समझ पाते हैं।
0: ऑल राइट,
1: जैसे ईसीजी होता है जिससे हार्ट का पता पड़ता है, द सेम वे एक करियर काउंसलर एक टूल यूज करता है टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी एंड स्किल्स। तो ये बहुत डेटा बेस्ड है एंड इट इज रिसर्च बैक, साइंटिफिकली बैक टूल है, विच इज नॉट रैंडम गेस्ट वर्क के हिसाब से, नहीं मैं बताती हूँ कि ये चूज कर लो, ये कर सकते हो, नहीं, इट्स ऑल साइंटिफिकली बैक।
0: ऑल राइट मैम, जेन्युइनली आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। अगला मेरा क्वेश्चन, इनफैक्ट ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये पब्लिक के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें डेली पूछते रहते हैं हमारे लिसनर्स, रेडियो के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टिविटी बनती रहती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमें क्वेश्चन करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स सबसे ज्यादा। वैसे मैम अगर मैं बात करूँ करियर चूज करने में पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है, कितना इंपॉर्टेंट होता है उनका रोल, स्पेशली पेरेंट्स का?
1: पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे के भविष्य प्लान करने के लिए, रादर दैन एक पेरेंट को हमेशा अपनी ड्रीम्स इम्पोज नहीं करनी चाहिए, लाइक मैं चाहती हूँ आप इंजीनियर बनो, मैं चाहती हूँ आप डॉक्टर बनो, ये नहीं होता है। इनफैक्ट बच्चे का इंटरेस्ट समझना, उसकी एबिलिटी समझ के उसको सपोर्ट करना, एनकरेज करना, ओपन कॉन्वर्सेशन करना बच्चे के साथ, ओपनली डिस्कस करना कि ये करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, क्या सोचा गया था, कैसे आपने ये मन में आया, वेरी ओपन डिस्कशन विद द स्टूडेंट, सो दैट यू नो वो भी बहुत कॉन्फिडेंट लगेगा। इट इज कम क्लैरिटी टू कंफ्यूजन टू क्लैरिटी बेसिकली।
0: या That's very nice, ma'am. That's very nice. Kritika ma'am, Kriti ma'am, मेरा जो question एक और है कि student भविष्य में जो उनके career को लेके वो खुद को मतलब कैसे prepare करें, कैसे खुद को तैयार करें ताकि जो भी challenges है, जो भी competition का time है उसमें वो खुद को आगे लेकर जा सकें, खुद को confident feel कराएं। होते हैं ना student करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कभी कभी वो unconfident हो जाते हैं, unconscious हो जाते हैं, जिसकी वजह से आधी चीजें उनकी automatically पीछे हो जाती हैं।
1: मैं कुछ 4 पॉइंटर्स बताऊंगी जो नॉर्मली एक बच्चा कर सकता है अपना एकेडमिक प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए बेसिकली। फर्स्ट है जो 21st सेंचुरी स्किल जो बिल्ड करने को बोलते हैं, दो सारी 4 C's इन एजुकेशन, 1 इज क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी।
0: ऑलराइट,
1: अगर ये 4 स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो अपने में बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज जितना हो सके प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए जाओ, समर कैंप, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, जितना भी करेक्ट कर सकते हो विद इन योर लोकेलिटी या बाहर कॉलेजेस में, दैट इज समथिंग दैट आई वुड हाईली रेकमेंड।
0: दैट्स वेरी नाइस।
1: थर्ड थिंग इज टू रीड बुक्स, टू हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ योरसेल्फ, कनेक्ट विद द मेंटर।
0: एब्सोल्युटली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: अगर आप कोई कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर योर ग्रेजुएशन, तो उधर के पास स्टूडेंट, करेंट स्टूडेंट से समझो कैसा है एनवायरमेंट, ऐसा ही आप कॉलेज जा रहे हो, क्या मेंटर्स सिखाते हैं, तो कनेक्ट विद दोस लाइक माइंडेड पीपल। नेक्स्ट इज यू नो टू बी अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी, एंड लास्टली विच इज क्वाइट एसेंशियल, करियर के लिए भी, पर्सनली भी, कॉन्फिडेंस एंड टाइम मैनेजमेंट।
0: एब्सोल्युटली 100% सही बोला आपने मैम। आजकल ना मोबाइल का बहुत ज्यादा आपको भी पता है क्रेज बढ़ गया है। आजकल के यंगस्टर जेंजी सभी लोग मोबाइल में, पेरेंट्स भी सबसे ज्यादा यूज करते हैं नो डाउट। तो ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया है, मोबाइल की दुनिया, इसमें लोग बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे सर्च करते हैं, गूगल पे जाते हैं, आजकल चैट जीपीटी AI सब कुछ आ गया है। तो लोगों को लगता है यहाँ से भी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, जबकि मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली जब आप किसी करियर काउंसलर के पास जाते हो तो जो डायरेक्शन वहां से मिलती है वो आपको चैट जीपीटी या AI से नहीं मिल सकती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी?
1: उसमें इंफॉर्मेशन बहुत मिलता है, बट आपके लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो नहीं समझ में आता है।
0: करेक्ट।
1: इट्स वेरी वास्ट, एक फूल की तरह मैं बोल सकती हूँ या नदी की तरह इंफॉर्मेशन रहता है, बट उसको फिल्टर करके समझना कि आपके लिए क्या अप्लाई कर सकती हो क्या नहीं कर सकते। सो बिलीव इन योर सेल्फ, योर पैशन कैन बिकम योर स्ट्रेंथ लेटर ऑन।
0: एब्सोल्युटली मैम, थैंक यू सो मच, इतना टाइम आपने शेयर किया हमारे लिसनर्स के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रिविलेज टाइम, एंड आई एम सो हैप्पी आपने इतना टाइम निकाला और आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आपको मैम आई होप अच्छा लगा हो हमारे साथ, हमारे मुरादाबादी से बातचीत करके।
1: यस यस, बहुत अच्छा लगा, एंड आई वुड एंड विद अ स्मॉल कोट बेसिकली।
0: प्लीज मैम,
1: चूज अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ।
0: ऑलराइट मैम, एंड बाय द वे एक और एक लास्ट मैसेज, एक छोटा सा आपकी तरफ से कोई एक संदेश, व्हाट फाइनल वुड यू लाइक टू गिव स्टूडेंट एंड पेरेंट्स लिसनिंग टुडे?
1: पेरेंट्स के लिए यू नो सपोर्ट योर चिल्ड्रेन, समझो उनको जितना भी हो सके और भरोसा रखो उनकी जर्नी में भी, दैट इज क्वाइट एसेंशियल। एंड बच्चों के लिए यू नो बिलीव इन योर सेल्फ, योर पैशन कैन बिकम योर स्ट्रेंथ इज समथिंग दैट आई वांट टू ऐड ऑन टू।
0: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच मैम, लवली टॉकिंग टू यू, आई कांट बिलीव दिस, कितनी जल्दी से हमारा टाइम हो गया और हमें तो ऐसा लग रहा है कि अभी कितनी सी बात हुई, भी तो और करनी थी हमें आपसे बातचीत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनबिलीवेबल 20 मिनट होने को आ गए बट पता ही नहीं चला। मैंने इंटरव्यूज तो बहुत सारी किए लेकिन ये बड़ा डिफरेंट था।
1: थैंक यू सो मच, इट रियली मींस अ लॉट।
0: सीरियसली
1: आई विश ऑल माय लिसनर्स अ वेरी ग्रेट डे अहेड,
0: एंड थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर अखिल जी जिन्होंने आपसे हमें कोऑर्डिनेट कराया। आई एम सुपर ग्लैड बिकॉज बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ आप जब बात करते हो तो एक पॉजिटिविटी भी आती है और कुछ सीखने को भी मिलता है। आई एम श्योर बहुत सारे लिसनर्स को भी, बहुत सारे पेरेंट्स को भी नॉलेज मिलेगा, इनफैक्ट मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला है। सो थैंक यू मैम वंस अगेन। सो मैम जाते जाते हमारे मुरादाबादीज को आप कोई संदेश देना चाहें और साथ में कुछ कहना चाहें जो आपको लगता है कि छूट गया है, नहीं ये चीज भी मुझे बोलनी चाहिए आनंद?
1: तो करियर एक ऐसा है यू नो इट इज ऑल योर लाइफ चॉइस, तो एक अच्छा साउंड डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा, बिलीव इन योर सेल्फ, योर पैशन, एंड दैट विल वर्क यू एज अ स्ट्रेंथ। एंड पेरेंट्स के लिए जितना हो सके उनको सपोर्ट कीजिए, समझिए और उनकी जर्नी में साथ दीजिए, बहुत लंबा जाएंगे वो। एंड एट एनी टाइम किसी को भी करियर में कंफ्यूजन है, क्लैरिटी चाहिए, डिस्कस करना है, यू कैन रीच आउट टू मी, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मैं एक मैसेज या एक कॉल के थ्रू हमेशा अवेलेबल रहती हूँ, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। कभी भी आपको क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन है करियर में चूज करने के लिए, यू कैन रीच आउट टू मी, कॉल या मैसेज कुछ भी कर सकते हो। माय नंबर इज 9137406647।
0: थैंक यू सो मच मैम, बाय बाय मैम, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू मैम।
1: ग्रेट, थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: प्राथमिक विद्यालयों का संवरता स्वरूप, यूपी में शिक्षा का निखरता रूप।
6: ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर।
7: पीएम पोषण से पौष्टिक भोजन, तो स्मार्ट क्लास से मिल रही है आधुनिक शिक्षा की नई रोशनी।
6: शारदा कार्यक्रम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों विद्यालय से जुड़े, समर्थ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के द्वार खुले।
8: अब यूपी में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का आगे बढ़ने का सपना पूरा होता है।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी

0: ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में कहा, ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मुख्य मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के समन्वय से भारत मंडपम में 2 दिन की भारत नवाचार प्रदर्शनी का आयोजन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त दिल्ली अभियान को जनभागीदारी से मजबूत करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज ब्रिक्स बिजनेस फोरम के नेताओं के सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स की आर्थिक ताकत दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की

0: मोदी के नेतृत्व में भारत ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस सहयोग का लाभ ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के रीढ़ माने जाने वाले किसानों, महिला उद्यमियों, युवा उद्यमियों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के तक पहुंचे। श्री गोयल ने कहा कि सदस्य और साझेदार देशों के 2000 से अधिक कारोबारी नेताओं और प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है।
1: Merchandise exports from BRICS countries to the world.
2: ब्रिक्स देशों से दुनिया को होने वाला वस्तु निर्यात 2003 में करीब 900 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसके साथ ही वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी भी करीब 12% से बढ़कर अब लगभग 24% हो गई है।
0: 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित विश्व के नेताओं की मेजबानी करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। एक रिपोर्ट।
3: शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों की बैठक से होगा, जिसका विषय है वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ब्रिक्स के सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज होगा। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर दबाव से जटिलताएं और बढ़ रही हैं। इन परस्पर जुड़ी चुनौतियों के लिए समावेशी, व्यावहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप सहयोग की आवश्यकता है। भारत की अध्यक्षता विभिन्न सदस्यों के बीच आम सहमति बनाने के साथ साथ मौजूदा तंत्रों की प्रभावशीलता को मजबूत करने का प्रयास करती है। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
0: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने बताया है कि कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मुख्य मार्गों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में पुलिस ने लोगों को यात्रा की योजना पहले से बनाने, मेट्रो का इस्तेमाल करने, डायवर्जन वाले रास्तों और ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आपातकालीन और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को निकलने में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान 11 से 13 सितंबर तक आम जनता के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि कल राष्ट्रपति भवन प्रांगण में गार्ड परिवर्तन समारोह भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आ रहे सभी नेताओं, प्रतिनिधियों और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना राष्ट्रीय राजधानी के लिए सम्मान और गर्व का विषय है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हों, @AIRNewsHindi को फॉलो करें।
0: शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 2 दिन के भारत नवाचार प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य भारत के गहन तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल है, जो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण विषय से जुड़े हैं। ये आयोजन भाग लेने वाले नवोन्मेषकों को ब्रिक्स सदस्य देशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, निवेशकों, व्यापारिक नेताओं और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ मेलजोल का अवसर प्रदान कर रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज बताया कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएंगी। ये फैसला परीक्षा देने वाले छात्रों और लोगों की आवाजाही को आसान बनाने और समय पर पहुंचने

0: के लिए लिया गया है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए दिल्ली मेट्रो की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखें। उत्तर रेलवे ने आज से रविवार तक रेलगाड़ियों के संचालन में अस्थायी बदलाव की घोषणा की है। इनमें उपनगरीय कॉरिडोर और लंबी दूरी के रूट पर चलने वाली कई सेवाओं पर पड़ेगा। इन बदलावों में रेलगाड़ियों का रद्द होना, रूट बदलना, कम दूरी से शुरू होना, कम दूरी पर यात्रा खत्म होना, सेवाओं का नियमन, टर्मिनल बदलना और समय बदलना शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र, नई दिल्ली, गाजियाबाद, पलवल, शकुरबस्ती और दिल्ली जंक्शन जैसे प्रमुख स्टेशनों को जोड़ने वाली कई ईएमयू और मेमू सेवाओं पर इन बदलावों का असर पड़ेगा। यात्री नवीनतम जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियमों में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज बताया कि सरकार इस महीने की 17 तारीख से 100 दिनों का सेवा इंक्यूबेशन चैलेंज शुरू करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इसमें 100 बड़ी नागरिक केंद्रित समस्याओं के समाधान पर काम किया जाएगा।
1: इंक्यूबेशन पॉलिसी में 400 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स को ग्रूम करने के लिए दिए हैं। अगले आने वाले 4 साल में हम 1000 स्टार्टअप्स को मेंटर करके दिल्ली में आप जैसे युवाओं के लिए 4 लाख नए रोजगार दिल्ली में खड़े कर सके।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर यश डबास, उपाध्यक्ष पद के लिए ईशु मौर्य, सचिव पद पर रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्यराज सिंह को प्रत्याशी बनाया है। नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोनों में खतरनाक भवनों, अनधिकृत निर्माणों और मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली एमपीडी और भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी प्रवर्तन कार्रवाई तेज कर दी है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि एमपीडी और भवन उपनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अनधिकृत और खतरनाक निर्माणों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से सभी जोनों में ये जांच अभियान चलाया जा रहा है। निगम ने बताया कि आज चलाए गए गहन जांच अभियान के अंतर्गत निगम द्वारा सभी 12 जोनों में 25 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वहीं एमसीडी ने कल भी व्यापक कार्रवाई की थी, जिसके दौरान 41 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया और 61 अन्य संपत्तियों को मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली और भवन उपनियमों के उल्लंघन के कारण सील किया गया था। इस बीच दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आयोग को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त दिल्ली अभियान को जन भागीदारी से मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में इच्छुक गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों और निवासी कल्याण संघ को जोड़ा जाए ताकि स्थानीय स्तर पर बच्चों तक पहुंच बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयोग को राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान स्कूलों में मिड डे मील तैयार करने वाली रसोइयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार की व्यवस्था का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिला आयोग की बैठक में महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर कार्ययोजना तय की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यालयों में दुष्कर्म से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो जागरूकता अभियान को और व्यापक किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने बताया कि 13 से 14 वर्ष की बेटियों विशेषकर वंचित वर्गों की बालिकाओं तक निःशुल्क HPV टीकाकरण की जानकारी और पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि विश्वविद्यालयों में छात्राओं के लिए साइबर अपराध जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि घरेलू हिंसा, मानव तस्करी और दुष्कर्म से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आयोग शिकायतों का समाधान देने के साथ महिलाओं तक सक्रिय रूप से पहुंचे और नारी सशक्तिकरण के मिशन को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाने वाली मजबूत व्यवस्था बने। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दिल्ली पुलिस ने आज अवैध शराब तस्करी मामले में खजूरी खास क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 1050 क्वार्टर अवैध शराब और अपराध में इस्तेमाल होने वाले एक चार पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज बारिश होने के से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में कहा, ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मुख्य मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के समन्वय से भारत मंडपम में 2 दिन की भारत नवाचार प्रदर्शनी का आयोजन। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त दिल्ली अभियान को जनभागीदारी से मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
7: यार फ्राइडे की शाम आते आते ना सैटरडे वाली फील आने लगती है, और जैसे ही फ्राइडे वाली नाइट आती है ना, मेरा मन करता है कहीं हैंगआउट करने चला जाऊं, लेकिन कहां जाऊं, ये अखिल भाई पकड़ के इधर आपके पास लिया है। क्या करूं यार, सुबह से शाम ऐसा लगता है रेडियो ही है मेरा काम। हेलो अखिल जी, कैसे हैं आप? गुड
8: इवनिंग। मैं बहुत बढ़िया हूं आनंद जी, और आप कैसे हैं? नमस्कार साथियों, आज आनंद ने मेरा नाम लेके कह दिया कि मैंने उसे पकड़ लिया, मगर सच कहूं तो आनंद ही मुझे स्टूडियो में पकड़ के लिया।
7: वैसे सच बताऊं तो हमने एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पकड़ा है, तो इफ यू डोंट माइंड गाइस, सिर्फ हम यहां पर मस्ती मजाक करने चले आए हैं। फ्राइडे की शाम है, अच्छा दिन है, बढ़िया है, वाइब वीकेंड वाली है, और ऑफ कोर्स तुम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे हो और हम तुम्हारे साथ रेडियो के साथी बन के बैठे हैं।
8: बिल्कुल।
7: आज क्या तारीख है अखिल जी?
8: आज तारीख पे तारीख, तारीख पे
7: 11 तारीख है भैया। सनी देवल नहीं बनना था आपको यार, बाहर हो जाएंगे रेडियो से ज्यादा बोलेंगे तो। वेल दोस्तों, गुड इवनिंग, एंड आज जो है प्रोग्राम काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि रेडियो की दुनिया में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं आनंद और मेरे साथ हैं
8: अखिल।
7: बिल्कुल जी, जहां बातें होंगी फिल्मों की, किस्से होंगे सितारों के, और फैसले होगा और फैसला होगा हमारी जनता की अदालत का।
8: और आज हमारी अदालत में ना कोई जज होगा और ना ही वकील।
7: अच्छा,
8: बस हम और तुम आमने सामने होंगे और बॉलीवुड की पुरानी यादें और आने वाली फिल्मों की पूरी बातें खोल के रख देंगे ही।
7: ओके, क्या बात है अखिल भाई, आज तो आप पूरा किस्सा खोलने के मूड में बैठे हो हैं।
8: आज होगा पंचनामा, मूवी का पंचनामा आनंद और अखिल के साथ।
7: अरे वाह, क्या बात है। तो इस पंचनामे की जो पेशकश है वो अखिल जी जरूर देंगे आपको, लेकिन फिलहाल मैं दूंगा एक गाने की पेशकश। जब हम आते हैं तो अच्छे गाने भी लेकर आते हैं, तो कुछ गाने सुनते हैं धाकड़ वाले। रात हो रही है, बढ़िया वाला मौसम बना हुआ है बाहर का, और आप लॉन्ग ड्राइव पे हैं, मैं और अखिल जी अंदर बैठ के सिर्फ बात ही कर सकते हैं और कुछ है नहीं हमारे पास। तो फिलहाल अभी गाने सुनते हैं, फिर वापस आते हैं। क्यों अखिल जी?
8: बिल्कुल सही कहा।
7: चलिए, तो आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए।

0: भाई साहब, कुछ गाने जो सुने ना आपने और मैंने मिलके, मजेदार थे। ये अखिल भाई, पता नहीं क्या आप मोबाइल में स्क्रॉलिंग में लगे हुए थे, शायद ये हनुमान अंश की दुनिया से बाहर नहीं आ पा रहे। भैया एक अंश रेडियो का भी, इसमें भी ध्यान दो, इसमें भी ध्यान लगाओ।
1: कुछ भी कहो, वो मूवी जो है ना हनुमान अंश, आपको ना देखनी तो बनती है, एक बार तो देखनी बनती है भाई।
0: बिल्कुल, डेफिनेटली। और मूवी का पंचनामा करने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ। तो ये बताओ, आज कौन सी मूवी के बारे में बताने वाले हो हमारे श्रोताओं को? क्योंकि आज फोन कॉल्स तो आप लोगे नहीं, इसलिए मुझे ले आए हो। यार आनंद, आज फोन नहीं लेना, आज तो मैं थोड़ी सी तुम्हारे साथ गपशप करना चाहता हूँ। चलो भाई ठीक है। हाँ जी बताइए सर।
1: मैं पोस्टमार्टम करने से पहले आनंद तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा।
0: डेफिनेटली भैया,
1: एक बात बताओ कि आपकी जिंदगी में पहली फिल्म कौन सी थी जो थिएटर में देखी थी?
0: थिएटर में जो मैंने पहली मूवी देखी थी, ओके, एंड आई रिमेम्बर, मुझे याद है मैंने सन 2019 में देखी थी मूवी। अब वो मूवी अक्षय कुमार की थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत ही कमाल की मूवी, जो मैं देख के आया था, लेकिन उसका नाम नहीं पता, बट मूवी बहुत अच्छी थी यार।
1: मतलब आप जो है मूवी में, मतलब पहली मूवी में आपने ना समोसे पे ध्यान दिया, ना कोल्ड ड्रिंक पे ध्यान दिया, ठंडा ग्राम।
0: ना ना ना, अक्षय कुमार मेरा ऑल टाइम फेवरेट है यार, खिलाड़ी 786 जिसे हम कहते हैं तो उसकी मूवी देखने के लिए मैं सब भूल जाता हूँ। बाय द वे, तुमने ये बोला क्यों, पहली मूवी तुमने देखी क्यों?
1: क्योंकि मतलब अक्सर जो है ना पहली मूवी जो होती है ना लोगों को, मेरे को जहां तक लगता है याद नहीं रहती है।
0: पहला उन्हें प्यार नहीं बुलाया जाए तो समझ में आता है, पहली डेट नहीं बुलाई जाती समझ में आता है, पहली शादी की एनिवर्सरी भूल जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन ये मूवी की बात कहां से आई भाई, आई डोंट नो। हो सकता है कभी कभी होता है, जब हम कहीं कुछ नई चीज देखते हैं ना तो वो हमारे लिए एक मेमोरी बन जाती है लॉन्ग टर्म, राइट? तुमने कौन सी मूवी देखी थी वैसे अखिल भाई?
1: मैंने पहली बार जो थिएटर में देखी थी ना मूवी, वो मैंने देखी थी,
0: अभी तो कब बढ़ाएंगे भाई साहब, लग रहा है मेरे को ऐसा।
1: मतलब
0: देखी थी, बस
1: देखी थी गदर, मेरे को जहां तक याद है मैंने गदर देखी थी, और उससे पहले एक मूवी देखी थी,
0: मेरे टू ही देखी होगी आई थिंक।
1: नहीं,
0: वो वाली पहली वाली जिसमें नल उखाड़ देते हैं भाजी,
1: उससे पहले एक फिल्म देखी थी, मेरे को याद है सुनील शेट्टी की थी फिल्म, भाई मूवी देखी थी। और हाँ अभी याद आया मेरे को, एक मैंने मूवी देखी थी जयपुर में एक बहुत ही फेमस थिएटर है, और उसमें मैंने मूवी देखी थी किला, जो दिलीप साहब की मूवी थी।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: तो भले ही वो मेरे को मूवी उस समय समझ में नहीं आई, छोटा सा था मैं उस समय, मतलब 7-8 साल का, मगर मेरे को दिलीप साहब की वो एक्टिंग और उस समय के जो कहते हैं एक शौक, उस थिएटर को देखने का भी शौक बहुत था, क्योंकि वो थिएटर अपने में ही एक अजूबा था।
0: ऑल राइट, मतलब आप काफी फिल्मी है और मतलब काफी सिनेमा लवर हैं आप, नो डाउट, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है, राइट?
1: बिल्कुल सही कहा। तो चलो और भी बातें करेंगे, मगर उससे पहले एक बढ़िया सा गाना अपने लिसनर्स को।
0: डेफिनेटली चाय समोसे की बात तुमने गलत कर दी, बिकॉज ऑलरेडी पेट में बहुत तेज से चूहे दौड़ रहे हैं, खाने का टाइम हो रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं गाइस, अब हम कुछ खा पी नहीं सकते हैं, फिलहाल पानी के अलावा कुछ है नहीं हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल, तो हम पानी पी के आते हैं, है ना अखिल?
1: चलो जी
0: कुछ गाने लगा रहे हैं फिर आ रहे हैं। अरे यार ये तो बताना भूल ही गए हम कि आप स्टेशन कौन सा सुन रहे हो जी, अखिल जी बताएं जरा।
1: FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
0: क्या बात है, वेरी गुड।
2: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स, यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।

0: आज फ्राइडे है और आनंद तुम्हें पता ही है कि हर फ्राइडे कोई ना कोई रिलीज होती है।
1: एग्जैक्टली आज कौन सी मूवी रिलीज हो गई भाई?
0: आज रिलीज हुई है अक्षय कुमार और सैफ अली खान की हैवान।
1: अरे बात, मैं हूँ सबसे बड़ा शैतान। एनीवेज, इससे जोक्स अपार्ट, हैवान में क्या है ऐसा, तुमने कहाँ देख लिया? मैंने ना कोई टीजर, ना प्रोमो, ना कोई।
0: अरे आप कहाँ देखेंगे अभी आप हनुमान अंश के उसमें
1: यार,
0: चल
1: ये तो है, आई एम वेरी स्पिरिचुअल यार। और आज से तो हनुमान जी का चलिए अभी स्टार्ट हो गया है 14 डेज का।
0: 17 साल बाद अच्छा कुमार और सैफ अली खान एक साथ हैं।
1: क्या बात है, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी वाला होगा फिर सेगमेंट पक्का।
0: वैसे ही एक सेगमेंट होगा।
1: अच्छा तो इसमें क्या स्पेशल देखने को मिल रहा है, आपने कुछ देखा इसका?
0: मैंने बस जहाँ तक मुझे ट्रेलर में पता चला कि अक्षय कुमार जहाँ तक मुझे लगा उसमें नेगेटिव रोल में और सैफ अली खान एक मेन हीरो की लीड में है।
1: ऑल राइट, चलो जी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 90s वगैरह की जो जोड़ियां हैं उनको जब वापस हम स्क्रीन पे देखते हैं तो मजा आ जाता है। आपको फेवरेट फिल्म है 90s का, मतलब फेवरेट जोड़ी, सॉरी, जो आपको लगता है मेल फीमेल का बहुत अच्छा एक कोलैबोरेशन होता था? यू नो जैसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद था शाहरुख एंड काजोल एंड ऋतिक रोशन एंड अमीषा पटेल, ये वन ऑफ माय फेवरेट जोड़ी। आपका कुछ ऐसा हो? यू नो
0: मेरे को जो फेवरेट जोड़ी मेरे को लगी थी वो लगी थी विवेक ओबराय और रानी मुखर्जी की साथिया में।
1: अच्छा, और साथिया
0: दिया मिर्जा और आर माधवन आर एस स्टेडियम में।
1: दिया मिर्जा, ऑल राइट, वो सच कह रहा है दीवाना,
0: मतलब उस समय
1: तुसी नहीं गाना। बहुत अच्छी है यू नो ये फिल्म भी,
0: ये मूवी मैंने लगा
1: अच्छी है
0: ये, मैंने पता ये मूवी मैंने लगातार।
1: अच्छा यार, दिया मिर्जा कितनी ब्यूटीफुल है यार, आज भी इतनी यंग है, इतनी अमेजिंग है, मेरे साबुन से पतली उनकी बॉडी है यार। एनीवेज बैक टू पॉइंट यार, सच में ये साथी सॉरी ये जो आपने विवेक ओबरॉय की बात करी ना यार, अभी रिसेंटली जन्माष्टमी गया और उनका वो कृष्णा है इतना, और उनका बर्थडे भी था इनफैक्ट अभी विवेक ओबरॉय का, उनकी एक फिल्म आई थी प्रिंस, आपने देखी है? बहुत अच्छी मूवी थी यार, मुझे प्रिंस अच्छी लगी मूवी। वैसे विवेक ओबरॉय की ऑलमोस्ट सारी मूवी अच्छी हैं। दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे
0: और शूटआउट नहीं करेंगे, शूटआउट एट लोखंड वाला तो उसकी तो
1: अरे वाह क्या बात है। और कोई जोड़ी जो तुम्हें लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, यू नो कि हाँ यार ये 90s की जोड़ी बड़ी सुपर डुपर हिट रही है आनंद मेरे हिसाब से? जैसे मुझे एक और आई रिमेम्बर आज भी याद है, मुझे करीना कपूर के साथ ना तुषार कपूर की जोड़ी भी अच्छी लगी थी, बट हाँ वो बात अलग है कि चला नहीं तुषार इतना ज्यादा, बट काम अच्छा किया है, काफी सारी फिल्मों में देखा है मैंने। और एक फिल्म और आई थी यार जिसे
0: ऐसे तो आप अक्षय कुमार और रवीना टंडन,
1: अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना, ये लाइफ में भी अब कपल है यार, मुझे उनकी बताओ कौन सी फिल्म में वो दोनों साथ आए, कुछ पता है एनी आइडिया?
0: हाँ एक मूवी में तो आए थे दोनों,
1: कौन सी फिल्म है?
0: जान, आई थिंक जान,
1: आई डोंट नो, मुझे खुद को नहीं पता।
0: मगर मुझे ट्विंकल खन्ना और अजय देवगन की एक
1: मुझे भी याद है,
0: सबसे ज्यादा उनकी जोड़ी उस समय हिट भी हुई थी।
1: एग्जैक्टली। अच्छा करिश्मा कपूर के साथ कौन से एक्टर आपको बेस्ट लगे?
0: करिश्मा कपूर के साथ वन एंड ओनली गोविंदा।
1: गोविंदा, अच्छा, सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे आई थिंक फेवरेट है।
0: हीरो नंबर वन में जो केमिस्ट्री रही है ना, वो बावर्ची बन के जो गोविंदा ने पूरी,
1: मुझे उनका एक गाना है ना सोना कितना सोना है, वो कौन से फिल्म का है?
0: हीरो नंबर वन।
1: हीरो नंबर वन का, ऑल राइट। हाँ पिक्चर गोविंदा की और करिश्मा की जोड़ी नो डाउट बहुत अच्छी रही है। और बाकी आपको कौन से एक्टर के साथ कौन सी जोड़ी अच्छी लगी आप हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, FM मुरादाबाद 89.6 नाम से ऑफिशियल आईडी है हमारी, और बाकी FM मुरादाबाद आप सुन रहे हैं रेडियो
0: 89.6 बजाते रहो और गुनगुनाते रहो।
1: चलो जी, इन जोड़ियों की बात हुई है लेकिन गाना इनसे अलग होगा भाई।

0: यार 90s की फिल्में ना बहुत अच्छी होती हैं अखिल भाई, और मतलब सन 2000 के ऊपर की जितनी फिल्में आप देखो सब बढ़िया हैं। 2005 की फिल्में उठा लो बहुत बेहतरीन। और रिसेंटली आई रिमेम्बर अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपने शो पे भी बात करी थी, एक फिल्म है बड़ी आइकॉनिक मूवी है जिसमें जो है बहुत अच्छी स्टार कास्ट है, और रिसेंटली 24 ईयर कम्प्लीट करे इस फिल्म ने, बहुत अच्छी मूवी है। और मैं इसकी स्टार कास्ट की बात करूं मतलब बहुत अल्टीमेट स्टार कास्ट है, मतलब प्रीति जंटा, महिमा चौधरी, अर्जुन रामपाल एंड साथ में जिमी शेरगिल। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तुम दिल है तुम्हारा की बात कर रहे हो?
0: नहीं, दिल तो मेरा मेरे पास ही है भैया, क्या बात कर रहे हो आप। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा है भैया ने। और ये फिल्म जो है बहुत ही अच्छी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, 180 मिलियन व्यूज गए हैं इस मूवी को, अभी भी लोग देख रहे हैं। एंड कभी कभी मैं रोते गाते हंसते हुए देख लेता हूँ पिक्चर की स्टोरी। आई नो बहुत अच्छी लगने वाली, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखो यार। मैं सच बताऊँ इतनी अच्छी नहीं चली बॉक्स ऑफिस पे। गाने बहुत अच्छे थे, म्यूजिकली मेजर बात करूं
1: तो बहुत
0: अच्छे थे। और इसमें एक गाना जो मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये गाना ऑफकोर्स आपने सुना होगा।

0: ये जो गाने में आवाज है वो कौन से सिंगर की या टाक से जरा बताओ मुझे, अगेन रिपीट करूँ क्या फिर से?
1: हाँ हाँ,
0: दोबारा दोबारा दोबारा, ठीक है दोबारा सुनो। मोहब्बत कौन से सिंगर है?
1: ये तो अब हमारे लिसनर्स को मैसेज करने दो।
0: ये अखिल भाई बहुत ही चालू पर्सन है। तो इसमें अलका याग्निक एंड कुमार शानू और उदित नारायण, इन तीनों की आवाज का जो कोलैबोरेशन था, जो कॉम्बिनेशन था, बहुत ही अल्टीमेट था और गाने बहुत अच्छे थे एंड इस फिल्म के सारे गाने अच्छे हैं। कुछ कहना चाहते हो इस मूवी के बारे में?
1: मैं तो बताऊंगा, मैं एक्चुअली मैं खुद लिखता हूँ गाने।
0: अरे
1: तो मुझे तो लिरिकिस्ट, मैं हमेशा ध्यान देता हूँ कि किस मूवी का कौन सा लिरिकिस्ट है। तो समीर साहब ने गाने लिखे थे
0: जी,
1: और समीर साहब के ये वन ऑफ दी मैं कहता हूँ कि फेवरेट लिरिक्स में से होंगी, और समीर साहब की बहुत ही उम्दा लिरिक्स में से एक हैं इस मूवी के जितने भी गाने। और जो कुंदन शाह जी है ना, जो डायरेक्टर है इस मूवी के, वो खुद भी एक एक्टर है। मतलब कुंदन शाह ने बहुत अच्छे थिएटर्स में परफॉर्म किया, और अगर उनका देखा जाए फिल्मी बैकग्राउंड, तो एक तरीके से वो इस मूवी से पहले कम से कम, मतलब जो उनकी बायोग्राफी है उसमें 15 से 20 मूवीज एज असिस्टेंट डायरेक्टर वो काम कर चुके थे। तो मतलब एक बहुत ही परफेक्शनिस्ट के साथ ही उन्होंने मूवी को इस पर बहुत अच्छा काम किया था। और जो कहते हैं ना, आप एक मूवी में उसकी स्टार कास्ट भी बहुत मैटर करती है कि अगर आप
0: उसके बिना तो मजा ही नहीं आता,
1: मजा ही नहीं आता। तो जो साइड में भी जो इनके रोल्स है, जैसे रेखा जी थी, रेखा जी का जो किरदार है एक तरीके से माँ का जो उन्होंने किरदार निभाया, वो भी बहुत ही बढ़िया किरदार उन्होंने इस फिल्म में निभाया।
0: क्या बात है, मतलब मूवी कुल मिला के बहुत ही अच्छी है, बट आई डोंट नो क्यों चल नहीं पाई ये मूवी, बॉक्स ऑफिस पे इतना कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन म्यूजिकली बहुत अच्छा रहा है। इसके गाने का अगर मैं बात करूँ, गाने को लेकर बहुत ही मेजर हिट रहे हैं इसके गाने, सारे एक से बढ़कर एक हैं, चाहे वो दिल लगा लिया हो या ओ साहिबा हो या फिर मोहब्बत और भी, या इसका टाइटल सॉन्ग जो टाइटल ट्रैक है, सारे गाने अच्छे हैं। और रेखा जी ने भी कमाल की एक्टिंग की थी बॉस, बहुत अच्छी फिल्म है यार। अभी इसका गाना फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूँ, माहौल तो बन ही जाएगा फिर ऑफकोर्स। और ये ऑफकोर्स आपने बहुत

0: What a song यार, और क्या इनके इमोशंस होते हैं, मतलब क्या लिरिक्स होते हैं और कितनी फील के साथ गाते हैं अखिल भाई.
1: हमारे लिसनर्स ने भी हमारे साथ दिल लगा लिया है.
0: हाय हाय हाय, किससे लगाया, किससे प्यार करके, या मुझे पर्सनली बताना मेरे इंस्टा हैंडल
1: मुरादाबाद से लगाया.
0: अरे वाह क्या बात है. चलो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ गाने लगाते हैं फिर लौट के आते हैं. मैं तो खो ही गया यार इन पिक्चरों में.
1: मैं खुद

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
4: जी अखिल भाई, तो आप यहाँ से निकल के कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो?
5: मैं तो जाऊँगा साहब दिल्ली रोड पे, जो अपना रामपुर रोड है ना, बाईपास, दिल्ली बाईपास पे, वहाँ पे एक ढाबा है नीलकंठ ढाबा, वहाँ जाके चाय पीऊंगा, मैगी खाऊंगा और दोस्तों के साथ गपशप लगाऊंगा।
4: कितनी अच्छी बात है ना, मुझे स्टूडियो बुला के मैं अकेला जाऊंगा। इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं तुझे भी लेकर जाऊंगा। वेरी बैड यार, अगली बार मैं नहीं आऊंगा। मतलब मैं जाऊंगा, दोस्तों के साथ खाऊंगा और तुझे नहीं लेके जाऊंगा।
5: नहीं नहीं नहीं, आनंद को भी लेके जाऊंगा। और आनंद
4: भाई, मैंने खुद से बोला तो फिर क्या बोला?
5: ठीक है आनंद, इस बार नहीं लेके जाऊंगा, अगली बार लेके जाऊंगा।
4: चलो अच्छी बात है, मैं अगली बार आऊंगा ही नहीं ना, फिर ले जाने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। वेल कोई बात नहीं। और बताओ अखिल भाई, जाते जाते कुछ कहना चाहोगे? चलने का समय हो गया है।
5: मैं बस यही कहना चाहूंगा कि यार वीकेंड है और फ्राइडे है ना, कल जो है सेकंड सैटरडे, जिन जिन के ऑफ है वो आराम से पूरी नींद ले भाई। जो मूवी उनकी अटकी हुई थी ना, वो नेटफ्लिक्स पे या हॉट आप
4: दो दिन मिल रहे हैं यार। फैमिली के साथ जाओ, सिनेमा में जाओ, परजाई जी को ले जाओ, कल भी छुट्टी, परसों भी छुट्टी है ना, तो दो दिन है, सैटरडे संडे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप भी जाओ, भाभी जी को भी लेके जाओ। गारंटी मत लेना इस बात की कि पिक्चर सिनेमा में दिखाओगे, हो सकता है नेटफ्लिक्स पे दिखा दो घर में है। ऐसा भी हो, रिचार्ज खत्म हो गया हो तो बात अलग है यार।
5: रिचार्ज अगर खत्म हो जाए तो आजकल तो रिचार्ज भी ये सब शेयर हो जाते हैं।
4: ये बात भी सही है। चलो तो फिर अगर आप में से किसी ने अगर पैक लिया हुआ है नेटफ्लिक्स का तो मुझे भी शेयर कर देना, एक आध मूवी मैं भी देख लूंगा भाई, क्योंकि मेरे पास हो नहीं पा रहा है अभी देखने का रूल जुगाड़। आपने लिया हुआ है क्या?
5: हाँ, मैंने ले रखा, अपने दोस्त से ले रखा है।
4: वेरी गुड यार, वेरी इंटेलिजेंट। मैंने आपसे पहले दिमाग लगाना सोचा, आप मेरे से एडवांस निकले यार। खैर कोई बात नहीं, लेकिन सच बात तो यह है कि भाई जब ये फ्राइडे आता है, मतलब शुक्रवार आता है, तो ऐसा लगता है कि भाई संडे आने वाला है, मतलब एक छुट्टी मिलने वाली है फिर से, मतलब अच्छा लगता है। जैसे मंडे आता है ना, मतलब एकदम आफत आ जाती है यार, ये कल मंडे, संडे की रात को मतलब आफत आ जाएगी।
5: मगर भाई अभी दो दिन ना आने वाले, दोनों दिन ब्रिक्स, आप सभी को पता है कि हमारे हम होस्ट कर रहे हैं, इंडिया इस बार होस्ट कर न्यू दिल्ली, इस समय पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है पूरे वर्ल्ड का इस समय, और पावरफुल कंट्रीज रशिया, चाइना, ये सब हमारे साथ, हमारे देश में आए हुए हैं इस समय। तो ये दो दिन तो दिल्ली में बहुत ही गर्म होने वाले हैं।
4: एग्जैक्टली, और उसके लिए जनता में बहुत हाउद जोश वो चल रहा है ना, हिप हिप हुर्रे तो वो बना हुआ है, और हमारे अंदर भी वो उत्साह है, लेकिन उस जोश को कल के लिए बचा के रखते हैं। मुझे सुबह भी आना है, तो कृपया करके मेरे ऊपर मेहर करें और मेरे को यहाँ से बाहर निकालें।
5: नहीं नहीं, आप भी चलें, आप भी आराम करें, चाय पिए जाके।
4: चलिए आप भी अपने नीलकंठ ढाबे पे चाय, पकौड़े, मैगी, जो भी आपको लगता है वो खाएं, और हमें बाद में फोटो ना भेजें कृपया। चलिए गाइस, अभी आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और रात का समय है, गाड़ी आराम से चलाइए, बाकी अच्छे गाने हम छोड़ के जाएंगे ताकि आपकी रात और अमेजिंग हो जाए, क्यों अखिल भाई?
5: बिल्कुल सही कहा।
4: चलो बस ऐसे चिल करते रहो, और बाकी टेंशन पुंशन नहीं लेने का ज्यादा लाइफ में, लेके कहाँ जाओगे यार। अभी आज का जो टाइम है ना, इसको एंजॉय करो, क्योंकि अगले एक मिनट में क्या होने वाला है ना अखिल भाई को पता है ना आनंद को पता है, तो बस जो अभी टाइम है इसको सेलिब्रेट करो, सिर्फ इस पे फोकस करो
5: बस, और फोकस के साथ साथ सीट बेल्ट जरूर लगा के रखना भाई,
4: क्योंकि मैं नहीं लगाता हूं ना, इसलिए उन्होंने सहारा दिया है। चलो बाय गाइस, गुड वाली गुड नाइट, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, होगी मेरी आपकी मुलाकात कल सुबह सवेरे।
5: बाय बाय,
4: गुड नाइट।

आब अल मंदीब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव

0: देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
0: हम रोड, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
0: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

0: राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ।

0: इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
1: आज आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमी के रिजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जब आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। 4 चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलबरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर ये भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एचपीवी टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक DM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले, श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना रेडियो स्टेशन। खूब सारा काम होने के बाद कहते हैं ना कि चलिए थोड़ा सा आराम किया जाए, थोड़ा थोड़ा किसी से बात की जाए। तो क्यों नहीं, आप शुक्रवार की शाम है और मतलब बिल्कुल साफ है, काम का टेंशन थोड़ा कम, चेहरे पे मुस्कान थोड़ी ज़्यादा और

0: जाने दीजिए, इस वीकेंड को अपने नाम कीजिए। तो बताइए क्या क्या मस्ती है, क्या क्या वीकेंड प्लानिंग है और इस फ्राइडे का मतलब क्या है? मूवी, फ्रेंड्स, फैमिली, शॉपिंग या बस भाई साहब बिस्तर पर लेटना है और सिर्फ मोबाइल चलाना है? अगर मोबाइल चलाना है ना तो कॉल कर लिए 9837896896 पे। चलिए अपने पहले कॉलर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या है उनकी दिल की फरमाइश। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप?
1: फरीदाबाद, हरियाणा।
0: हरियाणा से बात कर रहे हैं, फरीदाबाद। क्या करते हैं आप?
1: मैं कंपनी में जॉब करता हूँ सर।
0: आप कंपनी में जॉब करते हैं, तो आज आप एफएम जो सुन रहे हैं उस पर कौन सी अपनी फरमाइश सुनना चाहते हैं? क्या आपकी दिल की बात है जो सभी के साथ कहना चाहते हैं? मेरा जीवन साथी बिछड़ गया, लोग खत्म कहानी हो गई, तो किसे डेडिकेट करना चाहेंगे ये गाना? ओके ओके ओके, आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही है, अगर थोड़ी तेज कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए आपकी फरमाइश पूरी करते हैं और आप सुनते रहिए हमारे साथ एफएम मुरादाबाद पे, जुड़े रहिए। श्रोताओं, मोहम्मद हुसैन साहब जुड़े थे हमसे फरीदाबाद से, हरियाणा से। आवाज़ थोड़ी उनकी दबी हुई लग रही थी, मुझे लग रहा है कोई ना कोई तो उनके पास होगा। चलिए खैर छोड़िए इसे और उनकी फरमाइश को करते हैं पूरा। मेरे जीवन साथी फिल्म बाबुल तो ज़रूर सुनिए आप और हमें कॉल करिए 9837896896 पे।
2: मामा तुम भी होते हैं मेरा जीवन साथी, बिछड़ गया लो।
0: मगर आपको अपना जीवन साथी को पकड़ के रखना है, उसके लिए कुछ ना कुछ डेडिकेट करना है, तो 9837896896 पे दिल की बात जरूर बोलिए।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। अभी हमारे पास खूब सारी हैं बातें करने के लिए, और कहते हैं ना, कुछ शामें बस शाम नहीं होती, वो यादों का बहाना होती है। कुछ लोग दूर होकर भी दिल के पास रहते हैं, क्योंकि रिश्ते दूरी से नहीं, एहसासों से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, फ्राइडे की शाम है, और ये बात याद रखें कि वीकेंड सिर्फ बाहर घूमने के लिए नहीं, अपने लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताने के लिए भी होता है। तो चलिए अपने नए लिसनर से, कॉलर से बात करते हैं और पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: मोहम्मद उमर।
0: मोहम्मद उमर जी, क्या करते हैं आप?
1: कुशल मजदूरी।
0: और इस समय कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: रोला मुरादाबाद।
0: और सब सही चल रहा है उमर जी?
1: बढ़िया।
0: तो इस समय कोई शायरी या कोई बात जो दिल की है कहना चाहेंगे आप?
1: नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते हम, सिर्फ हमारा गाना सुनवा दीजिए।
0: आप सिर्फ गाना सुनना चाहते हैं? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आज किसी से झगड़ वगड़ के आके बैठे हैं भाई साहब। अब तुम बस आप मेरा गाना सुना दो बस, नहीं, मुझे नहीं, कुछ और नहीं कहना है।
1: ऐसा कुछ नहीं है।
0: शादी हो गई है आपकी उमर जी? शादी हो गई है?
1: जी हो गई, 50 साल उम्र है।
0: 50 साल उम्र है, तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: मेरे हुजूर का जो गुजर रही है मुश्किलों से कैसे मैं बताऊं।
0: क्या एक आध लाइन गा के भी सुना सकते थे? आपने तो एकदम गुस्से में सुना दिया, मेरे हुजूर का। मेरे हुजूर,
1: हाँ फिल्म है, फिल्म का नाम है मेरे हुजूर, और गाने के बोल है, जो गुजर रही है मुझे
0: क्या गुजर रही है। अब तो आपको बता नहीं पड़ेगा क्या गुजर रही है आपके ऊपर। ऐसा क्या गुजर रहा है कि सब लोग सुनना चाहते हैं?
1: कुछ नहीं गुजर रहा, बस रवि साहब के फैन है, जो गाने अच्छे लग जाते हैं वो ही सुन लेते हैं।
0: सही है साहब, बहुत ही बढ़िया। आप फैन तो रहना चाहिए, और रफ़ी साहब के तो अगर फैन है तो ये तो बहुत बड़ी बात। रफ़ी साहब की आवाज़ की तो बात ही अलग है। आज भी अगर रफ़ी साहब का कोई भी गाना सुनने में आ जाता है तो पहले कहते हैं ना, जब तक पूरा उसे गुनगुना नहीं लेते तब तक स्वाद रहता है गाने का।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
0: तो चलिए उमर साहब, किसे डेडिकेट करना चाहेंगे या आप गाना?
1: किसी को नहीं,
0: खुद को ही। चलिए साहब, ये गाना भी कभी कभी खुद को भी डेडिकेट करना चाहिए कुछ। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद उमर जी हमसे जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े थे उमर साहब, कह रहे थे कि साहब ये गाना सुनना है और खुद को ही डेडिकेट करना है, तो होना भी चाहिए यार सबके लिए, क्या अपने लिए भी कुछ डेडिकेट करना चाहिए। तो चलिए इनका एक गाना सुनते हैं। आपका भी कोई पसंदीदा गाना हो या कोई भी चीज़ किसी के लिए, कुछ भी डेडिकेशन हो, तो ज़रूर 9837896896 पे कॉल करें और करें अपने दिल की बात थोड़ी सी मुस्कुराते हुए ज़रूर।

ये फरमाइश आई है नागपुर से हेमंत जी की, जिन्होंने गाना डेडिकेट किया है अपनी वाइफ को। तो आप भी एंजॉय करिए तुम मिले दिल खिले, फिल्म क्रिमिनल और कुमार सानू और अलका।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89 MHz पर। और कहते हैं ना कि भागा दौड़ी चल रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो भाग ही रहा होगा। अगर किसी की मूवी निकल रही है तो साहब तेज तेज चलिए, जल्दी से पहुंचिए, क्योंकि अगर मूवी 5 मिनट भी निकल जाए ना तो बड़ा अफसोस होता है रहता है यार, कैसे 5 मिनट लेट हो गया, कहाँ अंधेरे में सीट ढूंढता फिरूंगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट लिसनर से और पूछते हैं कर क्या रहे हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी, कैसे हैं आप?
1: अरे 80 साल में कैसे, जब आपने बाबू का गाना सुनवाया ना तो हमें भी सारी याद है कि उन फट का दिया जो हमने जिक्र सजाया था, उस उम्मीद को फूलने से जिस घर को सजाया था, एक भेदी लूट गया तो हम जीके क्या करेंगे।
0: अरे सर क्या बात है, क्या बात सुनाई है आपने, मगर पीछे जो आपकी रेडियो की आवाज है बहुत ही गूंज गूंज के आ रही है, इसे थोड़ा कम करिए। हाँ बिल्कुल सही, और एक बार फिर से सुनाइए जो आपने इतनी बढ़िया शायरी सुनाई थी। ठीक है सर, ठीक है, आपने अभी अभी आपने जो KL सहगल साहब का गाना बताया जब दिल ही टूट गया, ये भी सर बहुत ही अच्छा गाना है।
1: और अभी तो जब दिल ही टूट गया हम जीतेंगे तो अभी लेटेस्ट वाला गाना है, अगले वीक में ये वाला फिल्म जिंदगी का।
0: जरूर जरूर जरूर, जिंदगी का सर जरूर सुनाएंगे, ओम प्रकाश जी जरूर ये गाना सुनाएंगे आपको। हेलो हेलो, मुझे लगता है जब दिल ही टूट गया के बाद हमारा लगता है कनेक्शन भी टूट गया, तो कोई बात नहीं साहब, कनेक्शन टूट गया है कोई नहीं, मगर गाना तो आपका पूरा चलेगा जब दिल ही टूट गया। मगर उस गाने से पहले हो जाए थोड़ी सी बातें देश विदेश की खबरों की भी, तो आजकल आप सभी को पता है कि क्या चल रहा क्या हो रहा है इस समय दिल्ली में भी। इंडिया और रशिया की बातचीत में आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई खूब सारी बातचीत। दोनों नेताओं ने एनर्जी, डिफेंस और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत ब्रिक्स समिट से ठीक पहले हुई है, तो मतलब साहब दुनिया की नज़र इस वक्त पूरी तरीके से न्यू दिल्ली पर है। और भी करेंगे खूब सारी बातें देश की और विदेश की भी और अपनी भी भाई साहब, तो आप भी 9837896896 पे कॉल करें और थोड़ी सी दिल की बातें ज़रूर सुनाएं और सुने भी। तो चलिए अभी लेते हैं जब दिल ही टूट गया वाला गाना, उसके बाद करेंगे खूब सारी बातें आपके साथ।

0: जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, केएल सहगल साहब की आवाज का ये गाना है और इनके बारे में एक खास बात ये जरूर बताएंगे कि सहगल साहब का भी रिश्ता मुरादाबाद से रहा है। जी हाँ, उनके ब्रदर जो थे वो रेलवे में उस समय टाइम कीपर थे न्यू दिल्ली में, और जब उनका ट्रांसफर होकर मुरादाबाद आया तो केएल सहगल साहब भी मुरादाबाद में थे। मुरादाबाद में ही उन्होंने नॉर्दर्न रेलवे ज्वाइन की थी और उस समय मुरादाबाद में ही जो रेलवे स्टेशन मास्टर थे एक फॉर अंग्रेज, उनकी वाइफ की नज़र पे उन पे पड़ी और उनके म्यूज़िकल करियर को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो बहुत ही बात कहते हैं ना, जब ऐसी बातें और अपने ही शहर से कुछ ना कुछ उनका जब जुड़ाव होता है तो वो बातें सुनने में और भी मज़ेदार होती हैं। तो केएल सहगल साहब ने इसे बहुत सीरियस लिया अपने इस गाने को, अपने शौक को, और उन्होंने उस्ताद करीम खान के किराना घराना को ज्वाइन किया और वहाँ पे सारंगी प्ले करते थे। तो हमारे केएल सहगल साहब की जो हमारे यादें हैं मुरादाबाद से जुड़ी, तो उसके तो कुछ और ही कहना है। तो चलिए बात करते हैं अपने नए लिसनर से और सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है।
0: उस्मान जी कैसे हैं आप?
1: ठीक है साहब।
0: और क्या
1: बोल रहे हैं? मोहम्मद उस्मान साहब गुप्ता और नदीप कैसे?
0: क्या बात, बहुत बढ़िया साहब। ये तो उस्मान जी, अब तो सबको एड्रेस आपका याद हो गया, अब आप पूरा एड्रेस मत बताया करो।
1: अच्छा सर, मेहरबानी सर, छोटा गवा का गाना सुनना है।
0: उससे पहले आप कुछ सुनाएंगे? नहीं
1: बिल्कुल, जो आप कहेंगे आप जरूर सुनाएंगे सर।
0: कोई भी एक बढ़िया सी शायरी जो आपके दिल के बहुत करीब हो जरूर सुनाइए।
1: लड़खड़ाए सभी कदम तो थाम लेना, खुशी रखो छुपा के गम मुझसे बांट लेना, तन्हाई में भी बहुत गली हूँ मैं, खुद से दुनिया रहे खिलाफ बेशक, पर तुम मेरा साथ देना।
0: क्या बात है, क्या बात है, आपने क्या शायरी सुनाई आज। और कैसा रहा उस्मान जी आज आपका दिन?
1: दिन के अंदर थोड़ा सा तबियत खराब चल रही थी, हल्का दवाई लाया मैं खा के लेट गया।
0: तो आपने दवाई का असर हुआ नहीं हुआ चालू?
1: आवाज एकदम बात कर गया यार।
0: चलिए साहब, आप पे दवाई का असर भी और आवाज़ का असर भी पूरा होना चाहिए, और जल्दी अपनी सेहत का ध्यान रखें और जल्दी सेहत ठीक करें। चलिए उस्मान जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं, हमसे जुड़े थे उस्मान जी और उन्होंने भी अपनी पसंद का गाना हमें हमने बताया, तो आपको भी वो पूरा पसंद आएगा क्योंकि वो दिल से बताते हैं साहब। 9:40 हो रहे हैं, इसके बाद हम लेंगे एक और कॉल क्योंकि अब जाने का सफ़र आगे है नज़दीक और खूब सारी हो रही हैं दिल की बातें। 9837896896 पर

0: समय हो गया है 9:45 और जी जैसे ऐसे घड़ी पहुंच रही है 10 बजने के करीब, वैसे वैसे दिल की धड़कन हो रही है तेज, क्योंकि खूब सारी हो गई है मस्ती, खूब सारे हो गए हैं गाने। चलिए अपने लास्ट कॉलर को लेते हैं, पूछते हैं वो क्या कह रहे हैं इस समय। हमारे लास्ट कॉलर ने कॉल कर दी है डिस्कनेक्ट, क्योंकि देखते हैं कहाँ चले गए हैं वो एक बार। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं मिल गए साहब, आ गए साहब, आ गए साहब। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? सर आपके पीछे जो FM है उसकी आवाज कम कर लीजिए। सर अपने बारे में बताइए। नरेंद्र सिंह जी रात वाले? हाँ रात तो हुई रही है, आप रात वाले तो बोल ही रहे हैं, मगर रात में कहाँ से बोल रहे हैं?
1: आपके पास ही बोल रहा है, ग्राउंड के पास,
0: रामलीला ग्राउंड के पास से है। तो क्या करते हैं नरेंद्र जी आप?
1: हम ऐसे छोटा मोटा कोई ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, गाड़ी है।
0: बढ़िया साहब, काम काम होता है, छोटा मोटा नहीं होता है, आपका भी खूब काम बड़ा होता है। तो कौन सी शायरी सुनाना चाहेंगे आप? हाँ नरेंद्र जी कुछ सुनाना चाहेंगे? आप पहले ये, आप अपने पास से ये पहले FM की आवाज कम कर लीजिए, क्योंकि मैं बात नहीं कर पाऊंगा इसे। आपको आवाज आ रही है मेरी नरेंद्र जी? FM की आवाज, आपके पास जो पीछे FM है उसकी आवाज कम कर लीजिएगा, क्योंकि आवाज गूंज रही है मेरे पास।
1: अब गूंज, अब तो नहीं गूंज रही होगी।
0: हाँ हाँ आप बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? हाँ हाँ क्यों नहीं साहब, बाद में कर लेंगे, अभी तो गाना, अपनी रिक्वेस्ट बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं।
1: केवल एक ही वो सुनवाना है, रामचंद्र कह रहे किया से ऐसा कलयुग आएगा।
0: जरूर जरूर जरूर, ये गाना जरूर आपका प्ले करते हैं। किसे डेडिकेट करना चाहेंगे आप, सभी श्रोताओं को या किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: हाँ सभी को डेडिकेट, जितने भी हमारे आरजे हैं आप हो।
0: हाँ जी
1: सभी को
0: ठीक है,
1: और हमारे अंशतम वर्ष वाले हैं।
0: हाँ जी
1: वाले,
0: हाँ जी,
1: जैसे होती है, सवाल में होते हैं तो उनके लिए।
0: बहुत खूब, जब भी कभी शिफ्टिंग हो तो जरूर आपसे संपर्क करें।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक ठीक।

सारा रज। सुन मेरी रिद्धि सिद्धि को लेकर करो भवन में फरी करो, ऐसी कृपा मत करो पूजा तेरी। ये जो है ना शायरी, जो शायरी है या कुछ भी कहना चाह रहे थे, बड़ा टुकड़ों टुकड़ों में आया है यादव जी, तो बड़ा ही हम सही से इसे पढ़ नहीं पाए, तो ज़रूर अगली बार इसे थोड़ा सा सही से भेजें, जिससे कि हम और भी इसे अच्छे से पढ़ें। हमारे पूरे परिवार की तरफ से अखिल सर जी को प्यार भरा नमस्कार, हमारी तरफ से भी आपको प्यार भरा नमस्कार। लाइन पार मुरादाबाद प्रकाश नगर चौराहे से आप बात कर रहे हैं यादव फैमिली। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्ले माई सॉन्ग, और वो सॉन्ग ज़रूर अभी आपका प्ले कर दें। दूसरा मैसेज आया है हमारे पास से, हेलो अखिल सर, गुड वाला इवनिंग है दिल से दिल तक, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। वेलकम टू अखिल सर, वेलकम जी, वेलकम, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ललिता कश्यप नवीन नगर मुरादाबाद से, सर हम आपका शो सुन रहे हैं और साथ में खाना भी खा रहे हैं, तो खाना खाइए, खूब भरपेट खाना खाइए, क्योंकि साहब आपने बनाया तो पता है आपको नमक तेज है या कम, इसका जवाब भी आप ही के पास है। हमने दाल चावल रोटी बनाई है, दाल चावल रोटी चाहिए, एक दाल रोटी कौन सी थी वो, एक कपड़ा रोटी और मकान, ऐसे ही कुछ था ना, बिल्कुल सही चल रहा है मामला। मौसम में परिवर्तन है, मौसम ठंडा हो रहा है, तो बहुत बढ़िया, आप तो मौसम विभाग ने ये बात सुन ली होगी, तो क्या पता थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी, तो जो आपकी शायरी है वो सुनते हैं। हवाओं में आज फिर एक नया एहसास है, अखिल सर की बातों में एक अलग ही मिठास है, महफिल में उनकी मौजूदगी ही काफ़ी है, क्योंकि उनके अंदाज में ही तो एक खास बात है, जहां वो मुस्कुराते वहां माहौल खिल जाता है, जहां वो अपनी बात कहें हर दिल में मिल जाता है। अखिल सर यूं ही अपनी मुस्कान बिखेरते रहिए, आपकी आवाज़ से हमारी महफिल यूं ही सस्ती रही है। क्या बात है, क्या बात है, मतलब आप जब भी ऐसी कोई शायरी लिख देती है ना भाई साहब, सच में बताऊँ मैं, मेरी नींद गायब हो जाती है रात की। सॉन्ग सुना दीजिएगा, फर्स्ट टाइम देखा तो हम खो गए, तो ज़रूर ये भी ज़रूर सुनाएंगे, और जो आपने कल सॉन्ग सुनाए थे लगाए थे वो बहुत ही बिंदास थे, थैंक यू वेरी मच। तो बात करते हैं खूब सारी, अब हमारे लिसनर्स हैं आज खूब सारी हमारे साथ बातें करी, तो चलिए अब टाइम है उनकी रिक्वेस्ट प्ले करने का, और हाँ हम फिर मिलेंगे कल आपको इसी समय इसी जगह, कल नहीं मतलब सोमवार को, हाँ जी हाँ सोमवार को फिर से होगी खूब सारी बातें आपके साथ ठीक 9 से 10, और दिल को संभाल के रखिएगा साहब, क्योंकि 2 दिन जो है ना खूब दिल भटकने वाला, खूब मस्ती होने वाली है, तो चलिए सुनते हैं बढ़िया से गाने।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा।
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
1: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
0: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।